0: शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह के बारे में आनंद लेते हैं विचार करते हुए जो अभी अभी मोहन साहब ने बताया धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में।
1: इस पूरी दुनिया में प्रभु ही एक अकेली शक्ति है जो हमें सहारा दे सकती है, जो हमारा ख्याल रखती है। इसी शक्ति के शरण में आए। सुनिए ये एक दूसरा प्यारा सा भजन।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बिल्कुल जैसे मेरी कोशिश रहती है मोहन सर, और आप भी समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम बिल्कुल साधारण व्यक्ति का है, बिल्कुल लेमैन जो सरल भाषा में ये कठिन सब्जेक्ट को समझ पाए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति बिना धर्म का आचरण किए, यानी कि जिंदगी को जैसे हमको चलाना चाहिए वैसा ना करते हुए भी, क्या आध्यात्मिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है क्या?
1: ऐसा है कि धर्म आचरण करे
0: जी
1: तो उसमें लोक संग्रह कहते हैं, लोक में उनका व्यवहार जो इस लोक में है, इस भूमि में है, उनका जो व्यवहार है वो एथिकल रहता है
0: जी।
1: जरूरी नहीं है कि वो अध्यात्म विचार करे
0: जी।
1: आध्यात्मिक विचार के लिए अंदर से एक योग्यता की जरूरत है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना मोमेंट ऑफ रेकनिंग।
0: वाओ,
1: हमारे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आना चाहिए जिसमें हम ये विचार करें कि मैं कौन हूं
0: जी, जी
1: मैं किस लिए, वो कहते हैं भजगोविंदम एक बहुत बड़ी टेक्स्ट है, उसमें कहते हैं मैं कौन हूं, मेरे पिताजी कौन है, मैं जननी कौन है। तो ये जब सवाल जब ये उठते हैं, ये प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, तभी जाके हम अध्यात्म के ओर जा सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न ना किए भी हम धार्मिक आचरण कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार की कोई जरूरत ही नहीं है
0: जी। जी
1: तो अंग्रेजी में कहते हैं ना आई कैन बी एन एथिकल ह्यूमन बीइंग विदाउट गोइंग इनटू सेल्फ इंक्वायरी।
0: ओके जी जी जी, ब्यूटीफुल, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस। दोस्तों इस बात को गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों आचरण अपने आप से एक्सक्लूसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों का ही दामन पकड़कर चलें। बात मुद्दे की है अपने आप को पहचानने की, उचित आचरण करने की बात हो रही
1: है। उचित आचरण से क्या होता है, अपने आप को पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है
0: जी।
1: और अपने आप एक बार अपने आप को पहचान गए तो आचरण जो है वो बहुत ही आसानी से अनायास से होता रहता है
0: जी। ओके तो बहुत सिंपल है, जैसा मोहन सर ने बताया, देख लीजिए दोस्तों, विचार करिए, और बहुत आसान है कि उचित आचरण। अब उचित आचरण को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता होगी कि सभी लोगों को एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है कि उचित आचरण क्या होता है, बस उसे फॉलो करते रहिए और आप आध्यात्मिक भी हो गए।
1: उचित आचरण में बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी जैसे देखिए मुझे ये लोगों से अपेक्षा है कि लोग मुझसे झूठ ना बोले
0: जी,
1: लेकिन मैं किसी से झूठ बोलूं या न बोलूं ये मेरे कन्वीनियंस पर निर्भर करता है
0: जी, बिल्कुल सही।
1: तो ये अगर अलाइनमेंट में हो जाए कि भाई झूठ बोला कतई ठीक नहीं है, और मैं ना किसी से अपेक्षा करता हूं मुझसे झूठ बोले, और मैं भी झूठ का आचरण नहीं करूंगा, इसमें हो गया धार्मिक आचरण हो गया
0: जी।
1: और मैं एथिकल लाइफ, सीधा कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ, बिना अंदर के क्लेश का मैं जीवन जी सकता हूं।
0: भाई वाह, वही वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए विचार करते चलिए, मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि ये गहरी बातें हैं, रुक कर विचार करना बहुत जरूरी है। लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए इस विचार पर विचार कीजिए। बस एक बार प्रीत लगने की देर है, प्रभु से प्रीत लगते ही सारी दुनिया अपनी होती है। चलिए प्रभु से प्रीत लगाएं।

0: सुंदर। अब जाहिर सी बात है, जब हम आध्यात्मिकता से शुरू कर धर्म पर आए, धर्म को भी समझा, उनके डिफरेंस को भी माना, उचित आचरण को भी समझा, तो दो और शब्द हैं सर जो पीछे ना रह पाएंगे इस पूरे विषय में। वो एक है ध्यान और एक है प्रार्थना। तो इन दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, थोड़ा वो हमें समझाइए।
1: अच्छा, ध्यान है मानसिक व्यापार। इसमें ध्यान का अब है कि हम मुंह से कुछ ना करें, मन का व्यापार करें और हमारी वो थॉट प्रोसेस है आध्यात्म के ओर ले जाएं। या तो वो जप साधना हो सकता है, या हमारे ये जो उपनिषद हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उसमें से महाव्याख्य कुछ ले लें और अपने आत्मस्वरूप पर ध्यान करें
0: जी।
1: प्रार्थना जो है कि हम ईश्वर की ओर याचक बन के याचना ले जाते हैं। कहा जाता है कि चार तरफ की प्रार्थना होती है। एक होता है आरती, जो संकट में हो और ईश्वर से मांगता है कि मेरी संकट दूर हो। दूसरे को कहते हैं अर्थार्थी, अरे मुझे एक बंगला है, मुझे दूसरा बंगला चाहिए
0: जी।
1: तीसरा है जिज्ञासु। वो जिज्ञासु बोलता है कि भाई ईश्वर तुम क्या हो, ऐसे इतने सारे फर्क क्यों हैं? लोग में ये जो संसार में ऊपर नीचे किया क्यों है, ये संसार क्या है, ये जिज्ञासु है, ये ईश्वर से जानना चाहता है
0: जी।
1: और चौथा जो प्रार्थना है वो ज्ञानी का प्रार्थना है। वो आनंद लेता है ईश्वर की, ये देख ईश्वर की लीला देखकर आनंद ले लेता है। उसके मुंह में लिखते नहीं निकलता है, बस शिवोहम शिवोहम शिवोहम का मतलब आनंद में देख रहा हूं
0: जी।
1: तो ये जो है याचना, जो हम किसी ईश्वर से किसी चीज की मांग करते हैं, तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना हम काय वांग मन, काय से भी कर सकते हैं, हाथ जोड़कर भी उससे मांग सकते हैं, मानसिक प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है सिर्फ मानसिक व्यापार है।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतने खूबसूरत शब्दों में जो शब्दावली इस्तेमाल की है मोहन सर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है कि ध्यान जो है वो एक मानसिक व्यापार है। भाई वाह क्या बात है, कितने प्यारे तरीके से मोहन सर ने हमें समझाया है। दोस्तों विचार करते रहिए करते रहिए, छोड़िएगा नहीं वरना मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो आगे बढ़ते हुए बस मोहन सर से एक और बात पूछना चाहूंगा कि सर इसी सिलसिले में जब हम ध्यान की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, अध्यात्म धर्म, तो एक और चीज आती है एक और शब्द आता है जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, समझ में नहीं आता, वो है आत्मा। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में आपकी क्या राय है सर?
1: अच्छा, अभी ऐसा है कि मैंने पहले कहा था अहम इदम, अंग्रेजी में बोले तो आई एंड दीज। अच्छा, जब मेरा फोकस रहता है बाहर विषय के ऊपर, तो ये उस जो स्वयं प्रकाश नहीं है, जिसे जानने के लिए मुझे अंतकरण या अपनी प्रत्यक्ष जो हमारे पास जो चक्षु वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करके मैं बाहर की विषयों को जानता हूं, उसे अनात्मा कहते हैं।
0: ओके।
1: जो स्वयं प्रकाश है, स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं। अभी समझिए, रात को मैंने फोन किया आपको
0: जी,
1: और मैं बोल रहा हूं समीर जी आप हैं
0: जी जी जी,
1: तो आप ये बोलेंगे क्या मैं लाइट ऑन करके देखता हूं, बीवी से पूछ के बताता हूं?
0: जी जी, मैं तो कहूंगा मैं हूं।
1: आप तो कहते हाँ जी बोल रहा हूँ,
0: बोल रहा हूँ,
1: इसका मतलब है मैं स्वयं प्रकाश हूँ।
0: क्या बात है जी।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में आपके घर में करंट है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट में मुझे स्विच जला के देखना पड़ेगा,
0: या उसमें स्विच में उंगली डाल के देखना पड़ेगा,
1: उंगली डाल के देखना पड़ेगा। जहां मैं अपने अंतकरण या अपने चक्षुर आदि जो हमारे पास जो करण है, उपकरण है, इसको मैं व्यवहार करके जो जानता हूँ वो अनात्मा है।
0: ओके जी।
1: और ये सब के पीछे जो शक्ति है, जो स्वयं प्रकाश स्वत सिद्ध है, उसको आत्मा कहते हैं
0: जी जी जी।
1: जरा बारीकी से विचार करना चाहिए।
0: हाँ,
1: ये हमारी शास्त्र ये कहती है कि भाई ये ऐसा कोई नहीं है जो ये पहचान सकता है। कोई से भी पूछे आप हैं क्या, वो कहेगा हाँ मैं
0: जी मैं हूँ। करेक्ट, ब्यूटीफुल।
1: तो इसका मतलब है आप आत्मा के आप एक्सपीरियंस कर, आत्मा के अनुभव कर रहे हैं
0: जी।
1: बस पहचानिए आत्मा क्या है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। तो फिर आत्मा की बात अगर कर रहे हैं तो क्या आप पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं सर?
1: अच्छा, ये यहां दो चीज है, एक तो है विश्वास
0: जी।
1: विश्वास दो टाइप के होते हैं, एक वेरीफाइबल बिलीफ, एक नॉन वेरीफाइबल बिलीफ।
0: वाओ, ओके।
1: अच्छा, ये जो धर्म का है, हम किसी से आज तक ऐसे किसी से नहीं मिले वो कहा कि भाई मैं पूर्व जन्म में मैं तुम्हारा ससुर था, ऐसे मैंने तो एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर अपना न्याय और तर्क लॉजिक को यूज करके देखूं तो समझिए मेरा जन्म फलाना तारीख को हुआ था, समझिए 1 दिसंबर को हुआ था
0: जी। जी,
1: तो 1 दिसंबर के पहले मैं कहां था? तो आप कहेंगे मैं माँ के गर्भ में था। उसके 10 महीने पहले मैं कहां था? तो आप अचानक से ऐसे पटाख से तो आप नहीं आए।
0: करेक्ट,
1: उसके पहले हम पंचभूत में थे, पंचभूत पंचीकरण होके एक शिशु बन के माँ के गर्भ से जन्म लिया। इसका मतलब है मैं कार्य हूं तो उसका कारण होना चाहिए। तो ये लॉजिक में देखेंगे तो पूर्व जन्म के जो है ये विश्वास से बाहर जाकर ज्ञान की बात हो जाती है
0: जी।
1: एप्पल, एप्पल जो है, जो सेब जो है कहां से आया? बीज से आया। तो वो बीज में एप्पल था कि नहीं? सूक्ष्म रूप में था। वो वक्त आने, वो कहते हैं ना कबीर दास के दोहे, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसके ऋतु आने पर उसी बीज से ये जो एप्पल जो है, ये सेब जो है, वो उत्पन्न होके प्रकट हो गया।
0: सुंदर।
1: और कुछ दिनों के बाद ये जो है, जो प्रकट हुआ, वो अपने आप विनाश में जाके उसी बीज में जाके चले जाएगा। मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट, इसमें पुनर्जन्म जो है ना, विश्वास से हटकर अगर ज्ञान की चक्षु से देखें तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट हो सकती है।
0: राइट सर, बहुत सुंदर तरीके से डिटेल में मोहन सर ने समझाया है दोस्तों। कुछ अलग ही प्रस्पेक्टिव, कुछ अलग ही देखने का नजरिया, सुंदर। तो लीजिए एक भजन का आनंद लेते हुए विचार करने का एक और मौका।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टेंटिया भी।

0: धन्यवाद मोहन साहब, धन्यवाद। तो अब एक हल्का फुल्का सा सवाल जानना चाहूंगा। लोग बात सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या कभी ऐसा कोई समय आया आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में, जब आपको स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर संदेह हो गया हो, थोड़ा गुस्सा आ गया हो कि नहीं मानता मैं ये सब ऐसा कुछ, और फिर आपने क्या किया?
1: अच्छा, ऐसा ही मौका आया था मेरे जिंदगी में एक बार
0: जी,
1: जब ऐसी एक स्थिति आई। लोगों को ये कहता हूं कि मैं बचपन में 4 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था
0: जी,
1: और मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं अभी इस उम्र में व्हील चेयर या वॉकर लेके चल पाऊं
0: जी,
1: और 22-21 साल ऐसे उम्र में जब नौकरी की तलाश में जाता हूं तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इसके लिए फिट नहीं हो। मैं तो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था
0: जी।
1: किसी ने कहा आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनाएंगे, तुम क्या बनोगे पायलट? मैं IAS बनना चाहता था। वो कहते नहीं, IAS में विकलांग को हम शामिल नहीं करते। फिर की ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छे बैंक में बहुत बड़ी पोजीशन में मैं पहुंच गया
0: जी।
1: लेकिन उस मौके पर उस ऐसे हालात आए थे जब मैं 20-21 साल की उम्र का था तो मुझे बहुत गुस्सा आया
0: जी,
1: ईश्वर पर बहुत गुस्सा आया कि भाई मुझे आपने में सिर्फ जी मैंने ऐसे क्या किया जो मुझे ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ऐसा एक चैलेंज दिया मुझे
0: जी।
1: तभी जाके वो कहता ना ईश्वर अनुग्रह है मुझे गुरु मिले, और गुरु ने मेरी सोच, मेरी दृष्टि सब कुछ बदल दी। उसके बाद अभी जो है ये मैं ये नहीं कहता हूं कि एडजस्ट हो गया है, अब ये अकोमोडेट हो गया। गाड़ी में जैसे डेंट है, समझिए गाड़ी में डेंट है, बस गाड़ी में डेंट है, गाड़ी तो चलती है ना। तो मेरी गाड़ी में डेंट है लेकिन काम अच्छी तरह करती है गाड़ी
0: जी।
1: तो जिंदगी में ऐसा मौका आया था जब मुझे बहुत गुस्सा आया, रिजेक्शन मिला मुझे
0: जी,
1: लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। वो कहते हाँ, वो कहते हैं ना, वो तमिल में कहते आयो पावम बेचारा
0: बेचारा। ओके,
1: तो इसमें बहुत गुस्सा आया लेकिन अच्छा हुआ ईश्वर अनुग्रह, मेरी पुण्य ऐसा हुआ कि ईश्वर अनुग्रह ऐसे बड़े संत महात्मा से मिले जिन्होंने मेरी सोच और विचारधारा बदल दी।
0: बहुत सुंदर भाई, वाह, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली रहे, और आज हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन पा रहे हैं। उस प्रभाव को रेडिएट होते हुए हमारे पास आने में बहुत वक्त नहीं लगेगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। लीजिए दोस्तों, एक भजन के लिए रुकते हैं और फिर वापस आते हैं मोहन सर के पास। मैं हूं आपका दोस्त RJ समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

0: मोहन साहब, रिलीजन की बात हुई, आध्यात्मिकता की बात हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हुई। रिलीजन पर एक बार फिर से वापस आते हैं धर्म पर, क्योंकि वो एक उचित जिंदगी को जीने का आचरण की बात थी। तो क्या सभी धर्म एक ही सच की ओर ले जाते हैं क्या हमें?
1: अच्छा, एक चीज है, हमें वहां एक छोटे से शब्दों के प्रयोग में जरा ध्यान रखना चाहिए। धर्म एक होता है, मत अलग है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, धर्म का मतलब आचरण, और आचरण हर जीवन को एक ही जैसा आचरण है। ऐसे नहीं कि अमेरिका में दूसरा आचरण है, हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वैसा नहीं है।
0: ओके।
1: मनुष्य का आचरण एक ही होना चाहिए, मानव धर्म कहते हैं इसको। लेकिन हमारी ईश्वर की जो हमारी ओर प्रार्थना है, याचना है, ये अलग अलग हो सकता है, इसको मत कहते हैं।
0: जी।
1: अच्छा, तो सवाल ये होना चाहिए, क्या सारे मत एक ही चीज की ओर ले जाते हैं?
0: ओ जी जी जी, बिल्कुल सही।
1: तो मैं इनको मैं काउंटर सवाल यही करूंगा कि अगर हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: जी,
1: इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य और कुछ है, आपका उद्देश्य और कुछ है। आप कहते हैं कि हमारे इसमें चलो, हमारे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। दूसरा कहता है हमारा मार्ग में चलो तो रक्षा करेंगे। तो मैं उनकी जो विश्वास है उसको मैं सम्मान करता हूं, आई रेस्पेक्ट दैट, और माय एक्सपेक्टेशन इज मैं जो जिस मार्ग में जा रहा हूं उसको आप भी रेस्पेक्ट करें।
0: जी।
1: तो इसका जो गोल, इसमें दो चीजें है, मत में दो चीजें, एक है वैल्यूज, हम क्या झूठ मत बोलो, किसी को भाई हिंसा मत करो, वहां सब एक ही है। लेकिन ये आगे चल के पहुंच के जो उद्देश्य है, जो गोल है, जो जहां जाके पहुंचना चाहते हैं, वो अलग अलग है। अगर वो अलग ना होता तो आपस में भेदभाव क्यों?
0: विचार करने की, फिर से बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।
1: जी सर, आवश्यकता है
0: बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि अब जैसे जैसे हम वार्म अप हो रहे हैं, इस विषय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी समझ भी खुल रही है। थोड़े से शब्द फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें समझ भी आ रहा है कि ऑल राइट, ये पर्टिकुलर शब्द जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में गहन विचार चाहिए। बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हुए अब एक और थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप सवाल, कई बार लोग बात पूछते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खमखा में कंफ्यूज होने की कोशिश ज्यादा ही समझदार बन जाते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, हमको प्रभावित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, या कंट्रोल कर रही है? तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति, सर आप मानते हो?
1: अच्छा, अदृश्य शक्ति जब है ब्रह्मांड की ओर नहीं, बस हमारे शरीर पिंडांड है उसी में पहले देखिए।
0: जी।
1: आप प्राण वायु लेते हैं, आप दृश्य देख सकते हैं उसे?
0: जी नहीं, वायु को नहीं आप देख सकते।
1: हाँ, आप डाइजेस्ट हो रहे हैं, आप कुछ देख पा रहे हैं?
0: नहीं देख पा रहे।
1: आपके अंदर कुछ सोच है, ये सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं सवाल की प्रश्न की उत्तर दे रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हैं?
0: नहीं।
1: इसका मतलब है एक है दृश्य शक्ति, एक है अदृश्य शक्ति।
0: अरे वाह, क्या बात है सर।
1: अच्छा, दृश्य शक्ति जैसे पिंडांड हम में है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे सूर्य, सूर्य के जो उदय होता है, अस्त होता है, ये हमारी दृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति भी बहुत है कि क्या हमारे मिल्की वे तक सीमित है? हमारी गैलेक्सी इससे बाहर भी और कुछ है?
0: जी।
1: ये नक्षत्र लोग क्या है, वो सोच उनका जैसे चलता कैसे, ये हमारे हर साल देखिए आपको ग्रहण आता है, ये कैसे आता है? तो इस सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति भी है, एक दृश्य शक्ति भी है।
0: जी।
1: अदृश्य शक्ति को देखने के लिए सूक्ष्म बुद्धि को किसे जरूरत होती है? इनसाइटफुल एनालिसिस। इसके अदृश्य शक्ति को देखने के लिए या समझने के लिए हमें एक सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत है।

यार जाहिर सी बात है, अभी मोहन सर ने जो एक सूक्ष्म बुद्धि के बारे में बताया, ये एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रभाव समझने की बात में आ जाता है जो कि मौजूद है। बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि अदृश्य और दृश्य में क्या फर्क है। तो जिस तरह से दृश्य मौजूद है, उसी तरह से अदृश्य भी मौजूद है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आइए दोस्तों, फिर रुकिए रुकिए, एक भजन का आनंद लेते हुए विचार कीजिए।

0: इस प्रोग्राम को बार बार सुने, क्योंकि विचार करके समझना जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। आप स्वार्थी बनिए, थोड़ा अपने बारे में सोचिए और इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। मोहन जी ने जो बताया बहुत सुंदर। अब आपकी बातें सुनकर समझकर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि जी बिल्कुल ठीक कहा मोहन साहब ने और मैं अब आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं, तो उसको आप बहुत सरल भाषा में 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ सिंपल स्टेप्स बताइए सर, जिससे कि वो उनको अपनाकर आध्यात्मिक हो जाए।
1: अच्छा, अभी जैसे है, आध्यात्मिक होने के लिए पहली जरूरत है कि हमें ये जो हमारी जो अभी आर्थिक व्यवस्था की ओर हम समझ रहे हैं कि आर्थिक व्यवस्था में ही हमारी संतोष और हम सब खुश रह सकते हैं
0: जी।
1: अच्छा, इसको हमें जरा ये सोच को बदलना है। आर्थिक व्यवस्था जो जरूरत है, लेकिन इससे आगे भी हमारा कुछ उद्देश्य है। उसके लिए उसको पहले, उसको कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले a+b² सीखना चाहिए। तो आप ज्ञान प्राप्ति से पहले ज्ञान योग्यता प्राप्ति की जरूरत है। तो पहला कदम है कर्म योग। अपना कर्म करो, फल तुम्हें ईश्वर से मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा
0: जी। जी,
1: वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर, वैसे नहीं है। आपको अपना कर्म करो और आपके कर्म का जो फल है वो ईश्वर की कृपा से आपको मिलेगा ही, उसको कर्म फल कहते हैं। और ईश्वर के ऊपर विश्वास और श्रद्धा बढ़ाने के लिए उपासना की जरूरत है। सो स्टेप 1 कर्म योग, स्टेप 2 उपासना, तीसरा किसी गुरु के चरण में जाएं और श्रवण मनन शुरू कर दें, उनकी उनकी साथ सत्संग गुरु, क्योंकि ये जो चीज है अपने आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, गुरु के साथ श्रवण मनन और निधि ध्यासन की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स एब्सोल्युटली जरूरत है, कर्म योग, उपासना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन
0: जी,
1: इसमें सब कुछ आ जाते हैं
0: जी। श्रवण मनन और तीसरा कौन सा सर?
1: नित्यासन निधि ध्यासन ना, छोटा ध और फिर ध्या। अच्छा, निधि ध्यासन का मतलब ये जो विचार है आत्मविचार के ऊपर धी को लगाना, निधि ध्यासन, निश्चय अध्ययन करना, निधि ध्यासन।
0: ओके ऑलराइट। तो दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से सर ने, मोहन सर ने 3 स्टेप्स बताए कि आपको उन चीजों की जरूरत है। मुझे, मेरे हिसाब से बड़ी ही प्यारी चीज जो मुझे अपनाने के लिए लगी वो ये कि ज्ञान पाने के लिए आप ज्ञान के लिए योग्य तो होइए पहले। जाहिर सी बात है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया, एलजेब्रा को समझने के लिए पहले आप a+b² तो सीखिए। जब आपको यही नहीं पता तो एलजेब्रा कहां से आने वाला है? सो इट इज सो ब्यूटिफुल। मोहन सर, आपका बहुत बहुत आभार है, साधुवाद, धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला, हम लोगों को बताया, हम लोगों को शिक्षित किया किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और चलते चलते बस हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर आप?
1: हाँ, बस इतना ही है कि संदेश इतना ही है, मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, दुख की कोई गुंजाइश है ही नहीं हमारे जिंदगी में। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानने के लिए गुरु के शरण में जाओ, बाकी सब ईश्वर कृपा है।
0: बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा धन्यवाद मोहन सर, थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा, ईश्वर कृपा गुरु, ईश्वर अनुग्रह गुरु कृपा से मैं आपसे 2 शब्द मैंने आपके साथ शेयर कर सका। ये लोगों को अगर बेनिफिट हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरा टेक्निकल है, जरा समझने में।
0: ऑफ कोर्स।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को

सुबह नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है, जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो हैं प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं।
1: सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं
0: जी,
1: और कंटेंट राइटिंग करता हूं, माने वेब वेब कंटेंट जो होता है वो।
0: जी जी जी।
1: मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर से बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका?
1: आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, आत्मा माने अपनी आत्मा, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हो, आत्मा माने खुद, जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, something that keeps me in front, something that orients me, that is adhyatma.
0: Okay.
1: वैसे spirituality के बारे में बात करूं तो

0: हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें. सो लाइक आई सेड, स्पिरिचुअलिटी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, द इनर सेल्फ एंड द हायर सेल्फ, विच कुड बी इंटरप्रेटेड एज द माइंड, द सोल एंड द यूनिवर्स.
1: राइट.
0: लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए, जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें.
1: जी.
0: वो समझते नहीं है. इसका इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं. ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला, जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाए, तब चीजें आसान हो जाती हैं. स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी इनवर्ड, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज, टू मैनिफेस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन एंड द अल्ट्रा ह्यूमन, द सुपर ह्यूमन, यू नो, द कॉस्मिक एनर्जी. स्पिरिचुअलिटी टू मी इज द कंपास ऑफ द माइंड एंड द सोल. लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ कुछ समझ तो आनी चाहिए. दे नीड टू हैव और दे नीड टू डेवलप अ सर्टन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग.
1: करेक्ट. सो द पॉइंट इज, जी,
0: वो आचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है. आचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं. जब मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, आचार में मिलजुल गुल जाने के बाद, तब जाके आचार तैयार होता है. लाइकवाइज वी ऑल्सो नीड टू इन्वेस्ट इन अवर नेक्स्ट जनरेशन. वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर आवर सेल्स एंड वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, वी नीड टू गिव देम ऑल्सो टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्शन पे एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है.
1: ओह प्लीज.
0: डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की.
1: जी.
0: और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट माय स्पिरिचुअलिटी ऑफ लाइफ हैज बीन दिस, माय अप्रोच टू लाइफ हैज बीन दिस, कि हरवंश राय जी की वो कविता, कि कविता का शीर्षक है जीवन की आपाथापी में.
1: जी.
0: कहते हैं कि जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला, कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना, उसमें क्या बुरा भला. तो ये समझ पहले, ये सोच हमने करनी है पहले, बाद में बच्चों को सिखानी है. है बच्चों को, आज के पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो. दे एब्सॉर्ब थिंग्स मच फास्टर देन वी डिड. बहुत बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की.
1: जी.
0: Why I say this is because, you know, in spite of the distractions, changes in lifestyle, westernized thinking, or the so-called modern thinking, spirituality obviously is followed by today's youth. अब बात ये हो सकती है कि हमारे पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे, अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों, लेकिन आज कम है. लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है. उन्हें 30-35 तक आने दीजिए, वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे.
1: जी.
0: तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए.
1: बिल्कुल ठीक बात है.
0: सी, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अडॉप्टिंग आवर कल्चर एंड आवर लाइफस्टाइल, व्हेयरएज आवर ओन यूथ are seen to be taken over by vices, by vulgarity, violence, and an overdose of so-called modernization.

0: Correct.
1: This said, the earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो है, माने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते.
0: जी हाँ,
1: उसके लिए वक्त भी देना चाहिए. एंड यहाँ एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे. क्योंकि क्योंकि हाँ, नहीं, क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर. हमारे हाथ में सोना है. सो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे. ये है.
0: यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू. बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने. कई बार मैं मानता हूं प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूं कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी. हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर. लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे'ल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन वी डिड.
1: हमें वक्त दिया गया या नहीं, ये अलग बात है सर. अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है.
0: करेक्ट.
1: वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर. वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स. If our parents were less understanding, we have to be more understanding towards the next generation.
0: Correct.
1: कहीं ना कहीं हमने ये generation gap कम करना है.
0: ये हमारी responsibility हो जाती है, no doubt.
1: बिल्कुल.
0: बहुत सुंदर. तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास.

0: बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की, तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन और यूं देखा जाए तो आज का पूरा जमाना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब
1: बिल्कुल
0: एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका?
1: सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कैसे करता है? तो I may be called negative or I may be called a little blunt, but social media आजकल लेटी को यूज कर रहा है, वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा humble opinion है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। Because why I say this is because आध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म has no pre-qualifications. लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा, ये सारी चीजें देख although I might sound cynical and negative, सोशल मीडिया, यू नो, लाइक पर्टिकुलर जॉनर ऑफ फिल्म, जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, दीज थिंग्स हैव बीन डिस्ट्रैक्टिंग एंड डिस्टर्बिंग द यंग माइंड्स एंड इन टर्न अफेक्टिंग एंड करप्टिंग अवर सोशल फाइबर। बट इन स्पाइट ऑफ सच डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस, टू स्टे ट्रू टू वंस कॉन्शियंस is the test of one's spirituality. On a very hopeful note, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. Sir, देखिए, एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने
0: जी।
1: जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो
0: जी,
1: तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला
0: भी जला सकते हैं।
1: सर, ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है।
0: बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है। अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए, विचार करिए, दो मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए, हम वापस आते हैं इस भजन के बाद।

0: बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इसे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है।
1: ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी एंड वन मोर थिंग, तो आई कैन रिलेट टू ऑल दोज थ्री सिचुएशंस व्हिच यू सेड। यस, स्पिरिचुअलिटी डज हेल्प इन मैनेजिंग एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड यू नो आवर डिफिकल्ट माइंडसेट।
0: जी,
1: इंसान जब समुद्र में गिर

0: जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं। हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होता है, होती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज द फोर्स दैट पुशेस अस टू कीप गोइंग।
1: राइट,
0: स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी, हम क्या कहते हैं उन छह चीजों को, षड्रिपु ना। कभी कभी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी सिक्स पर्सनल एनिमीज। पर्सनल एनिमीज आई से बिकॉज षड रिपु, षड माने छे, रिपु माने एनिमीज। षड रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर।
1: जी,
0: अगर स्पिरिचुअलिटी से हम लेवल हेडेड रहें, अगर हम अपने मन पे काबू कर पाए तो हम इन षड रिपुओं से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है।
1: जी,
0: आज मेरे पास अगर 11-12 हैं तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ एक या दो उसमें
1: ऐड किए,
0: बढ़ाए।
1: जी,
0: वो जो 10 का बेस है, आई बिल्ट अप ओनली 1 or 2 ऑन दैट बेस। सो दिस लेवल हेडेड थिंकिंग, दिस ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ।
1: जी,
0: स्पिरिचुअल माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो लाइक आई सेड, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं।
1: जी,
0: इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज, डिस्ट्रेस एंड एडवर्सिटी, इट इज दिस स्पिरिचुअल थिंकिंग दैट कीप्स अस गोइंग विद रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स फुलफिलिंग अवर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स टुवर्ड्स एवरीवन। दोज हु आर वीक एट हार्ट एंड माइंड, ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जिनकी नहीं होती या कम होती है, दे टेंड टू हार्म देमसेल्व्स इधर थ्रू वाइसेस, बुरी आदतें हों, सब्सटेंस अब्यूज हों, या फिर एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड हों।
1: जी,
0: स्पिरिचुअलिटी सर्व्स एज अ लाइट हाउस ड्यूरिंग द स्टॉर्म इन अवर लाइव्स एज वी अंडरटेक द जर्नी थ्रू द ओशन ऑफ लाइफ।
1: वाओ, ब्यूटीफुल।
0: दैट इज वेयर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस इन ओवरकमिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग एंड फ्रॉम माई ओन एग्जाम्पल डिप्रेशन ऑल्सो।
1: ओके,
0: यस,
1: राइट, अमेजिंग। बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने, इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है। प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सुंदर, लीजिए ना एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास।

0: प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़े तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है आध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं?
1: अब देखिए, सिक्का तो एक ही है
0: जी,
1: लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट कंसेप्ट्स।
0: ओके,
1: although there may be a few similarities such as showing the path of righteousness, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। देन दे बोथ, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, टीच यू बिलीव एंड फेथ इन द हायर सेल्फ और द सुप्रीम सुपर ह्यूमन एंटिटी। बट देन इन स्पाइट ऑफ दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड राइटियसनेस एंड रिलीजन
0: जी,
1: द डिफरेंस विल डेफिनेटली आउटनंबर द सिमिलैरिटीज।
0: अच्छा सर,
1: बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स।
0: जी क्या बात है
1: जी, जहां जहां रिलीजन खत्म हो,
0: जहां धर्म रुकता हो,
1: जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एटसेट्रा, टू बी परफॉर्म थ्रू अ पर्सन, थ्रू अ पर्सन्स लाइफ जर्नी। धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं
0: जी।
1: और उस धर्म के मार्ग पर, उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है।
0: ओके,
1: यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क, यू कैन नॉट बी अ गेम चेंजर। वेयर एज स्पिरिचुअलिटी लिबरेट्स यू फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड बाइंडिंग्स। देर आर नो डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी, ओनली थिंग इज योर एक्शंस have to conform to your conscience. धर्म में क्या करना है यह आपको वेदों में, आपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अध्यात्म में क्या करना है यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। सी, रिलीजन इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंसेप्ट ऑफ गॉड। इन कॉन्ट्रास्ट, स्पिरिचुअलिटी टेक्स यू ऑन एन इनवर्ड जर्नी एंड इंट्रोड्यूसेस यू टू द सबकॉन्शियस यू, टू द कॉन्शियस यू विच इज योर सोल, योर आत्मा एंड योर इनर सेल्फ।
0: जी,
1: रिलीजन इज एन आउटसाइड अफेयर,
0: वेयर
1: स्पिरिचुअलिटी इज अ टोटल इनसाइड अफेयर।
0: ऑलराइट,
1: अब आप एक 100 लोगों का एक एक ऑड ग्रुप ले लें, तो पीपल कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, येट दे मे शेयर द सेम कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
0: Oh, yes.
1: That is why I feel religion and spirituality are two very separate things.
0: सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज अलग अलग चीजें हैं, और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहां पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत खूबसूरत। ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को आनंद लीजिए, हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जेनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग से आजादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए धर्म, तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े?
1: वेल, आपने, मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया।
0: मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा।
1: जी बिल्कुल नहीं, आपने दो लफ्जों में उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का।
0: जी,
1: आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं
0: जी,
1: एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं,
0: लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं।
1: पता नहीं कितने सौ बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा।
0: जी,
1: लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए, पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था
0: जी,
1: वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, IAS IPS हो गए
0: जी,
1: तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने। दैट कंसंट्रेशन आल्सो वी लर्न्ड थ्रू बेबी स्टेप्स ओनली।
0: करेक्ट,
1: दैट इज व्हाई आई सेड कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। लाइकवाइज इवन इन स्पिरिचुअलिटी, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर।
0: प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया, बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच यो, इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ।
1: प्लेजर ऑलवेज।
0: थैंक यू सर, प्लीज टेक केयर।
1: थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। गर्मी जो सिर्फ मौसम नहीं, एक पूरी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई कहानी में। आज की इस कहानी में हम सिर्फ गर्मी की बात नहीं करेंगे, आज के एपिसोड में हम उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन समर ही दे सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर के 2 बजे हैं, सड़क ऑलमोस्ट खाली, धूप इतनी तेज कि लगता है हवा भी गर्म हो गई है, और इस गर्मी के बीच अचानक एक आवाज, टन टन टन। कुल्फी वाले की घंटी समर का एक एंथम होता है, बस ये आवाज ही होती है जो बचपन में दिल की धड़कने बढ़ा देती है। जैसे ही घंटी बजती है, घर के अंदर से रॉकेट स्पीड से बच्चे बाहर निकलते हैं। माँ कुल्फी चाहिए, कुल्फी वाला आ गया, और मम्मी अपनी इटर्नल डायलॉग के साथ रेडी। रोज रोज नहीं मिलती कुल्फी, और हम पर मम्मी आज स्पेशल है, कल से नहीं मांगूंगी पक्का, और ये डायलॉग हम रोज बोलते हैं। फिर बागेनिंग शुरू होती है, एक ही ले लो भैया छोटी वाली देना, और फाइनली

आम की पेटी आना और मम्मी का स्ट्रिक्ट रूल गेस्ट के लिए है, पर हम ऑलरेडी दो आम वॉशरूम में छुपके खा चुके थे और वो आम का रस स्टील के बड़े भगोने में पूरी फैमिली के साथ, कोई रोटी के साथ खा रहा है, कोई पूरी के साथ खा रहा है और कोई डायरेक्ट सिप्स ले रहा है और लास्ट में हाथ पे चिपका रस और उसे चुप चुप के लिख करना। उफ क्या दिन थे। और जब हीट लेवल्स एक्सट्रीम हो जाते थे तब एंट्री होती थी आम पन्ना की, कच्चे आम का आम पन्ना, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, एक सिप लो तो लगता है पूरी बॉडी रिबूट हो गई हो। मम्मी प्राउडली बोलती, ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, और हम, ये तो लाइफ स्ट्रोक से बचाता है मम्मी। कूलर वर्सेस गर्मी की अल्टीमेट बैटल। पहले एसी नहीं था घर में, पर कूलर, कूलर हीरो था। कूलर के सामने बैठ जाओ और लगता था नेचर ने पर्सनली हवा भेजी है, और उसकी आवाज, कूलर के फैन में मुंह डाल के खड़े होना और अपनी ही आवाज को घर से सुनना, याद आया? वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा बजता है कानों में, जो बिना प्लेलिस्ट के चल रहा होता है पूरे समर्स में, और जब पानी खत्म हो जाता है तो सडनली हवा का तंदूर मोड ऑन, फिर घर में एक ही आवाज, पानी डालो कूलर में, लाइट चली गई। और समर का सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट, बिजली का जाना, फैन बंद, कूलर बंद, सब बंद, और मम्मी का सोल्यूशन, हाथ से पंखा जुलाओ, और हम, ये कौन सा जिम है भाई, टेरेस वाली चांदनी रात, और फिर रात को टेरेस पे सोने के प्लान्स, छत पे बिस्तर, ऊपर तारों भरा आसमान, एक सफेद चादर और दूर कहीं से रेडियो की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा, और मम्मी, मम्मी कहती मच्छर का कॉइल जला दो। हम स्टार्स काउंट करते रहते थे, कॉन्स्टिलेशंस बनाते रहते थे, और कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता। कभी बीच रात उठ के आसमान देखना, ऐसा लगता था मानो दुनिया रुक सी गई। कहाँ गए वो दिन, दिल सच में ढूंढता है फुर्सत के वो रात दिन। अब आते हैं गोले वाले के कलर थेरेपी पे। जी हाँ, गोले वाले भैया, बर्फ का गोला ऊपर से कलरफुल सिरप्स, और वो पूछता कौन सा फ्लेवर दीदी, हम झट से बोलते भैया फुल मिक्स बना दो या फिर काला खट्टा। रिजल्ट होता एक रेनबो गोला, और टंग भी उसके साथ साथ रेनबो हो जाती। समर का एक फनी ट्रूथ होता है दोस्तों, गर्मी में तीन चीजें पक्की होती हैं, आइसक्रीम का गिरना, बिजली जाना और मम्मी का गुस्सा। और जब कोई गेस्ट आ जाता था तो मम्मी की पहली लाइन, आम उन्हें दो, और हम अंदर से कुड़कुड़ाते रहते थे। दोस्तों, गर्मी सिर्फ टेम्परेचर नहीं होती, एक इमोशन होती है, वो कुल्फी की घंटी, वो आम की मिठास, वो कूलर की ठंडी हवा, वो टेरेस की रात, सब कुछ सिंपल था पर दिल को इतना खुश कर देता था जैसे चांद छू लिया हो। आज की गर्मी वर्सेस कल की गर्मी, आज एसी ऑन है, फूड डिलीवरी है, पर वो टन टन की एक्साइटमेंट, वो बिना वजह वाली हंसी शायद थोड़ी कम हो गई है। तो इस समय थोड़ा स्लो हो जाएं, थोड़ा फील करें, एक कुल्फी जरूर खाएं, आम का रस हाथ से खाएं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोन साइलेंट पे हो या ना हो, दिमाग कभी कभी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता है। कोई कुछ बोल रहा होता है और अंदर से आवाज आती है, प्रोसेसिंग।

नव ग्रहों की एक सभा 2.0, जब ग्रहों ने इंसानों की कंप्लेंट मीटिंग बुलाई। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जहां 9 ग्रह मिलके इंसानों की आदतें डिस्कस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, सोचिए, अंधेरा नहीं, रोशनी भी नहीं, एक अजीब सा शिमरिंग स्पेस जहां हवा नहीं पर एनर्जीज चल रही हैं। यही है नवग्रहों की सभा। आज वहां इमरजेंसी मीटिंग है और एजेंडा। अर्थ के लोग हमें हर चीज के लिए ब्लेम क्यों करते हैं? एंट्री नंबर 1, सूर्यदेव, सीईओ ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे पहले इन्हीं की एंट्री होती है, हमारे प्यारे सूर्यदेव की ब्राइट एंट्री, इतनी ब्राइटनेस कि बाकी सबको सनग्लासेस चाहिए। मीटिंग टाइम पे स्टार्ट होगी, सब अंडर ब्रेथ, सर थोड़ा डिम मोड पे आ जाओ ना, बट सूर्यदेव तो सूर्यदेव हैं। एंट्री नंबर 2, चंद्रदेव, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। चंद्रदेव आते हैं सॉफ्ट से ग्लो के साथ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सूर्यदेव कहते हैं, ये थेरेपी सेशन नहीं है चंद्र। एंट्री नंबर 3, मंगलदेव, एंग्री यंग ग्रह, हमारे सिपाही। मंगलदेव की एंट्री आती है और फुल एनर्जी मोड ऑन हो जाता है। किसने कंप्लेन किया, बताओ बताओ किसने कंप्लेन किया? बुध देव कहते हैं बीच में, भाई पहले सुन तो ले। एंट्री नंबर 4 इन्हीं की है, हमारे बुध देव यानी मर्क्यूरी, डेटा एनालिस्ट ऑफ द कॉस्मोस। बुध देव टैबलेट लेकर आते हैं और कहते हैं, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग और बाकी सब इंग्लिश बंद करो बुध देव, ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है। एंट्री नंबर 5, सबके फेवरेट, सबसे प्यारे, सबसे बड़े गुरुजी, गुरुदेव मोड ऑन, बृहस्पति। बृहस्पति देव कामली आते हैं और कहते हैं, हर प्रॉब्लम की एक सीख होती है। मंगलदेव इंटरप्ट करते हैं, आप हर जगह ज्ञान क्यों देते हो? एंट्री नंबर 6, शुक्र, स्टाइल और रोमांस की किंग। शुक्रदेव की एंट्री परफ्यूम की खुशबू के साथ, लाइफ में थोड़ा ग्लैमर भी जरूरी है, शनि साइड आई देता है। एंट्री नंबर 7, शनि देव, न्याय के देवता। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, शनि देव आते हैं स्लो और इंटेंस, सब सीधा होके बैठ जाते हैं। कौन ब्लेम कर रहा था मुझे जरा बताना, बाकी सब हम नहीं, हमने तो बिल्कुल नहीं। एंट्री नंबर 8, राहु, मास्टर ऑफ इल्यूजन। राहु की एंट्री थोड़ी मिस्टीरियस म्यूजिक के साथ होती है, मैं तो बस इल्यूजन क्रिएट करता हूं। इस पे बुद्धदेव कहते हैं, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एंट्री नंबर 9, केतु, डिटैच्ड बाबा। केतु देव आते हैं थोड़े से लॉस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, और बाकी सब फिर आए क्यों भाई। सीन नंबर 2, अर्थ की कंप्लेंट्स की एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है। बुध स्क्रीन ऑन करता है और स्लाइड नंबर 1, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, फोन टूट गया, बाकी सब व्हाट। स्लाइड नंबर 2, शनि इक्वल्स टू जॉब नहीं मिली। शनि बोलते हैं, रेज्यूम देखा है अपना। स्लाइड नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इक्वल्स टू राहु। राहु कहते हैं, रेड फ्लैग, इग्नोर किसने नहीं किया। सीन नंबर 3, सारा क्योस शुरू हो जाता है। मंगल कहते हैं, मैं तो सिर्फ एनर्जी देता हूँ। चंद्र कहते हैं, मैं सिर्फ इमोशंस बढ़ाता हूँ, और शुक्र कहते हैं, मैं तो प्यार ही प्यार देता हूँ। शनि फिर कहते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट लेता हूँ,
और सब एक साथ, गलती हमारी कहाँ है? सीन नंबर 4, ट्रूथ बाहर आता है। तब बृहस्पति कामली बोलते हैं, हम रास्ता दिखाते हैं पर चलना इंसान को होता है। चंद्र कहते हैं, मैं मूड बनाता हूँ, डिसीजंस उनके होते हैं। और बुध कहते हैं, मैं कम्युनिकेशन देता हूँ, बोल क्या रहे हैं वो तो उनकी चॉइसेस हैं। अब होता है एक लाइव डेमो। सूर्य बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान रात को 3 बजे तक फोन यूज करता है, सुबह लेट उठता है, ऑफिस लेट पहुंचता है, बॉस से डांट खाता है और फिर बोलता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तब ग्रह एक दूसरे को देखते हैं और मंगल बोल पड़ता है, फोन किसने यूज किया था? चंद्र कहता है, लेट कौन सोया था? शनि कहते हैं, लेट कौन पहुंचा था? और सब एक साथ कहते हैं, इंसान। अब बारी है फाइनल वर्डिक्ट की, और इसमें शनिदेव कैसे पीछे रह जाएं? वो एकदम से खड़े होते हैं और बोलते हैं, डिसीजन सुनाया जाता है, हम इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल नहीं। ब्लेम बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सूर्यदेव बोलते हैं, हम आसमान में हैं पर जिंदगी उन्हीं के हाथ में है। सब ग्रह धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं और एक आवाज गूंजती है, अपनी कहानी खुद लिखो। दोस्तों, प्लैनेट्स आपको सिर्फ गाइड करते हैं पर आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी मेहनत, आपकी चॉइसेस, आपका एटीट्यूड, वही आपकी डेस्टिनी बनाता है। सच सच बताओ, आपने लास्ट बार कब किसी ग्रह को ब्लेम किया था? मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक प्यारी ग्रहों की कहानी। स्टार्स को देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए, पर स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: चार्जिंग पे जिंदगी। फोन चार्ज पे लगाओ तो लगता है कंट्रोल में हो। खुद की लाइफ चार्ज पे लगाने का ऑप्शन होता तो सब लाइन में खड़े होते।

स्नैक्सीडेंट एपिसोड, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इंश्योरेंस भी काम नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, आज का वर्ड ऑफ द डे है स्नैक्सीडेंट। नाम सुनते ही लगता है ना ये कोई नया क्राइम है या कोई फूड स्कैंडल, पर नहीं। स्नैक्सीडेंट एक ऐसी लाइफ सिचुएशन है जिसमें आप बिल्कुल इनोसेंट होते हो, ट्रस्ट मी, पर एविडेंस सब आपके खिलाफ होता है। डेफिनेशन थोड़ी फिल्मी है। स्नैक्सीडेंट का मतलब होता है जब आप कहते हो बस थोड़ा सा खाऊंगा और 10 मिनट बाद पैकेट खुद आपको देख के कहता है भाई मैं तो खत्म हो गया, और आप शॉक में चले जाते हो, ये किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ, और घर में सिर्फ आप होते हो। बस एक बाइट से शुरू होती है ये स्नैक्सीडेंट की कहानी। हर स्नैक्सीडेंट एक इनोसेंट शुरुआत होता है। शाम का टाइम, आप थोड़े से बोर्ड, टीवी या फोन चल रहा है और आपका दिमाग बोलता है थोड़ा स्नैक हो जाए। आप फ्रिज खोलते हो, स्नैक निकालते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो सिर्फ 2 बाइट्स। ये वही प्रॉमिस है जो कभी पूरा नहीं होता। फ्रेंड्स, स्नैक की कैरेक्टर एंट्री अब जरा इमेजिन करो। स्नैक्स भी अगर इंसान होते, चिप्स का पैकेट बोलता आओ आओ मैं क्रंची हूं, चॉकलेट बोलती मैं तो मेल्ट हो जाऊंगी जल्दी खा लो, और बिस्किट्स बोलते हम तो चाय के बिना इनकम्प्लीट है, और आप इमोशनली मैनिपुलेटेड हो जाते। द ब्लैक होल इफेक्ट। स्नैक्सीडेंट एक ब्लैक होल जैसा होता है, जो भी अंदर जाता है वापस नहीं आता। चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन सब गायब, और आप सोच रहे होते हो मैं तो बस थोड़ा सा खा के रहने वाला था। चॉकलेट वाली ट्रेजेडी। चॉकलेट के साथ स्नैक्सीडेंट अलग ही लेवल का होता है दोस्तों। आप एक पीस तोड़ते हो, फिर सोचते हो ये तो अनइवन हो गया, थोड़ी सी और खा लेता हूँ। फिर आप बैलेंस करते हो, और बैलेंस करने के लिए एक और पीस, और फिर एक और, और फिर एक और, और एंड में पूरी चॉकलेट गायब सिर्फ रैपर हाथ में। और आपका लॉजिक ये रहता है शायद सिमेट्री के लिए जरूरी था ना। मिडनाइट स्नैक्सीडेंट हॉरर स्टोरी, इससे ज्यादा डरावनी कोई स्टोरी नहीं है, ट्रस्ट मी। रात के 1 बजे सब सो रहे हैं और आपको आवाज आती है किचन से। आप जाते हो, लाइट्स ऑन करते हो, और फ्रिज के अंदर स्नैक्स आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। आप बोलते हो बस पानी पीने के लिए आया हूं, और 15 मिनट बाद सारी प्लेट साफ। डाइट प्लान का मर्डर, ब्रूटल मर्डर। सुबह उठते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, बस अब डाइट स्टार्ट ही करने वाला हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट, सैलेड, डिटॉक्स वाटर, और रात को स्नैक्सीडेंट का फिर से अटैक होता है। डाइट प्लान का RIP, प्रॉपर रेस्ट इन पीस, एक इल्यूजन है दोस्तों। फ्रेंड्स के साथ स्नैक करना एक मिथ है, सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और रियलिटी एक बंदा सब खा जाता है और बाकी लोग हम तो सिर्फ देखते ही रह गए। पिज्जा स्नैक्सीडेंट, डेंजरस लेवल है ये। पिज्जा ऑर्डर करो, प्लान करते हैं 2 स्लाइसेस ही खाएंगे, और फिर ये लास्ट स्लाइस ही तो है, और फिर अब एक ही तो बचा है, वेस्ट नहीं कर सकते, आखिर हम इंडिया में रहते हैं, और एंड में पूरा पिज्जा फिनिश। पैकेट का बिगेस्ट स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम क्या है जानते हैं? फैमिली पैक। ये फैमिली के लिए नहीं होता, एक इंसान के लिए चैलेंज पैक होता है, और जब खत्म होता है आप कहते हो ये इतना छोटा कब हो गया। स्नैक्सीडेंट का डीप मीनिंग दोस्तों, स्नैक्सीडेंट सिर्फ फूड नहीं है,
ये लाइफ का एक पैटर्न है। हम कहते हैं बस 5 मिनट स्क्रॉल और 2 घंटे निकल जाते हैं इंस्टाग्राम पे, पता भी नहीं पड़ता। बस एक एपिसोड और रातों रात पूरी सीरीज खत्म। बस थोड़ा सा और कंट्रोल चला जाता है सिस्टम के हाथ में। जिंदगी भी थोड़ी सी स्नैक्सीडेंट जैसी है दोस्तों। अगर कंट्रोल ना रखो तो छोटी चीजें भी ओवर हो जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नैक्स छोड़ दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। बस एंजॉय करो पर कॉन्शियस होके। सच बताओ, आपने अपना लास्ट एक्सीडेंट कब किया था और किसके साथ किया था? चिप्स के साथ, आइसक्रीम के साथ या फ्रिज का फुल ऑन रेड? दोस्तों आज का वर्ड याद रखिएगा, खैर याद तो रहेगा, रोज होता जो है। स्नैक्सीडेंट जब स्नैक खुद नहीं खाता आपसे खुलवा लेता है, और अगली बार जब आप बोलो बस एक बाइट, तो याद रखना ये कहानी पहले भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ आपकी दोस्त, खुश रहिए, हंसते रहिए और स्नैक्स एंजॉय करते रहिए, पर थोड़ा कंट्रोल और कॉन्शियसनेस के साथ, वरना स्नैक्सीडेंट FIR लिखवा देगा। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मीटिंग में सिर्फ हाँ बोलने वाला। मीटिंग में एक बंदा होता है जो सिर्फ सर हिलाता है, हाँ हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और बाद में पूछता है मीटिंग किस बारे में थी।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। Stay tuned, stay happy and stay curious. Bye.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

काल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का रंग है कविता की रूह का, जो देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। कहते हैं शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी कलम ने रूह की आवाज को शब्दों में ढाला है। संवेदनशील पित्री, समर्पित गृहिणी, स्नेही माँ और बेहद प्रेरक लेखिका रिया मनोज। रिया की पहली कविता संग्रह रूह की आवाज को मिला एमली डिकिंसन अवार्ड। साथ ही उन्हें मिले हैं सत्य स्त्री सम्मान 2025, टीजीटी हिंदी सम्मान और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी सम्मान, जो उन्हें हाल ही में मिला है। कवित्री नहीं, वे कंपाइलर भी हैं, जिन्होंने ज्योतिर्मय उजाले की ओर जैसे प्रेरणादायक संकलन में 40 कवियों को एक साथ जोड़ा है। वहीं उन्होंने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स में लगभग 40 मशहूर राइटर्स से गहन संवाद किए हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कैसे रिया मनोज अपनी कविताओं, पॉडकास्ट और लेखन के जरिए संवेदनाओं की उस दुनिया को हमारे सामने रखती हैं, जहां हर शब्द दिल से निकला एक एहसास होता है। तो आइए स्वागत करें रिया मनोज का। रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके साथ संवाद करने का ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है।
0: तो चलिए रिया जी, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपका ये सफर शुरू हुआ। कविताएं लिखने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली?
1: कविताएं लिखने की प्रेरणा जीवन से बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कोई नहीं होता। और मेरी कविताएं मेरे मन के आईने की तरह है, जहां हर शब्द एक एहसास की परछाई बनकर उतरता है। और कब कविता मेरे जीवन में उतर गई और इतना अहम हिस्सा बन गई मुझे भी नहीं पता चला, पर जो पहली कविता मेरी प्रकाशित हुई थी वो 2022 में हुई थी।
0: इसका मतलब है जीवन से आपने बहुत सीखा और उसी से आपकी कविताओं में भावनाएं आई हैं। चलिए, आपकी कविताओं में गहरी संवेदना और आत्मचिंतन

0: उस पल को आप कैसे याद करती हैं, क्या महसूस करती हैं अगर आज भी आपको ख्याल आता है उस पल के बारे में?
1: तो वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था, क्योंकि रूह की आवाज मेरी पहली सोलो किताब है और इसमें हर कविता मेरी आत्मा का एक टुकड़े की तरह है। तो जब मुझे एमिली डिकिंसन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मेरे रूह को सुना गया है, और वो सम्मान हर उस संवेदनशील आत्मा का था जो अपने एहसासों को शब्दों में डालने की हिम्मत रखती है। और इसमें एक बहुत बड़ा थैंक्स पे अपने पब्लिशर को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे शब्दों को इतना सराहा।
0: बहुत अच्छी बात है। ये एमिली डिकिंसन अवार्ड आपको कब मिला था, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ।
1: जनवरी 2025 में
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हमारी तरफ से। क्या कोई विशेष विषय या भावना है जो बार बार आपकी लेखनी में लौट आती है, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में?
1: जी विशेष भावना तो नहीं, विशेष रिश्ता है। एक मेरा मेरे कृष्ण से और एक मेरा मेरी माँ से। माँ हम सबका सबसे पहला रिश्ता होता है, हमारे जीवन की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बंधन की गहराई और निस्वार्थता को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ।
0: बहुत
1: और कृष्ण से मेरा एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी मेरे गुरु हैं, कभी मेरे सखा हैं, कभी मेरे पूज्य हैं। उनके बिना जीवन का हर पथ मुझे अधूरा लगता है। तो कृष्ण और माँ मेरी हर कविता में लौट के जरूर आते हैं।
0: सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कृष्ण की बात पे और माँ की बात पे हम एक रिया जी गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं आपकी इन भावनाओं को लेकर।

0: अब रिया जी हम आपकी लेखन प्रक्रिया पर आते हैं। लेखन के लिए आप प्रेरणा का इंतजार करती हैं या आपके पास कोई एक डिसिप्लिन रूटीन सा है, किस तरह से आपको का ये प्रोसेस है लिखने का?
1: प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन खुद अपने आप पे बहुत प्रेरणात्मक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द खुद अपने वक्त पर मुझे दस्तक देते हैं, कभी सुबह की चुप्पी में तो कभी रात की थकान में, और कभी अचानक मन की दीवार पर उतर आते हैं। और जहां तक मैं रूटीन का बात करूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती जरूर हूँ। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो कभी कविता बन जाती है, तो कभी कोई अधूरी कहानी, तो कभी किसी किताब से उठी एक नई सोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिव्यूज भी करती हूँ, तो मेरे लिए लिखना एक आदत नहीं, एक एहसास है, मेरे दिल की धड़कन है वो एक तरह से।
0: बहुत सुंदर। आपने हाल ही में ज्योतिर्मय उजाले की ओर एक संकलन प्रकाशित किया है जिसमें 40 कवियों को जोड़ा है, ये अनुभव कैसा रहा? मुझे तो लगता है ये काफी डिफिकल्ट काम है 40 कवियों को एक साथ जोड़ना, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगी?
1: सर, डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, पर अपने आप में ये अनुभव बहुत सुंदर रहा और प्रेरक भी रहा। हर कवि अपने भीतर एक रोशनी लेकर आया, जब उनकी सभी रचनाएं एक जगह आई तो लगा जैसे शब्दों का उजाला फैल गया हो, इसीलिए मैंने इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है।
0: तो जब इतने अलग अलग स्वरों को एक साथ लाना होता है तो कंपाइलर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उनकी रचनाओं का चुनाव करना या वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे, किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ।
1: रचनाओं का चुनाव उन्होंने ही किया था, मैंने उनको, मैं चाहती थी कि मोटिवेशनल रहे, कि हम सबको एक प्रेरणा मिले। शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए होते हैं और बहुत ताकत रखते हैं, पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो था विविधता में एकता को बनाए रखना, क्योंकि हर कवि का स्वर अलग होता है और मुझे उन सबको जोड़ना था एक साझा संवेदना के तौर पर, हर आवाज को उसकी जगह देते हुए एक सामूहिक सामंजस्य जो बनाना था वो बहुत मुश्किल था, पर बहुत मेहनत की मैंने और ये बहुत खूबसूरत किताब पब्लिश हुई है मेरी।
0: वैसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके पब्लिशर कौन है इसके, आपके ज्योतिर्मय उजाले की ओर के?
1: जी, ये सोच पब्लिकेशन हाउस है मुंबई से, और ये इनकी जो हेड है वो भी एक फीमेल ही है, तो नारी शक्ति जब जुड़ जाती है किसी चीज से तो बहुत मेहनत करती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट। आपने कई संकलन में सह लेखक के रूप में भी योगदान दिया है, जैसे चैनिका, सृष्टिमन, स्वाभिमानी नारी आदि, कौन सा संकलन आपके दिल के सबसे करीब है?
1: सर, हर संकलन एक नई सीख थी, एक नई यात्रा रहा मेरे लिए, पर मैंने जो अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी गृहिणी। मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि गृहिणी का जीवन कैसा होता है, और वो मेरी पहली कविता चैनिका में पब्लिश हुई थी। तो चैनिका मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि शायद वहीं से मेरी लेखक के तौर पे जर्नी शुरू हुई थी, उस किताब से।
0: आपकी एक नई रचना है समन्वय, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संतुलन और सामंजस्य, और इस संग्रह को हम लिख रहे हैं 4 जने। हम चारों जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के राही हैं, किसी ने शब्दों में जीवन खोजा है, किसी ने अनुभवों में, पर हमारे रास्ते भले ही जुदा रहे हों पर इस नए सफर में हम सब हमराह बने हैं, और शायद इन्हीं भिन्नताओं का एक सुंदर मेल है समन्वय, एहसासों का एक सफर।
0: ओके ओके, मतलब आप 4 लेखक 4 विभिन्न विषयों पर या 4 विभिन्न भावनाओं पर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि मैंने
1: जी
0: कुछ फिल्में तो देखी हैं ऐसी के कई डायरेक्टर्स अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। तो यहाँ इस समन्वय के नाम पर रिया जी हम एक गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी जरूर सर।
2: दिल का साथी है जब दिल, कैसा रास्ता क्या मंजिल। याद आया?

0: सोचिए मत, गाइए गाइए।
1: हम भी राहों में खड़े हैं यार, इधर देख लो जाने मन प्यार से एक नजर देख लो। हम भी राहों में खड़े हैं यार, इधर देख लो जाने मन।

0: देख लो यानी मन कर दे एक नजर देख लो ला ला ला
1: रिया जी, आपका पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स काफी पॉपुलर है। ये आइडिया कैसे आया कि किताबों पर बातचीत को एक ऑडियो फॉर्म पे लाया जाए?
2: मैं चाहती थी कि लेखक अपनी कहानियां खुद पाठकों तक पहुंचाए, और दूसरी वजह ये रही कि मैं हमेशा से बहुत रीडिंग राइटिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे लिटरेरी क्लब से जुड़ी हुई थी। जब मैं वहां जाती थी, मैं देखती थी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत उम्दा लिखते हैं, पर वो ना उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैंने इसीलिए रिया रिकमेंड शुरू किया, ताकि उन लेखकों की लेखनी हम सब तक पहुंचे और सुनी जाए, और ये अपने आप में बहुत सुकून देता है मुझे जब मेरे पास सबकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनका शब्दों को दुनिया सुन रही है।
1: बहुत सुंदर। आपने करीब 40 जाने माने लेखकों से बातचीत की है, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
2: ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे लिए हर संवाद अपने आप में बहुत खास रहा है। हर लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ जैसे एक नई दुनिया ही खोल देता है मेरे लिए। और पर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, मसलन तस्नीम खान जी की ऐ मेरे रहनुमा का लेखिका है, उनकी बेबाकी और निर्भीकता उन्हें एक सच्ची साहित्यकार बनाती है। और जैसे सत्यार्थ नायक जी हैं, जिन्होंने श्रीदेवी जी की बायोग्राफी लिखी है द इटर्नल गॉडेस, वहीं उन्होंने महागाथा जैसी बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने 100 स्टोरीज लिए पुराना में से। तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो बॉलीवुड की लेजेंड पे एक स्टोरी लिख रहा है, फिर वो पुराना पे लिख रहा है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वही अगर मैं बात करूं कि सबसे खास, तो उसमें मैं राजेश शर्मा जी की बातचीत को बड़ा खास मानना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, दीन भी हैं और उद्यमी भी हैं। उनके साथ उनका एक प्रोजेक्ट है गुंजिश्ता बरेली। आप ये सोचिए कि उन्होंने फेसबुक पे ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसमें बरेली जैसे शहर में से उन्होंने 100 ऐसे व्यक्तित्व ढूंढे जिनकी वजह से बरेली आज जाना माना है, और आज उस पे 3 बुक्स पब्लिश हुई है सीरीज में। और उनके उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट रहा, वो बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, एक बुक है गली कासिम जान, अगर आपने उनका जिक्र सुना हो तो। गली कासिम जान किताब पर जो विनोद भारद्वाज ने लिखी है, हम दोनों के गालिब फेवरेट हैं, हम दोनों की फेवरेट बुक थी, तो उस पर जो हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ था, जो हमने गालिब पे और उस गली उस दौर को जिया था हमने उस बातचीत में एक बार दोबारा, वो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगी, जो मेरे लिए भी था और शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी।
1: गालिब पे आप लोगों ने लिखा है, ये तो भाई मेरा भी पसंदीदा विषय है। खैर, इस पे हम बात कभी फुर्सत में करेंगे दोबारा, या फिर आपको कभी पॉडकास्ट में फिर बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे। आज जब पॉडकास्ट का ट्रेंड बन रहा है, तो क्या आपको लगता है ये साहित्य को नए श्रोताओं तक पहुंचा रहा है? क्योंकि ये काफी साहित्य से भी बाहर आ रहा है, पहले तो किताबों में ही था जो कुछ था, लेकिन अब ये एक आम पहुंच तक है एक तरह से कहा जा सके।
2: अगर साहित्य को इस नजर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक पॉडकास्ट मदद कर रहा है, और आज की पीढ़ी सुनना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि शायद हमारे समय से वो ज्यादा बिजी हैं। अगर मैं आज के स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे टाइम पे शायद हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, एग्जाम्स दे रहे होते, आज उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने हैं, जिमिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो इस केस में वो हेडफोन्स पे पॉडकास्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर शब्द दिल से बोले जाए तो वे असर जरूर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट साहित्य और श्रोताओं के बीच एक नया पुल बनने का काम कर रहे हैं।
1: ये बात बहुत थोड़ी विचारणीय है जो आपने कही है कि साहित्य एक तरह से सुलभ हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में। अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा हर पॉडकास्टर के लिए एक ट्रिकी सा है। पॉडकास्ट बनाते समय आपका मकसद क्या रहता है, लेखक की सोच को सामने लाना या पाठक को प्रेरित करना?
2: पॉडकास्ट बनाते समय मेरा मकसद होता है कि मैं लेखकों की सोच को सामने लाना चाहती हूँ और पाठकों को प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि सुनने वाला सिर्फ किताब नहीं बल्कि उस सोच को भी समझे जो किताब के पीछे है। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है और अगर उस मकसद को जान लिया जाए तो शायद किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है।
1: नहीं, बिल्कुल सही है। और साहित्य और संगीत का भी हमेशा से बहुत अच्छा एक जुड़ाव रहा है, तो आपकी साहित्य की बात पे हम यहाँ एक अच्छा कोई गाना सुनते हैं जिसमें कुछ साहित्यिक शब्द आए।

0: रिया जी, आप अपने इंस्टा पेज बिटवीन द पेजेस पर बहुत गहराई से किताबों की समीक्षा करती हैं। रिव्यू लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया?
1: सर, मैं हमेशा से एविड रीडर रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जिंदगी में कई चीजों से डर लगता था, क्योंकि डरते हम उस चीज से जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, और किताबें मुझे निडर बनाती, बुक्स मेक्स मी ब्रेव। सो मैंने ये हमेशा से पकड़ा था और मैं हमेशा से पढ़ती रही, और मैं जो भी किताब पढ़ती थी मैं उसको समराइज जरूर करती थी और उसके कुछ कोट्स लिख दिया करती थी। और ऐसे ही ये जो समरीज और नोट्स की थी, जब इंस्टाग्राम का दौर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज हर बुक पे शेयर करने चाहिए, तो उन अनुभवों को मैंने बिटवीन द पेजेस डॉट इन पे शेयर करना शुरू कर दिया। और वहां मेरी कोशिश यही रहती है कि किताबों के पन्नों के बीच छिपी आत्मा तक पहुंचा जा सके, उसके जिस तक, उसे जिस नजर से मैं देखती हूँ, मैं उसे शेयर कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो एक अच्छे रिव्यू में आपके हिसाब से क्या ज्यादा मायने रखता है, ईमानदारी या एनालिसिस या विश्लेषण?
1: सर, मेरे लिए ना किताब एक एहसास की तरह है, और मुझे लगता है उसे परखना नहीं समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने रिव्यू में आलोचना नहीं संवाद खोजती हूँ, जहाँ लेखक की रूह और पाठकों का मन दोनों का मेल किया जा सके, क्योंकि मैं पाठक भी हूँ और मैं उस नजर से ही उसको शेयर करती हूँ।
0: ये बात बहुत सुंदर कह दी आपने। आप बहुत ज्यादा उसमें आलोचना समालोचना या क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस बात पे ज्यादा जोर देती है, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: रिया जी, आप नए लेखकों को भी लगातार प्रमोट कर रही हैं, इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या है?
1: जी, मुझे हमेशा लगता है कि हर कलम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बुक पब्लिश हो गई तो उसके पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, फिर उसको कंपाइल करना, फिर पब्लिशर्स ढूंढना, बहुत मेहनत लगती है किताब को बनने में, एक तपस्या की तरह होती है हर किताब। तो मुझे इसीलिए लगता है कि सबको बहुत मौका मिलना चाहिए, और जब मैंने शुरुआत की तब मुझे भी इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया था, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ।
0: आई कम्प्लीटली अग्री। आजकल का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है, पब्लिशिंग बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन होने से पब्लिशिंग कुछ तरह से आसान भी हो गई। पहले तो पब्लिशर को ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम होता था।
1: जी, पब्लिशर्स को ढूंढना भी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि वो पब्लिशर उस आपकी किताब की रूह को समझे, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो उसे उसी नजर से देखे और पब्लिश कराए, बहुत मुश्किल काम है ये भी।
0: बिल्कुल सही बात। और चलिए, इस मुश्किल की पहल पर या मुश्किल के काम पर हम लोग एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाना सुनते हैं।
1: जी सर।
2: वो कौन

0: सूर्या जी, आजकल कहा जाता है यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत कम हो रही है, ये क्या, ये भी हालांकि बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल सा सब्जेक्ट है, आप क्या सहमत हैं इस बात से?
1: सर मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ, पढ़ने की आदत कम हो गई है क्योंकि किताबों से इश्क नहीं रहा, पर उनमें क्यूरियोसिटी कम नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तो आई थिंक वो ऑडियो बुक या किंडल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं पर उसे वो पेपर बैक या उस फॉर्मेट में नहीं भर रहे, तो जो जैसे हमें होता था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स होती थी या कुछ और होता था, वो नहीं रहा है, वो चलते फिरते समरी सुनना या ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुनना वो जरूर कर रहे हैं। तो लिटरेचर की तरफ प्यार कम हुआ है या वो नहीं कह सकते हम, पर उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वो स्क्रीन टाइम पर चला गया इंस्टेड ऑफ अ पेपर बैक थिंग।
0: मेरे ख्याल में बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं आप, बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं। नहीं, अब कुछ साल पहले तक तो वास्तव में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब लास्ट 5-10 ईयर से तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ रही है। और इसी कंटेक्स्ट में हम आ जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। जयपुर में हम बैठे हो, जयपुर JLF की बात नहीं करें तो मजा नहीं आता ना। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं कितने जरूरी है आपकी नजर?
1: सर बेहद जरूरी है, उसका जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी की ही बात करी, तो युवा पीढ़ी उसे एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाते जरूर है, और वहां पर जब वो देखती है मंच पे लेखकों को बोलते हुए और अपनी बुक के बारे में बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो प्रेरित होते हैं, और हमारे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए तो वैसे भी उत्सव से कम है भी नहीं, जहाँ शब्द हो, विचार हो, संवाद हो, सब हो वहां पर, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं चाहे वो एक बार जाती है चेक इन डालने के लिए कि चलो हम भी जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल में, बट दे गेट इंस्पायर्ड, उसके बाद उनको मैंने देखा है कि वो ऑथर से बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक्स लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये जो वापस पेपर बैग का दौर है शायद इस वे में ही सही वापस आ सकता है, तो ऐसे फेस्टिवल और बहुत होने चाहिए जहां वे रूबरू हो सकें ऑथर्स के साथ में।
0: चलिए, हालांकि ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है क्योंकि मैं इसको 2008 से अटेंड कर रहा हूँ फेस्टिवल को। अब इसमें मुझे मतलब महसूस होता है कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, बट इन एनी केस बच्चे बहुत आ रहे हैं इसमें, इतनी भीड़ होती है बच्चों की, यंगस्टर्स की रादर, कि बहुत अच्छा लगता है एक बार इतने यंगस्टर्स को किताबों के बारे में बात करते सुनना, किताबों को देखते हैं, वो ब्राउज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: रिया जी, आजकल AI लेखन में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो रही है, आइडियाज, एडिटिंग, समरीज तक, आपको क्या लगता है इससे क्रिएटिविटी को मदद मिल रही है या खतरा सा हो रहा है?
1: सर क्रिएटिविटी को तो मदद नहीं मिल रही, अगर मैं कहूं कि मैं कुछ टाइप कर देती हूँ और वो मुझे लिख के दे देता है तो मशीन कुछ महसूस नहीं कर सकती, AI काइंड ऑफ हम उसे गैजेट मान लेते हैं या एक सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके, जैसे हम पहले हाथों से अकाउंट्स बनाया करते थे, अब लैपटॉप पे हो जाते हैं और वो सेव रहते हैं बहुत सालों तक, आपको इतने सारे जर्नल्स को संभालने नहीं पड़ते, तो AI एक टूल है, अगर उसे एक टूल के तौर पर अपना टाइम और एनर्जी सेव करके उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं तब तक वो ठीक है, पर हर गैजेट का कोई ना प्रोज और कॉन्स होती है, तो इसके भी नुकसान है, और वो अगर स्टार्ट से उसे एक बैलेंस्ड वे में नहीं यूज किया गया तो शायद वो एक खतरा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि हम 90s के जो किड्स रहे हैं उन्होंने जितने ज्यादा चेंजेस देखे हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फोन होता था जिसे हम फर्स्ट नंबर को पूरा राउंड करके घुमाते थे, फिर वो वापस टर्न होता था, फिर दूसरा नंबर घुमाते थे और बहुत देर लगती थी एक नंबर को डायल करने में, तो हमने उधर से लेके अगर मोबाइल के टच स्क्रीन तक सर्वाइव किया तो हम AI भी सर्वाइव कर ही लेंगे, हम लोग काफी बैलेंस है, हम कर ही लेंगे उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी बड़ा डिबेटेबल सा है, क्या मशीन कभी इंसान जैसी इमोशनल डेप्थ जितना लिख पाएगी, क्या कर पाएगी मशीन, ऐसा कर पाएंगी क्या कभी? क्या सोचते हैं आप इसके बाद?
1: सर मशीन महसूस नहीं कर सकती ना, उसे दर्द नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते। एनी डे ह्यूमन बीइंग और रोबोट्स में फर्क तो रहेगा ही ना, दे कांट क्रिएट द इमोशंस।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए इस मशीन और इंसान की जद्दोजहद पे एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं
1: जी।

0: प्रिया जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं।
1: जी
0: हमने बहुत सारी आपकी लेखन के बारे में बात कर ली।
1: जी
0: आप एक कवित्री हैं, माँ हैं, गृहिणी हैं, कंपाइलर हैं, रिव्यूअर हैं, सब कुछ है। इतनी
1: जी
0: भूमिकाएं निभाते हुए आप अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं?
1: सर, राइटिंग इज माय मी टाइम. एक्चुअली मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बोलूंगी तो मैं गृहिणी ही हूँ, और उसमें अगर मी टाइम की बात करूँ तो राइटिंग इज माय मी टाइम, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है और पेशेंस भी आते हैं, सुकून भी मिलता है. तो दिस इज माय मी टाइम. मेरा मेन प्रोफेशन आप गृहिणी ही माने कि वो मेरा, राइटिंग इज माई मी टाइम. जैसे लोगों का टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, मेरे लिए लिखना पढ़ना मेरा मी टाइम होता है, मुझे उसमें सुकून मिलता है.
0: वंडरफुल। मतलब आप जब लिखती है तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है। एक रिफ्रेश बटन है आपके लिए, रिफ्रेश बटन है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई लोगों का म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह
1: जी
0: लिखना आपका है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो लिखने के अलावा रिया को और किन चीजों में आनंद मिलता है? कोई और शौक, कोई और हॉबीज क्या है आप?
1: सर, आई लव गार्डनिंग. मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है. एक बीज को पौधा बनते हुए देखना, फिर उसको पेड़ का स्वरूप लेते हुए देखना, और जो पतझड़ का मौसम होता है कि सब खत्म, और फिर अचानक उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती है, वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे. तो एक अजीब सा सुकून है, और ये जो सफर है इतना बड़ा, उसमें एक पेशेंस भी है, सब्र भी है, और एक उम्मीद भी है, जो जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देती है कि एक बार सब खत्म भी हो जाए पर सब सही भी हो जाए. तो मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है.
0: बहुत खूबसूरत। आपका तो ये जो क्लिप है गार्डनिंग के बारे में आपने बोला है, हमें इसको रिकॉर्ड करके अलग से दिखा रहे हैं। ये एक आपने शब्द चित्र जिसको कहते हैं वो खींच दिया गार्डनिंग का, बहुत बढ़िया।

0: तो रिया जी, क्या मदरहुड ने आपकी कविताओं को किसी तरह से प्रभावित किया है? कुछ इन्फ्लुएंस आया है?
1: सर बहुत बहुत गहराई आई है मेरी मदरहुड की वजह से. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ हमारा पहला रिश्ता होता है, और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, एक माँ होने और एक माँ के होने का फर्क बहुत गहराई से समझती हूँ. कि तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के बाद मेरी कविताएं और मेरा जीवन दोनों अपने आप में एक संपूर्ण में पहुंचा है.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर अगर रिया राइटर पॉडकास्टर नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती?
1: सर शब्दों के बिना भी मैं शायद जीवन का अर्थ ही खोजती, क्योंकि रचना तो सिर्फ कलम से नहीं है ना, दिल से होती है. तो लेखक ना सही, शायद एक बेहतर इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी रचना होती.
0: नहीं, अगर मैं पूछूं प्रोफेशन वाइज, साइंटिस्ट बनना चाहती, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती, ऐसा क्या मन होता अगर इस जो आप करेंटली कर रही हैं ये नहीं कर रही? तो आपको लगता होगा ना, भाई ये पायलट है लेडी, ये हवाई जहाज चला रही है, ये ट्रेन चला रही है, मैं भी ऐसा कुछ करती। आजकल क्रिकेटर भी बन रही है लड़कियां।
1: सर यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट हियर?
0: हाँ
1: मैं
0: बिल्कुल।
1: मैं शू डिजाइनर बनना चाहती हूँ.
0: वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, शू डिजाइनर बनना चाहते हैं? लेट अस कम आउट समथिंग वेरी गुड। मुझे याद है एक एड आता था शू डिजाइनर का, बहुत पहले टीवी में, मुझे याद है, बड़ा एक जेंटलमैन सा आदमी वो शू डिजाइन करता था, वही उसकी याद आ गई मुझे आपकी बात सुन के।
1: तो मैंने भी बचपन में, हम सबने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कॉबलर था जो हर रात एक जोड़ी जूती बनाता था, पर उसकी सेल नहीं हो पाती थी. फिर कुछ छोटी परियां आई थी जिन्होंने जूतियां बनाई तो बड़े महंगे दामों में बिकी थी, और उसकी लाइफ चेंज हुई थी. तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने एक कहानी सुनी थी, तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगी जिससे जिंदगी, किसी की जिंदगी बदल जाए जिसको चलने से. तो मैं कॉबलर होती शायद, शू डिजाइनर.
0: तो आपकी कल्पना की इस उड़ान के लिए हम एक बढ़िया से गाने के लिए रुक जाते हैं
1: जी
0: और
1: सर,
0: सुनते हैं एक गाना।

0: अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पे आ गए हैं। कुछ बताइए, कौन से कवि या लेखक आपके लिए प्रेरणा रहे हैं, कोई खास?
1: सर, किसी एक कवि का आप इधर नाम कैसे ले सकते हैं? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हो, गुलजार हो, एमिली डिकिंसन, शेक्सपियर, शिवानी जी, अमृता प्रीतम जी, सब की लेखनी में वो आत्मा बसती है जो पाठकों को भीतर तक छू लेती है, और इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अगर मैं कहूं तो मैं किसी दिन उस गहराई और बेबाकी से लिखना चाहूंगी जिस तरह अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बस दिल की सच्चाई के साथ। तो मैं शायद उनके जैसा किसी दिन लिखना चाहूंगी।
0: बहुत सुंदर, ये तो आपने मेरी फेवरेट राइटर तो उनका नाम ले लिया
1: जी,
0: क्योंकि बहुत खूबसूरत। इनकी वो जो है ना रसीदी टिकट, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और हम लोग किसी जमाने में उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे।
1: सर, मैंने रसीदी टिकट हो, दस्तावेज हो, खतों का सफरनामा हो, मैंने पिंजर हो, मैंने इनका बहुत सराहती हूँ मैं इनके काम को।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
1: जी।
0: चलिए रिया जी, अब मैं आखिरी सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन आखिरी पायदान पे हम आ गए। आपको अपनी क्रिएटिव फिलॉसफी अगर एक लाइन में बतानी हो तो वो क्या होगी?
1: क्रिएटिव फिलॉसफी, सर, अगर जिंदगी एक कहानी है, अगर जिंदगी एक कहानी है और कहानी तुम्हारी है, तो कलम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी।
0: बहुत खूबसूरत। अगर जिंदगी एक कहानी है तो उस कहानी को लिख के लिए कलम भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आज की ये बातचीत रिया मनोज के शब्दों की तरह ही गहराई और सादगी से भरी रही। उनकी कविताएं हमें एहसास कराती हैं कि भावनाएं आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और सृजन की दुनिया में सच्चाई और संवेदना की जगह कम नहीं हुई है। एक कवियत्री, लेखिका, रिव्यूअर और पॉडकास्टर के रूप में रिया न सिर्फ खुद लिखती हैं, बल्कि दूसरों को भी लिखने, सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज अपने अनुभव और संवेदनाओं को हमारे श्रोताओं के साथ बांटा।
1: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मेरे को इतनी पेशेंस के साथ सुनने का, इस खूबसूरत बातचीत के लिए और इस शब्दों के सफर में साथ देने के लिए, सच में बेहद आभार।
0: रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी रचनात्मक यात्रा यूं ही उजालों से भरी रहे।
1: शुक्रिया सर आपका, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत गुड विशेस।
0: अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब्दों से जुड़े रहिए और महसूस करते रहिए जिंदगी को। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबवा की आवाज।
5: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
6: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
7: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
4: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
8: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
4: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
8: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
4: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
9: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
10: क्या बात है,
9: सुनकर ही जोश आ गया।
10: हाँ
9: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
10: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
7: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य

0: सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन

0: पिंपल पोस्ट, 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा। मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ। राम राम भाई।
3: राम राम भाई। राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
2: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
3: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
2: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
3: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
2: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
3: अच्छा?
2: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
3: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबवा की आवाज़।

0: आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
1: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
2: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
1: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई।

0: हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
1: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब मोहानी की खिदमत में।
2: अरे आप, आदाब अर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
1: जी जी, शुक्रिया।
2: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
1: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
2: जी बस।
1: जी,
0: हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
2: जनाब बस जरा सी देर और, बस यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
1: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
2: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब
2: जी,
1: ये पर्दे की ओट से निकालकर आप क्या खा लेते हैं, कुछ खादिम को भी आता हो।
2: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
1: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
2: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
2: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
2: नौश फरमाइए मियां,
1: लाइए
2: खाइए।
3: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
2: शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
4: इरशाद ग्रामी
2: है, मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह क्या बात है, मश्क सुखन जारी
2: चक्की की मशक्कत भी।
5: वाह,
2: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
5: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
5: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
1: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
5: आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, ये लिफाफा हमारी तरफ से।
1: जी नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
2: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
1: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
5: क्या?
1: जी
4: एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया। टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
2: अरे मारे साहब,
4: शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब। चंदा शार सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
5: मान साहब, लेकिन मान साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
4: नहीं नहीं, माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे?
2: मानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
4: देखिये जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
5: मानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला, जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
5: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
4: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
5: आपने कुछ खाया ही नहीं।
4: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही।
5: जी, बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
4: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
5: जी, और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
4: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
5: जी, शब्बा खैर।
4: शब्बा खैर।
5: बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है।
4: नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए।
6: अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा। इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे। उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
6: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का। बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगामे हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
6: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
7: भगत सिंह।
8: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
9: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
8: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
10: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
11: कौन है?
12: मैं हूँ अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
11: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
12: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
11: अमृतसर? अच्छा अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
12: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
11: ये इस शीशी में क्या है?
12: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
11: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
12: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
11: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
12: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
8: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
10: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
12: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
7: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
12: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
8: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
10: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
13: बीमार बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
14: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
13: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
15: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
16: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
15: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
16: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
15: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
16: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
15: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
16: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
15: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
16: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
15: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
16: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
17: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
15: जी बताइए
16: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
15: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
16: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है
15: तो दोनों को ही खानी।
16: हाँ, और अगर किसी को गंभीर बीमारी है अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहाँ पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
15: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
16: जी
15: और डॉक्टर साहब
18: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
15: बताइए
16: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
15: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
16: जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
15: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण मौसम या उम्र में ही होता है?
16: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
15: अच्छा। जी जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
16: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
18: जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
15: जी
16: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
15: जी
14: श्रोताओं आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
13: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
19: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
20: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है

करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत उबड़ खाबड़ हैं, और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो, और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी। We'll be right back.

0: એમ તરાપ મારે થોડું
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी

0: काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्थी।
1: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी। अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो शिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है। तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 कुंटल, 8 कुंटल, 5 कुंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 कुंटल, 18 कुंटल, 20 कुंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 कुंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है। और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है। तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
0: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
2: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
3: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टंटिया फील 90.8 FM।

મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, મારા કાકા, મારી કાકી, એ બધા સાલે સાલે.

0: हम तड़प मारे थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपला रेडियो आपनी बात है।

अपनी लड़ाई लड़वा मांगे गमे गम थी मारा भाइयों मारी बहनों मारा काका मारी काकियों।

0: खराब मारे ही थोड़ा।
1: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती है कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
2: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पर डिपेंड ना होए। तो
1: वही PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
3: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाज सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की, बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना, साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज के मेहमान सिर्फ प्रोफेसर नहीं, सिर्फ रिसर्चर नहीं, सिर्फ मैराथन रनर भी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जो बताते हैं कि डिसिप्लिन और पैशन उम्र से बड़े नहीं हो सकते। 35 इयर्स की साल की टीचिंग,

0: जी, कैसा महसूस हो रहा है डॉक्टर गुरुदत्त आज आपको हमारे साथ एसएन रेडियो पे जुड़ के और जिंदगी के रंग गीतों के संग के साथ जुड़ के? जी
1: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आपके साथ बातचीत करते हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक एनर्जी मिल रही है मुझे भी। और
0: जी, आपके अंदर तो इतनी एनर्जी है कि आप हमारे सारे लिसनर्स को बूस्ट कर सकते हैं उस एनर्जी बूस्टर से। चलिए शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल, आप
0: जी
1: आपके सारे करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा।
0: जी जी, चलिए आज की ये कोशिश कामयाब रहे, इसी नोट से हम शुरू करते हैं। आप एक तरफ रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, और दूसरी तरफ अल्ट्रा प्रो मैक्स मैराथन रनर हैं। ये दोनों पहचान दिमाग और डिसिप्लिन को दर्शाती हैं। आप इन दोनों के अंदर किस तरह से ग्रो हुए, कैसे आपने चुनाव किया, कैसे आपका जीवन आगे बढ़ा, इसी पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या पहले एक रिसर्चर आया, एक जूलॉजिस्ट आया, या सबसे पहले एक रनर आया?
1: जी तनुषा, जब होश संभाला तब घर के हालात अच्छे नहीं थे। हम कुल 5 भाई बहन थे। मैं जब 5 वर्ष का था तभी पिताजी का देहावसान हो गया। मुझे उनका चेहरा भी याद नहीं। माताजी को संघर्ष करते हुए बचपन से देखा था। जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो ऑफिस की साफ सफाई झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। वो ऑफिस मेरे घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर था। वहां मैं पैदल ही जाता था, कभी तेज गति से और कभी भाग कर। तब से रनिंग की शुरुआत हुई।
0: बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही संवेदना से भरा हुआ जवाब था आपका। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले रनर की एक चलने से आपकी शुरुआत हुई और चलते चलते आप दौड़ने लगे और जीवन में इतने आगे बढ़ गए कि आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहुत सल्यूट है आपको डॉक्टर शर्मा, आपका सफर को सल्यूट है, आपके एक्सपीरियंस को सल्यूट है। आगे चलते हैं। आप 35 साल से टीचिंग में हैं और कई स्टूडेंट्स को आपने इंस्पायर किया है, उनके रिसर्च पेपर्स को नेचुरली मेंटर किया है, और आपने खुद ने 120 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनली और इंटरनेशनली लिखे हैं, पब्लिश करवाए हैं। तो आज के दौर में जब सबसे बड़ा चैलेंज एक ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं बट कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी काम में, सब कुछ ये भी चाहिए वो भी चाहिए बट एक एक एक माइंड करके अपने एकाग्रत होके कोई भी काम को करना आज के जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लाइफ बहुत फास्ट है। तो आपके लिए इस सफर में कंसिस्टेंसी किस तरह से आपने अपने जीवन में अपनाई, और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस पाने का सबसे बड़ा सीक्रेट आपके हिसाब से, जब आप इतने बच्चों को मेंटर कर चुके हैं और इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा चुके हैं, कंसिस्टेंटली आपका करियर ग्राफ ऊपर गया है, तो आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में हम कंसिस्टेंसी कैसे पा सकते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस का सीक्रेट क्या है?
1: यस, हाँ हाँ तनुषा, यदि हम प्रकृति का अवलोकन ध्यान से करें तो देखते हैं कि जितने भी विकास हुए हैं वे अत्यंत धीमे, लगातार तथा चिरस्थायी हुए हैं। 24 घंटे का समय हम सभी को बराबर मिला है। कई लोगों को एक ही कार्य करने में 24 घंटे कम पड़ते हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो इसी 24 घंटे के समय का संतुलित विभाजन करते हैं तथा काम के अनुसार उनका तालमेल बिठाकर हर काम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं। ग्रो करने का एक ही गुरु मंत्र है कि स्लो एंड स्टडी, लेकिन काम करना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी ये चैलेंजेस नहीं आए, कभी आपके जीवन में भटकाव नहीं हुआ, और हमेशा, क्योंकि इतने साल, 35 ईयर्स बहुत लंबा समय होता है, 3 दशक ऑलमोस्ट आपको हो गए इस प्रोफेशन में, तो कभी आपके जीवन में भटकाव या डिस्ट्रैक्शंस आए हो तो उनसे आपने कैसे डील किया?
1: बच्चों के साथ रह करके उनको सिखाते हुए उनके साथ काम करने में अच्छा लगा। एक टीचर गाइड होने के नाते जो भी विद्यार्थी मेरे सुपरविजन में काम कर रहा होता है उनकी हर कठिनाई को सुलझाने का काम भी एक दोस्त के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक मदर के रूप में किया, ताकि वे बेझिझक अपना शोध समय पर पूर्ण कर सकें तथा आगामी चुनौतियों का सामना डटकर कर सकें। हम सभी की जिंदगी में इशू तो आते रहते हैं, परंतु परिवार में दोस्तों के साथ विचार विमर्श कर सारे इश्यूज का निदान किया जा सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने जवाब दिया, और बहुत सालों का आपका जो

तजुर्बा रहा है, वो एक समावेश है आपके जवाबों में, और कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि किस तरह का जीवन डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से आपने जिया है और उसे आगे भी आप जिएंगे, जैसे कि हम जानते हैं और समझते हैं आपकी बातों से। इसी नोट पर हम चलेंगे हमारे पहले गीत की तरफ, जहां पे जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं, रुक कर, थम कर समझने का नाम भी है। चलिए सुनते हैं, जागेगा इंसान और जमाना देखेगा।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर शर्मा। हम आगे चलते हैं। आपने हमें बताया कि आपने 17, कम से कम आज तक आपके सफर में 17 पीएचडी स्कॉलर्स को तैयार किया है और उनकी डिग्री में, उनको पीएचडी लेने में उनकी गाइडेंस और उनकी मेंटोरशिप की है। तो जब आप ये गाइडेंस करते हैं पीएचडी के लिए जो आपके अंडर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपका जो रिजॉल्व होता है, आपका जो एक सिद्धांत होता है, वो क्या होता है कि मेंटरशिप के साथ साथ कुछ जिंदगी की डायरेक्शन भी उनको देना, या किस तरह से आप ये रोल निभाते हैं मेंटरशिप का?
1: बस एक दोस्त के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक गाइड के रूप में, कभी उनके पेरेंट्स बनकर, कभी उनकी सिस्टर बनकर, कभी उनके ब्रदर बनकर के उनके साथ फ्रेंडली ट्रीट किया जाए तो जितने भी बच्चे होते हैं उनकी झिझक खत्म हो जाती है और वो बेझिझक अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करते हैं और सारी समस्याओं का निदान बस इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं ताकि समय पर उनका काम पूरा हो सके और वो आगे के चैलेंजेस को बड़े बिना डर के फेस कर सकें।
0: बिल्कुल। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो इन 17 स्टूडेंट्स में जो बहुत स्पेशल बॉन्ड बन गया हो, या जो एक एक याद छोड़ गया हो, कोई एक एक्सपीरियंस छोड़ गया हो जो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहें?
1: कश्मीर से कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, वो थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो मुस्लिम इसमें हैं तो थोड़ा सा उनको एक डर बिठा देता था कि यहाँ पर हमको हमारे टीचर्स को हमें मतलब कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मेरे मार्गदर्शन में अपना पीएचडी का काम शुरू करा तो उनको बहुत एक ताज्जुब सा हुआ कि हमारे कश्मीर में टीचर्स हमसे इस तरीके से फ्रेंडली कोई बात नहीं करता है। वो अपने आप को एक ऐसा एक डिस्टेंस बना करके चलते हैं, लेकिन यहाँ के आपसे मिल करके हमें इतना आसान लगा कि हम लोग पीएचडी आसानी के साथ कर लेंगे। और मेरे कुछ विद्यार्थी तो चाइना के अंदर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी गए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहे हैं जिनका रिसर्च पेपर ऑक्सफोर्ड तक गया है। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। हैदराबाद के अंदर भी हमारे विद्यार्थियों को बेस्ट रिसर्च आर्टिकल के रूप में अवार्ड मिला हम लोगों को, तो ये मेरे लिए एक संतुष्ट है, सेटिस्फैक्ट्री है।
0: क्या क्या बात है डॉक्टर जी। आपने बताया कि आप 42 किलोमीटर की फुल मैराथन अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो जब आप ये इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आई एम श्योर इसमें फिजिकल इंड्योरेंस तो होती ही है, पर ये एक तरह की एक मेंटल तपस्या है कहीं ना कहीं। और जब आप 30 किलोमीटर के बाद कुछ थकान में होते हैं, डाउट्स के जोन में होते हैं, तो आप उस समय खुद से क्या कहते हैं, कैसे अपना सफर आगे बढ़ाते हैं, कैसे उस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, क्या थॉट्स आते हैं, हमारे लिसनर्स के साथ थोड़ा साझा करें? और क्या ये प्रोसेस लाइफ के संघर्ष से मिलता जुलता है? कभी आपको ये एक्सपीरियंस हुआ?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है तनुजा। ये फिजिकल तथा मेंटल एंड्योरेंस दोनों ही है। 30 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद की स्थिति बहुत विकट हो जाती है। यदि उसमें तालमेल बिठाया तो आप टारगेट पूरा कर लेंगे। शुरू के 30 किलोमीटर हम पैरों के सहारे चलते हैं, पैरों के सहारे दौड़ लगाते हैं, लेकिन बाद के जो 12 किलोमीटर होते हैं वो मानसिक रूप से तालमेल बिठा करके ही पूरा किया जा सकता है। वो एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। जब आप 42 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लेते हैं तो लोग आपका स्वागत तालियों से करते हैं, मेडल पहनाते हैं, बस उसी क्षण सारी थकान उतर जाती है। जीवन में संघर्ष तो आते रहेंगे, बस डटकर मुकाबला करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी।
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। कभी कोई एक ऐसी मैराथन रही हो जिसमें कोई एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहा हो, जहां पे आप थक गए हो, या आपको कुछ फिजिकली आपने कुछ सफर किया हो, या कुछ एक एक ऐसा कुछ हुआ हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस?
1: बॉम्बे मैराथन के अंदर 42 किलोमीटर का मेरा था सफर, जब मैं पहली बार कर रहा था तो बीच में 35 किलोमीटर के बाद क्रैम्प्स आया था मेरे को पैर में। थोड़ा सा रुक गया था, मैं थक गया था, लेकिन मुझे अब एक अनजान मित्र की आप इसी मैसेज के थ्रू धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो पीछे से आकर तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये मेरे से कहा कि सर आप बहुत अच्छा रन कर रहे थे, आप रुके क्यों? मैंने थोड़ा सा क्रैम्प दिया, बोले नहीं आप चलो मेरे साथ। तो उस व्यक्ति ने मेरे को आखिरी तक फिनिशिंग लाइन तक मेरे साथ दौड़ करके मेरे जो फिनिश करवाया और पीछे से धक्का पुश किया ताकि पहले मैं फिनिश लाइन टच करूं, उसके बाद में उसने फिनिश लाइन टच करी, ये एक बहुत बड़ा सैल्यूट है उस बच्चे के लिए।
0: सच में क्या खूब बात आपने हमारे साथ शेयर की। क्या उनका नाम आप हमें बता सकते हैं तो हम उन्हें रेडियो के थ्रू थैंक यू कर सकें?
1: नहीं नहीं मैडम, बस ये अनजान व्यक्ति थे, इसके बाद वहाँ पर वो गायब हो गए। मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता था लेकिन वो ऐसे भीड़ भड़क के में गायब हो गए, मुझे पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। पकान इतनी थी कि फिर अब रेस्टिंग कंडीशन पे आ गए।
0: चलिए कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उस भीड़ में आपको एक सारथी मिल गया, एक भगवान के रूप में एक मैसेंजर मिल गया जिसने आपको लाइन क्रॉस करवा दी। इसी नोट पे, इसी अनजान शख्स की याद में हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, यही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक डॉक्टर डॉक्टर शर्मा। आपने 62 प्लस की एज में अल्ट्रा रनिंग और इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट किया। पहली बात तो आप हमारे श्रोताओं को अगर ये बता सकें कि अल्ट्रा रनिंग क्या होती है।
1: अल्ट्रा रनिंग मैडम तनुषा, 50 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी होती हैं वो सब अल्ट्रा मैराथन के उसमें आती हैं। ये 80 किलोमीटर भी हो जाती है, 90 भी होती है, 110 भी होती है।
0: बताएं तो
1: कई लोग 24 घंटे भी रनिंग करते हैं, 24 घंटे की भी होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने भी अटेम्प्ट किया है, आपने हमें बताया है कि आपने 24 आवर्स वाली मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया है, तो ये जो अल्ट्रा रनिंग आपने अटेम्प्ट की इस एज में, आपने हर स्टीरियोटाइप तोड़ दिया, एज को तो आपने बहुत ही पीछे छोड़ दिया। तो हम अक्सर एज लिमिट्स की बात करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हम मेंटली जल्दी ज्यादा रिटायर हो जाते हैं और बॉडी आपको साथ देना चाहती है बट आप खुद अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को ये समझा देते हैं कि बस अब मेरी उम्र हो गई, 60 क्रॉस हो गया, अब मैं ये सब अटेम्प्ट नहीं कर सकता या कर सकती।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है तनुजा। हमारे पूरे शरीर की केमिस्ट्री हमारी सोच पर निर्भर करती है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मेरी उम्र हो गई है, मैं रिटायर हो गया हूँ, उसी क्षण से ही आपका शरीर स्वतः क्षीण होता जाएगा। आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर होते जाएंगे। हो सकता है आप बीमारी को भी आमंत्रित कर लें। इसका एक ही इलाज है, अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्त रखिए। उम्र तथा समय दोनों आसानी के साथ कट जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 72 वर्ष की आयु में भी ऊर्जावान दिखते हैं। 18 घंटे लगातार मेहनत करते हैं, कभी थके हुए नहीं लगते। उनको कभी मैंने उबासी लेते हुए नहीं देखा। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक डायनामिक पर्सनैलिटी के रूप में दिखाई देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो अल्ट्रा रनिंग के एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी मैराथन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको अगर आप कुछ को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें कि कहां से आपकी मैराथन की जर्नी शुरू हुई थी और किन किन इम्पोर्टेंट मैराथन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है, वो अगर आप पढ़ के हमें बताना चाहें तो हमारे श्रोता जान सकेंगे कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं और कितना कुछ अचीव कर सकते हैं और कर चुके हैं इस एज में।
1: एक्चुअली उसको इस तरीके से क्रोनोलॉजी में बताना तो खैर मुश्किल होगा, क्योंकि मेरी करीबन 150 से ऊपर की तो हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की।
0: बिल्कुल,
1: और 20-22 किलोमीटर जो 20-22 मरतबा टाइम्स मैंने 42 किलोमीटर अटेम्प्ट किया है तो सफलतापूर्वक। और अल्ट्रा मैराथन जो 50 किलोमीटर की ऊपर होती है वो 8 बार मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ, इंडोर के अंदर ही सिंथेटिक ट्रैक के ऊपर। और जो एक रिकॉर्ड है कि इंदौर में अभी तक 8 बार किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया।
0: बिल्कुल,
1: ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी है। तो कुल मिलाकर के 200 से 250 मैराथन में पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत सर, और ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था 185 मैराथन से ऊपर मैराथन्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और ये बात पढ़ के ही मैं तो हाँफ गई। तो आपसे मिलना जरूर पड़ेगा, आप बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। आगे चलते हैं, आप जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो लाइफ फॉर्म्स, अडेप्टेशन, सर्वाइवल, इन सब इश्यूज से आप रोजाना की लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पढ़ाने में, पढ़ने में, सभी तरीके से। क्या आपके हिसाब से ह्यूमन बॉडी भी एक बायोलॉजिकल मिरेकल है जिसे हम कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं कि वही, जैसे मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मेरी यही लिमिट है, मैं इससे ज्यादा तो सोच, जैसे अभी मैं आपकी बातें सोच रही हूँ कि बाप रे, अल्ट्रा मैराथन तो मेरे लिए इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम सभी ये करते हैं अपनी बॉडी के साथ, और साइंस और स्पोर्ट्स का कनेक्शन किस तरह से बनता है, हमारे लिसनर्स को थोड़ा बताएं।
1: ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि प्रकृति भी संघर्षशील व्यक्ति का ही चयन करती है। जिसने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया उसी को ही धरती पर रहने का पूरा हक है, अर्थात जो फिट है वही हिट है। यह पूर्ण सच है कि ह्यूमन बॉडी एक चमत्कार से कम नहीं, हम उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। हर इंसानी शरीर में छुपी हुई ताकत होती है, हर इंसान में होती है, जो आपातकाल में सामने आती है। आपको याद होगा कोविड में एक 14 वर्ष की लड़की थी जिसने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठा करके लगातार 350 किलोमीटर का सफर तय कर गांव से शहर आकर के अस्पताल में भर्ती कराया और उनकी जान बचाई।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी से मुझे मांझी फिल्म भी याद आती है, जिसमें उस कैरेक्टर ने पूरा एक माउंटेन खोद दिया था अपनी बीवी के लिए। तो सच में आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं, उन उन उन्हीं में हमारी सारी शारीरिक शक्तियां जागृत होती हैं और हम उसके शायद पूरे पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। खैर, आप कंटिन्यू कीजिए आप जो कह रहे थे।
1: इसके बाद मुझे एक और एक शहर का दृश्य याद आ रहा है कि जहां किसी जगह पर एक अस्पताल में आग लग गई थी और सभी जगह अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के प्रयास कर रहे थे। आश्चर्य से तब हुआ जब जितने भी मरीज भर्ती थे वे सब अपने पैरों से चलकर खुद खड़े होकर बाहर आकर के सुरक्षित स्थान पर आ गए बिना किसी सहारे। तो जो व्यक्ति अभी तक बीमार था उसमें ये ताकत कहाँ से आई कि वो ये पूरी छुपी ताकत होती है जिसके सहारे हम बाहर आ जाते हैं। तो जहां तक सवाल है स्पोर्ट्स को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का, तो ये सच है कि सभी गेम्स को समझने के लिए प्रचुर मात्रा में शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध है। कई गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक देशी विदेशी कोच भी उपलब्ध हैं जिनका एडवांटेज प्रशिक्षण कोई भी खिलाड़ी ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में हम आज भी पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत पीछे हैं। इस क्षेत्र में बहुत मेहनत की आवश्यकता है। अगर आपको याद हो, हुसैन बोल्ट ने केवल 9 सेकंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल 9 सेकंड की दौड़ में अव्वल आने के लिए 10 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। आज उनकी तुलना चीते से तेज दौड़ने वाले इंसान के रूप में ली जाती है। एक और फ्लैप्स है, माइकल फ्लैप्स हैं, अमेरिका के एथलीट्स हैं जिन्होंने 5 वर्षों तक बिना नागा किए तैराकी का प्रशिक्षण लिया। विश्व के एकमात्र वही ऐसे एथलीट्स हैं जिनके पास 22 गोल्ड मेडल ओलंपिक से।
0: बताएं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है और कहीं ना कहीं हम सब में ये शक्ति छुपी हुई है। तो हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं आज, मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ सर से। तो आई होप आप सभी इनकी जर्नी सुन के, इनकी बातें सुन के उतना ही इंस्पायर हो रहे हैं जितना कि मैं। और इसी इसी एहसास के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी स्ट्रेंथ के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।

0: डॉक्टर शर्मा, बात जब आज के यूथ की आती है, हम हमारे यूथ को देखते हैं, आप भी बच्चों से डील कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट से डील करते हैं, पीएचडी लेवल के स्टूडेंट से डील करते हैं, तो आपने ये चेंज देखा होगा पिछले 3 दशक से जो आप पढ़ा रहे हैं, कि पहले किस तरह से रिसर्च होती थी, किस तरह से काम होता था, किस तरह से हर चीज को हम अप्रोच करते थे, और आज के यूथ, हम अगर आज के यूथ की बात करें तो उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, एआई है, पता नहीं क्या क्या है, पर जो सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है पेशेंस। उन्हें रिसर्च भी शॉर्टकट में करनी है, उन्हें पीएचडी भी शॉर्टकट में लिखनी है, उन्हें फिटनेस भी शॉर्टकट तरीके से अपनानी है और पानी है, सब कुछ पाना है और इंस्टेंटली पाना है। तो हमारे जो यंग लिसनर्स हैं, आपका जो जीवन रहा है वो एक डिसिप्लिन और एक पेशेंस की मिसाल है एक तरह से मेरे लिए। तो आप हमारे यंग लिसनर्स को एक प्रैक्टिकल कोई सुझाव अगर दे सके तो वो क्या होगा डॉक्टर गुरुदत्त?
1: यह सच है तनुषा कि इंटरनेट के इस युग में देश विदेश की सभी जानकारी तुरंत मिल जाती है और बच्चों के पास है। शिक्षा की दृष्टि से भी देखें तो एक से बढ़कर एक पढ़ाकू विद्यार्थी की खेप हर वर्ष तैयार हो रही है। इसका आप नीट का रिजल्ट देख लें, आईआईटी का रिजल्ट देख लें, परीक्षा परिणाम देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। हमारे टाइम पे 60-70% सबसे मैक्सिमम हुआ करता था, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि किताब को घोल करके पी जाते हैं पूरा। लेकिन उनमें एक कमी अभी जो देखी है वो ये है कि उनमें धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। वे शॉर्ट टेम्पर भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी बेकाबू हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिटनेस के मामले में भी वो एक्सक्यूज करते हैं, जी चुराते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। संदेश यही देना चाहूंगा कि आप भरोसा रखें, जितने भी यंग बच्चे हैं, धरती पर किया हुआ कोई भी काम निष्फल नहीं रहता। आपके द्वारा किया सभी काम का फल आपको अवश्य मिलेगा। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, कि आप बस बीज डालें, वो अपने आप उगेगा, वो अपने आप फूल देगा, फल देगा। और बीज जिस तरह से जमीन के नीचे रहकर भी पेशेंस से उस अंधेर काल में रहकर भी अपने आप को उगाने की उम्मीद में रहता है, शांति से, पेशेंस से, उसी तरह आप बस सही बीज बोते जाएं और जीवन अपने आप एक खूबसूरत पेड़ में बदल जाएगा। डॉक्टर शर्मा, हमारे आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं आज के। आज से कुछ समय बाद आपको जब लोग याद करें तो आप क्या चाहते हैं कि आपको किस रूप में याद किया जाए? एक प्रोफेसर के, एक रिसर्चर के, एक रनर के, या एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने जीवन में रुकना मना है, ये एक अपना एक सिद्धांत बना के रखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हुई?
1: जी तनुषा, अच्छा प्रश्न है। आप सिर्फ एक इंसान के रूप में याद रखा जाए, हारना उस वक्त जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद से हो। तो ये लड़ाई हमारी अपने आप से है, तो नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर गिव अप, रुकना मना है, थकना मना है।
0: बहुत ही खूबसूरत बात आपने अंत में कही कि जीतना खुद से है और हारना दूसरों से है, यही जीवन की सच में सीख है। और एक सटीक बात आपने कही बहुत ही सुंदरता और सरलता से, कि दूसरों से, अपनों से आप हार भी जाओ, बट जीतो तो खुद से जीतो, खुद से जिद करो, दुनिया से नहीं। बहुत ही खूबसूरत अंत। डॉक्टर शर्मा, आपके साथ आज की बातचीत ने हमें ये सिखाया कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं, उसमें दौड़ना भी जरूरी है, मगर अपनी रिदम में। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और इतनी खूबसूरत, इतनी सरल बट इतनी सटीक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, शायद आज आप भी अंदर से थोड़ा सा तो मोटिवेट हुए ही होंगे, आई एम श्योर। मैं थी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। चलते रहिए, ठहर जाइए, मगर थमिए कभी नहीं।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: गई।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का रंग है कविता की रूह का, जो देखा नहीं जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। कहते हैं शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी कलम ने रूह की आवाज को शब्दों में ढाला है। संवेदनशील पित्री, समर्पित गृहिणी, स्नेही माँ और बेहद प्रेरक लेखिका रिया मनोज। रिया की पहली कविता संग्रह रूह की आवाज को मिला एमडी डिकिंसन अवार्ड। साथ ही उन्हें मिले हैं सत्य स्त्री सम्मान 2025, टीजीटी हिंदी सम्मान और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए देवनागरी सम्मान, जो उन्हें हाल ही में मिला है। कवित्री नहीं, वे कंपाइलर भी हैं, जिन्होंने ज्योतिर्मय उजाले की ओर जैसे प्रेरणादायक संकलन में 40 कवियों को एक साथ जोड़ा है। वहीं उन्होंने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट रिया रिकमेंड्स में लगभग 40 मशहूर राइटर्स से गहन संवाद किए हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कैसे रिया मनोज अपनी कविता

0: की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली?
1: कविता है लिखने की प्रेरणा जीवन से, जीवन से बड़ी प्रेरणा मुझे लगता है कोई नहीं होता। और मेरी कविताएं मेरे मन के आईने की तरह है, जहां हर शब्द एक एहसास की परछाई बनकर उतरता है। और कब कविता मेरे जीवन में उतर गई और इतना अहम हिस्सा बन गई मुझे भी नहीं पता चला, पर जो पहली कविता मेरी प्रकाशित हुई थी वो 2022 में हुई थी।
0: इसका मतलब है जीवन से आपने बहुत सीखा और उसी से आपकी कविताओं में भावनाएं आई हैं। चलिए, आपकी कविताओं में गहरी संवेदना और आत्मचिंतन झलकता है, क्या ये भाव अपने अनुभवों से आते हैं?
1: जी बिल्कुल, मेरे शब्द वही कहते हैं जो जिससे मैं जीवन में जीती हूँ और मेरी रूह से महसूस करती है। और मेरी हर कविता मेरी जिंदगी की किताब का एक पन्ना कह सकती हूँ मैं, जो कभी दर्द से लिखा गया है तो कभी दुआओं से।
0: बहुत सुंदर। रूह की आवाज के लिए आपको एमिली डिकिंसन अवार्ड मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, उस पल को आप कैसे याद करती हैं, क्या महसूस करती हैं, अगर आज भी आपको ख्याल आता है उस पल के बारे में?
1: सर, वो मेरे लिए बहुत भावनात्मक पल था, क्योंकि रूह की आवाज मेरी पहली सोलो किताब है और इसमें हर कविता मेरी आत्मा का एक टुकड़े की तरह है। तो जब मुझे एमिली डिकिंसन अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि मेरे रूह को सुना गया है, और वो सम्मान हर उस संवेदनशील आत्मा का था जो अपने एहसासों को शब्दों में डालने की हिम्मत रखती है। और इसमें एक बहुत बड़ा थैंक्स पे अपने पब्लिशर को भी देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे शब्दों को इतना सराहा।
0: बहुत अच्छी बात है। ये एमिली डिकिंसन अवार्ड आपको कब मिला था, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा
1: हूँ। जनवरी 2025 में।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हमारी तरफ से। क्या कोई विशेष विषय या भावना है जो बार बार आपकी लेखनी में लौट आती है, कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में?
1: जी, विशेष भावना तो नहीं, विशेष रिश्ता है। एक मेरा मेरे कृष्ण से और एक मेरा मेरी माँ से। माँ हम सबका सबसे पहला रिश्ता होता है, हमारी जीवन की शुरुआत ही वहीं से होती है। और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो इस बंधन की गहराई और निस्वार्थता को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। और कृष्ण से मेरा एक ऐसा जुड़ाव है जो कभी मेरे गुरु हैं, कभी मेरे सखा हैं, कभी मेरे पूज्य हैं। उनके बिना जीवन का हर पथ मुझे अधूरा लगता है। तो कृष्ण और माँ मेरी हर कविता में लौट के जरूर आते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कृष्ण की बात पे और माँ की बात पे हम एक रिया जी गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं आपकी इन भावनाओं को लेकर।

0: अब रिया जी, हम आपकी लेखन प्रक्रिया पर आते हैं। लेखन के लिए आप प्रेरणा का इंतजार करती हैं या आपके पास कोई एक डिसिप्लिन रूटीन सा है? किस तरह से आपको का ये प्रोसेस है लिखने का?
1: प्रेरणा अगर मैं कहूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीवन खुद अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शब्द खुद अपने वक्त पर मुझे दस्तक देते हैं, कभी सुबह की चुप्पी में तो कभी रात की थकान में, और कभी अचानक मन की दीवार पर उतर आते हैं। और जहां तक मैं रूटीन का बात करूं तो मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती जरूर हूँ। तो जब मैं लिख रही होती हूँ तो वो कभी कविता बन जाती है, तो कभी कोई अधूरी कहानी, तो कभी किसी किताब से उठी एक नई सोच। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रिव्यूज भी करती हूँ, तो मेरे लिए लिखना एक आदत नहीं, एक एहसास है, मेरे दिल की धड़कन है वो एक तरह से।
0: बहुत सुंदर। आपने हाल ही में ज्योतिर्मय उजाले की ओर एक संकलन प्रकाशित किया है जिसमें 40 कवियों को जोड़ा है। ये अनुभव कैसा रहा? मुझे तो लगता है ये काफी डिफिकल्ट काम है, 40 कवियों को एक साथ जोड़ना। कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा करेंगी?
1: डिफिकल्ट भी है, चैलेंजिंग भी है, पर अपने आप में ये अनुभव बहुत सुंदर रहा और प्रेरक भी रहा। हर कवि अपने भीतर एक रोशनी लेकर आया, जब उनकी सभी रचनाएं एक जगह आई तो लगा जैसे शब्दों का उजाला फैल गया हो, इसीलिए मैंने इसका नाम भी ज्योतिर्मय रखा। और ये पुस्तक अपने आप में बहुत प्रेरणात्मक है।
0: तो जब इतने अलग अलग स्वरों को एक साथ लाना होता है, तो
1: जी
0: कंपाइलर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उनकी रचनाओं का चुनाव करना, या वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे? किस तरह से करते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं।
1: रचनाओं का चुनाव उन्होंने ही किया था। मैंने उनको, मैं चाहती थी कि मोटिवेशनल रहे, कि हम सबको एक प्रेरणा मिले। शब्द अपने आप में बहुत गहराई लिए होते हैं और बहुत ताकत रखते हैं। पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए वो था विविधता में एकता को बनाए रखना, क्योंकि हर कवि का स्वर अलग होता है और मुझे उन सबको जोड़ना था एक साझा संवेदना के तौर पर। हर आवाज को उसकी जगह देते हुए एक सामूहिक सामंजस्य जो बनाना था वो बहुत मुश्किल था, पर बहुत मेहनत की मैंने और ये बहुत खूबसूरत किताब पब्लिश हुई है मेरी।
0: वैसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके पब्लिशर कौन है इसके, आपके ज्योतिर्मय उजाले की ओर के? जी
1: जी, ये सोच पब्लिकेशन हाउस है मुंबई से, और
0: जी
1: ये इनकी जो हेड है वो भी एक फीमेल ही है, तो नारी शक्ति जब जुड़ जाती है किसी चीज से तो बहुत मेहनत करती
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम वी कैन अंडरस्टैंड
1: है।
0: दैट। आपने कई संकलन में सह लेखक के रूप में भी योगदान दिया है, जैसे चयनिका, सृष्टिमन, स्वाभिमानी नारी आदि। कौन सा संकलन आपके दिल के सबसे करीब है?
1: सर, हर संकलन एक नई सीख थी, एक नई यात्रा रहा मेरे लिए। पर मैंने जो अपने जीवन की पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी गृहिणी। मैं खुद एक गृहिणी हूँ और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि गृहिणी का जीवन कैसा होता है, और वो मेरी पहली कविता चयनिका में पब्लिश हुई थी। तो चयनिका मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि शायद वहीं से मेरी लेखक के तौर पे जर्नी शुरू हुई थी उस किताब से।
0: आपकी एक नई रचना है समन्वय, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
1: समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संतुलन और सामंजस्य, और
0: जी
1: इस संग्रह को हम लिख रहे हैं 4 जने। हम चारों जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के राही हैं, किसी ने शब्दों में जीवन खोजा है, किसी ने अनुभवों में, पर हमारे रास्ते भले ही जुदा रहे हों पर इस नए सफर में हम सब हमराह बने हैं, और शायद इन्हीं भिन्नताओं का एक सुंदर मेल है समन्वय, एहसासों का एक सफर।
0: ओके ओके, मतलब आप चार लेखक, चार विभिन्न विषयों पर या चार विभिन्न भावनाओं पर अपनी अपनी बात लिख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: जी, बहुत सुंदर है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में तो देखी हैं ऐसी कि कई डायरेक्टर्स अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। तो यहाँ इस समन्वय के नाम पर रिया जी, हम एक गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी जरूर सर।
2: दिल का साथी है जब दिल, कैसा रास्ता क्या मंजिल। याद आया?

0: क्या हो थोड़ा सा हमें भी अगर देख लो ओ जान मन प्यार से एक नजर देख लो।
1: अरे सोचिए मत गाइए गाइए।
2: हम भी राहों में खड़े हैं यार,
0: इधर देख लो जाने मन प्यार से एक नजर देख लो। हम भी राहों में खड़े हैं यार, इधर देख लो
1: वंडरफुल
0: जाने मन।

0: इधर देख लो जानी मनी कर दे एक नजर देख लो ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला रिया जी, आपका पॉडकास्ट रिया रेकमेंड्स काफी पॉपुलर है। ये आइडिया कैसे आया कि किताबों पर बातचीत को एक ऑडियो फॉर्म पे लाया जाए?
1: मैं चाहती थी कि लेखक अपनी कहानियां खुद पाठकों तक पहुंचाए, और दूसरी वजह ये रही कि मैं हमेशा से बहुत रीडिंग राइटिंग भी करती रही हूँ और बहुत सारे लिटरेरी क्लब से जुड़ी हुई थी। जब मैं वहां जाती थी, मैं देखती थी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत उम्दा लिखते हैं, पर वो ना, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। ऐसा मुझे कहा गया कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, तो मैंने इसीलिए रिया रिकमेंड शुरू किया, ताकि उन लेखकों की लेखनी हम सब तक पहुंचे और सुनी जाए, और ये अपने आप में बहुत सुकून देता है मुझे जब मेरे पास सबकी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि उनका शब्दों को दुनिया सुन रही है।
0: बहुत सुंदर। आपने करीब 40 जाने माने लेखकों से बातचीत की है, कोई एक ऐसा इंटरव्यू जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो?
1: ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे। मेरे लिए हर संवाद अपने आप में बहुत खास रहा है। हर लेखक अपने अनुभव और दृष्टिकोण के साथ जैसे एक नई दुनिया ही खोल देता है मेरे लिए। और पर मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी यहाँ पे, मसलन तस्नीम खान जी की ऐ मेरे रहनुमा का लेखिका है, उनकी बेबाकी और निर्भीकता उन्हें एक सच्ची साहित्यकार बनाती है। और जैसे सत्यार्थ नायक जी हैं, जिन्होंने श्रीदेवी जी की बायोग्राफी लिखी है द इटर्नल गॉडेस, वही उन्होंने महागाथा जैसी बुक भी लिखी है जिसमें उन्होंने 100 स्टोरीज लिए पुराना में से। तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एक जो बॉलीवुड की लेजेंड पे एक स्टोरी लिख रहा है, फिर वो पुराना पे लिख रहा है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और वही अगर मैं बात करूं कि सबसे खास, तो उसमें मैं राजेश शर्मा जी की बातचीत को बड़ा खास मानना चाहूंगी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी लेखक भी हैं, कवि भी हैं, डीन भी हैं और उद्यमी भी हैं। उनके साथ उनका एक प्रोजेक्ट है गुंजिश्ता बरेली। आप ये सोचिए कि उन्होंने एक फेसबुक पे ब्लॉग स्टार्ट किया था जिसमें बरेली जैसे शहर में से उन्होंने 100 ऐसे व्यक्तित्व ढूंढे जिनकी वजह से बरेली आज जाना माना है, और आज उस पे 3 बुक्स पब्लिश हुई है सीरीज में। और उनके उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट रहा, वो बहुत फेमस हुआ था। और दूसरा पॉडकास्ट हमने उनके साथ किया था, एक बुक है गली कासिम जान, अगर आपने उनका जिक्र सुना हो तो। गली कासिम जान किताब पर जो विनोद भारद्वाज जी ने लिखी है, हम दोनों के गालिब फेवरेट हैं, हम दोनों की फेवरेट बुक थी। तो उस पे जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, जो हमने गालिब पे और उस गली उस दौर को जिया था हमने उस बातचीत में एक बार दोबारा, वो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग मानूंगी, जो मेरे लिए भी था और शायद मेरे ऑडियंस के लिए भी।
0: गालिब पे आप लोगों ने लिखा है, ये तो भाई मेरा भी पसंदीदा विषय है। खैर, इस पे हम बात कभी फुर्सत में करेंगे दोबारा, या फिर आपको कभी पॉडकास्ट में फिर बुलाएंगे तो फिर बात करेंगे। आज जब पॉडकास्ट का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है ये साहित्य को नए श्रोताओं तक पहुंच आ रहा है? ये काफी साहित्य से भी बाहर आ रहा है, पहले तो किताबों में ही था जो कुछ था, लेकिन अब ये एक आम पहुंच तक है एक तरह से कहा जा सकता है।
1: अगर साहित्य को इस नजर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक पॉडकास्ट मदद कर रहा है, और आज की पीढ़ी सुनना ज्यादा पसंद करती है क्योंकि शायद हमारे समय से वो ज्यादा बिजी है। अगर मैं आज के स्टूडेंट्स की बात करूं, हमारे टाइम पे शायद हम सिर्फ पढ़ रहे होते थे, एग्जाम्स दे रहे होते, आज उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने हैं, जिमिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, तो इस केस में वो हेडफोन्स पे पॉडकास्ट सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर शब्द दिल से बोले जाएं तो वे असर जरूर छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉडकास्ट साहित्य और श्रोताओं के बीच एक नया पुल बनने का काम कर रहे हैं।
0: ये बात बहुत थोड़ी विचारणीय है जो आपने कही है कि
1: जी
0: साहित्य एक तरह से सुलभ हो रहा है एक दूसरे फॉर्म में, एक
1: जी
0: तरह से।
1: बिल्कुल
0: अब मैं जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा सा हर पॉडकास्टर के लिए एक ट्रिकी सा है।
1: जी
0: पॉडकास्ट बनाते समय आपका मकसद क्या रहता है, लेखक की सोच को सामने लाना या पाठक को प्रेरित करना?
1: पॉडकास्ट बनाते समय मेरा मकसद होता है कि मैं लेखकों की सोच को सामने लाना चाहती हूँ और पाठकों को प्रेरित भी करना चाहती हूँ कि सुनने वाला सिर्फ किताब नहीं बल्कि उस सोच को भी समझे जो किताब के पीछे है। अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, और अगर उस मकसद को जान लिया जाए तो शायद किताब को पढ़ना आसान हो जाता है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि जरूरी है।
0: नहीं, बिल्कुल सही है। और साहित्य और संगीत का भी हमेशा से बहुत अच्छा एक जुड़ाव रहा है, तो आपकी
1: जी
0: साहित्य की बात पे हम यहाँ एक अच्छा कोई गाना सुनते हैं जिसमें कुछ साहित्यिक शब्द आए।

0: रिया जी, आप अपने इंस्टा पेज बिटवीन द पेजेस पर बहुत गहराई से किताबों की समीक्षा करती हैं। रिव्यू लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया?
1: सर, मैं हमेशा से एविड रीडर रही हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मुझे जिंदगी में कई चीजों से डर लगता था, क्योंकि डरते हम उस चीज से जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, और किताबें मुझे निडर बनाती, बुक्स मेक्स मी ब्रेव। सो मैंने हमेशा से पकड़ा था और मैं हमेशा से पढ़ती रही, और मैं जो भी किताब पढ़ती थी मैं उसको समराइज जरूर करती थी और उसके कुछ कोट्स लिख दिया करती थी। और ऐसे ही ये जो समरीज और नोट्स की थी, जब इंस्टाग्राम का दौर आया तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूज हर बुक पे शेयर करने चाहिए, तो उन अनुभवों को मैंने बिटवीन द पेजेस डॉट इन पे शेयर करना शुरू कर दिया। और वहां मेरी कोशिश यही रहती है कि किताबों के पन्नों के बीच छिपी आत्मा तक पहुंचा जा सके, उसके जिस तक उसे जिस नजर से मैं देखती हूँ मैं उसे शेयर कर देती हूँ।
0: बहुत अच्छा। तो एक अच्छे रिव्यू में आपके हिसाब से क्या ज्यादा मायने रखता है, ईमानदारी या एनालिसिस या विश्लेषण?
1: सर, मेरे लिए ना किताब एक एहसास की तरह है, और मुझे लगता है उसे परखना नहीं समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने रिव्यू में आलोचना नहीं संवाद खोजती हूँ, जहाँ लेखक की रूह और पाठकों का मन दोनों का मेल किया जा सके, क्योंकि मैं पाठक भी हूं और मैं उस नजर से ही उसको शेयर करती
0: हूँ। ये बात बहुत सुंदर कह दी आपने। आप बहुत ज्यादा उसमें आलोचना समालोचना या क्रिटिकल एनालिसिस करने के बजाय वो क्या कन्वे करना चाह रहा है इस बात पे ज्यादा जोर देती है, अगर मैं सही समझाऊं आपकी बात।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: रिया जी, आप नए लेखकों को भी लगातार प्रमोट कर रही हैं, इस पहल के पीछे आपकी सोच क्या है?
1: जी, मुझे हमेशा लगता है कि हर कलम को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि बुक पब्लिश हो गई तो उसके पीछे पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है, फिर उसको कंपाइल करना, फिर पब्लिशर्स ढूंढना, बहुत मेहनत लगती है किताब को बनने में, एक तपस्या की तरह होती है हर किताब। तो मुझे इसीलिए लगता है कि सबको बहुत मौका मिलना चाहिए, और जब मैंने शुरुआत की तो मुझे भी इसी तरह से किसी ने मोटिवेट किया था, तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ।
0: आई कम्प्लीटली अग्री। आजकल का जो लैंडस्केप है वो बहुत बदल गया है, पब्लिशिंग बहुत ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन होने से पब्लिशिंग कुछ तरह से आसान भी हो गई। पहले तो पब्लिशर को ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम होता था।
1: जी, पब्लिशर्स को ढूंढना भी आसान हो गया है, बट उसके बाद भी बहुत कुछ होता है कि वो पब्लिशर उस आपकी किताब की रूह को समझे, आप जो कन्वे करना चाह रहे हो उसे उसी नजर से देखिए और पब्लिश कराए, बहुत मुश्किल काम है ये भी।
0: बिल्कुल सही बात। और चलिए, इस मुश्किल की पहल पर या मुश्किल के काम पर हम लोग एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाना सुनते हैं।
1: जी सर।
2: वो

0: विजया जी, आजकल कहा जाता है यंग जनरेशन में पढ़ने की आदत कम हो रही है, ये क्या, ये भी हालांकि बहुत ज्यादा एक डिबेटेबल सा सब्जेक्ट है, आप क्या सहमत हैं इस बात से?
1: सर मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूँ, पढ़ने की आदत कम हो गई है क्योंकि किताबों से इश्क नहीं रहा, पर उनमें क्यूरियोसिटी कम नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तो आई थिंक वो ऑडियो बुक या किंडल के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं पर उसे वो पेपर बैक या उस फॉर्मेट में नहीं भर रहे, तो जो जैसे हमें होता था कि कलेक्शन ऑफ बुक्स होती थी या कुछ और होता था, वो नहीं रहा है, वो चलते फिरते समरी सुनना या ऑडियो बुक के फॉर्मेट में सुनना वो जरूर कर रहे हैं। तो लिटरेचर की तरफ प्यार कम हुआ है या वो नहीं कह सकते हम, पर उसका एक फॉर्मेट चेंज हो गया है कि वो स्क्रीन टाइम पर चला गया इंस्टेड ऑफ अ पेपर बैक थिंग।
0: हालांकि मेरे ख्याल में बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं आप, बहुत ही वाजिब बात कह रही हैं। नहीं, अब कुछ साल पहले तक तो वास्तव में थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अब लास्ट 5-10 ईयर्स से तो मैं देख रहा हूँ काफी बच्चों में पढ़ने की आदत बढ़ रही है। और इसी कंटेक्स्ट में हम आ जाते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। जयपुर में हम बैठे हो, जयपुर JLF की बात नहीं करें तो मजा नहीं आता ना। तो इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये कितने जरूरी हैं आपकी नजर?
1: सर बेहद जरूरी है, उसका जैसे अभी हमने युवा पीढ़ी की ही बात करी, तो युवा पीढ़ी उसे एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाते जरूर है, और वहां पर जब वो देखती है मंच पे लेखकों को बोलते हुए और अपनी बुक के बारे में बातचीत करते हुए, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा वो प्रेरित होते हैं, और हमारे जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए तो वैसे भी उत्सव से कम है भी नहीं, जहाँ शब्द हो, विचार हो, संवाद हो, सब हो वहां पर, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं चाहे वो एक बार जाती है चेक इन डालने के लिए कि चलो हम भी जा रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल में, बट दे गेट इंस्पायर्ड, उसके बाद उनको मैंने देखा है कि वो ऑथर से बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक्स लेने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये जो वापस पेपर बैग का दौर है शायद इस वे में ही सही वापस आ सकता है, तो ऐसे फेस्टिवल और बहुत होने चाहिए जहाँ रूबरू हो सके ऑथर्स के साथ में।
0: चलिए, हालांकि ये भी मेरा बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है क्योंकि मैं इसको 2008 से अटेंड कर रहा हूँ फेस्टिवल को। अब इसमें मुझे मतलब महसूस होता है कि थोड़ा कमर्शलाइजेशन ज्यादा हो गया, बट इन एनी केस बच्चे बहुत आ रहे हैं इसमें, इतनी भीड़ होती है बच्चों की, यंगस्टर्स की रादर, कि बहुत अच्छा लगता है एक बार इतने यंगस्टर्स को किताबों के बारे में बात करते सुनना, किताबों को देखते हैं, वो ब्राउज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
0: रिया जी, आजकल AI लेखन में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटिंग में भी काफी यूज हो रही है, आइडियाज, एडिटिंग, समरीज तक, आपको क्या लगता है इसे क्रिएटिविटी को मदद मिल रही है या खतरा सा हो रहा है?
1: सर क्रिएटिविटी को तो मदद नहीं मिल रही, अगर मैं कहूं कि मैं कुछ टाइप कर देती हूँ और वो मुझे लिख के दे देता है तो मशीन कुछ महसूस नहीं कर सकती, AI काइंड ऑफ हम उसे गैजेट मान लेते हैं या एक सॉफ्टवेयर जो भी है, तो वो हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो सके, जैसे हम पहले हाथों से अकाउंट्स बनाया करते थे, अब लैपटॉप पे हो जाते हैं और वो सेव रहते हैं बहुत सालों तक, आपको इतने सारे जर्नल्स को संभालने नहीं पड़ते, तो AI एक टूल है, अगर उसे एक टूल के तौर पर अपना टाइम और एनर्जी सेव करके उस टाइम और एनर्जी को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करने के लिए हम कर रहे हैं तब तक वो ठीक है, पर हर गैजेट का कोई ना प्रोज और कॉन्स होती है, तो इसके भी नुकसान है ही, और वो अगर स्टार्ट से उसे एक बैलेंस्ड वे में नहीं यूज किया गया तो शायद वो एक खतरा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि हम 90s के जो किड्स रहे हैं उन्होंने जितने ज्यादा चेंजेस देखे हैं, अगर आपको याद हो तो बचपन में एक फोन होता था जिसे हम फर्स्ट नंबर को पूरा राउंड करके घुमाते थे, फिर वो वापस टर्न होता था, फिर दूसरा नंबर घुमाते थे और बहुत देर लगती थी एक नंबर को डायल करने में, तो हमने उधर से लेके अगर मोबाइल के टच स्क्रीन तक सर्वाइव किया तो हम AI भी सर्वाइव कर ही लेंगे, हम लोग काफी बैलेंस है, हम कर ही लेंगे उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी बड़ा डिबेटेबल है, क्या मशीन कभी इंसान जैसी इमोशनल डेप्थ जितना लिख पाएगी क्या कर पाएगी मशीन, ऐसा कर पाएंगी क्या कभी? क्या सोचते हैं आप इसके बाद?
1: सब मशीन महसूस नहीं कर सकती ना, उसे दर्द नहीं होता, उसे खुशी नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते। एनी डे ह्यूमन बीइंग और रोबोट्स में फर्क तो रहेगा ही ना, दे कांट क्रिएट द इमोशंस।
0: बिल्कुल सही बात है। चलिए इस मशीन और इंसान की जद्दोजहद पे एक गाने के लिए हम रुक जाते हैं और एक गाना सुन लेते हैं
1: जी।

0: रिया जी, अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं।
1: जी
0: हमने बहुत सारी आपकी लेखन के बारे में बात कर ली।
1: जी
0: आप एक कवित्री हैं, माँ हैं, गृहिणी हैं, कंपाइलर हैं, रिव्यूअर हैं, सब कुछ है। इतनी
1: जी
0: भूमिकाएं निभाते हुए आप अपना मी टाइम कैसे निकालती हैं?
1: सर, राइटिंग इज माय मी टाइम. एक्चुअली मेरा मेन प्रोफेशन अगर मैं बोलूंगी तो मैं गृहिणी ही हूँ, और उसमें अगर मी टाइम की बात करूँ तो राइटिंग इज माय मी टाइम, जिसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है और पेशेंस भी आते हैं, सुकून भी मिलता है. तो दिस इज माय मी टाइम. मेरा मेन प्रोफेशन आप गृहिणी ही मानिए कि वो मेरा, राइटिंग इज माई मी टाइम. जैसे लोगों का टीवी देखना होता है या म्यूजिक सुनना होता है, मेरे लिए लिखना पढ़ना मेरा मी टाइम होता है. मुझे उसमें सुकून मिलता है.
0: वंडरफुल। मतलब आप जब लिखती है तो बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाती है।

0: रिफ्रेश
1: जी
0: बटन है आपके
1: सर,
0: लिए, रिफ्रेश बटन है आपके
1: जी
0: लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कई लोगों का म्यूजिक होता है, म्यूजिक सुनते हैं तो
1: सर।
0: बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो इस तरह
1: जी
0: लिखना आपका है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। तो लिखने के अलावा रिया को और किन चीजों में आनंद मिलता है, कोई और शौक, कोई और हॉबीज क्या है आप?
1: सर, आई लव गार्डनिंग। मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है। एक बीज को पौधा बनते हुए देखना, फिर उसको पेड़ का स्वरूप लेते हुए देखना, और जो पतझड़ का मौसम होता है कि सब खत्म, और फिर अचानक उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती है, वो बड़ी इंस्पायरिंग लगती है मुझे। तो एक अजीब सा सुकून है, और ये जो सफर है इतना बड़ा, उसमें एक पेशेंस भी है, सब्र भी है, और एक उम्मीद भी है, जो जिंदगी को समझने का एक नया नजरिया देती है कि एक बार सब खत्म भी हो जाए पर सब सही भी हो जाए। तो मुझे गार्डनिंग बेहद पसंद है।
0: बहुत खूबसूरत। आपका तो ये जो क्लिप है गार्डनिंग के बारे में आपने बोला है, हमें इसको रिकॉर्ड करके अलग से दिखा रहे हैं। ये एक आपने शब्द चित्र जिसको कहते हैं वो खींच दिया गार्डनिंग का, बहुत अच्छा। तो रिया जी, क्या मदरहुड ने आपकी कविताओं को किसी तरह से प्रभावित किया है, कुछ इन्फ्लुएंस आया है?
1: सर बहुत बहुत गहराई आई है मेरी मदरहुड की वजह से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ हमारा पहला रिश्ता होता है, और अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो एक माँ होने और एक माँ के होने का फर्क बहुत गहराई से समझती हूँ। कि तो मैं कह सकती हूँ कि माँ बनने के बाद मेरी कविताएं और मेरा जीवन दोनों अपने आप में एक संपूर्णता में पहुंचा है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो फिर अगर रिया राइटर पॉडकास्टर नहीं होती तो क्या बनना पसंद करती?
1: सर, शब्दों के बिना भी मैं शायद जीवन का अर्थ ही खोजती, क्योंकि रचना तो सिर्फ कलम से नहीं है ना, दिल से होती है। तो लेखक ना सही, शायद एक बेहतर इंसान बनना ही मेरी सबसे बड़ी रचना होती।
0: नहीं, अगर मैं पूछूं प्रोफेशन वाइज, साइंटिस्ट बनना चाहती, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती, ऐसा क्या मन होता अगर इस जो आप करेंटली कर रही हैं ये नहीं कर रही? तो आपको लगता होगा ना, भाई ये पायलट है लेडी, ये हवाई जहाज चला रही है, ये ट्रेन चला रही है, मैं भी ऐसा कुछ करती। आजकल क्रिकेटर भी बन रही है लड़कियां।
1: सर, यू वॉन्ट मी टू बी ऑनेस्ट हियर?
0: हाँ
1: मैं
0: बिल्कुल, क्यों नहीं।
1: मैं शू डिजाइनर बनना चाहती
0: वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल,
1: हूँ।
0: शू डिजाइनर बनना चाहते हैं, लेट अस कम आउट समथिंग वेरी गुड। मुझे याद है एक एड आता था शू डिजाइनर का, बहुत पहले टीवी में, मुझे याद है, बड़ा एक जेंटलमैन सा आदमी वो शू डिजाइन करता था, वो उसकी याद आ गई मुझे आपकी बात सुनकर।
1: तो मैंने भी
0: वंडरफुल।
1: बचपन में, हम सब ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कॉबलर था जो हर रात एक जोड़ी जूती बनाता था, पर उसकी सेल नहीं हो पाती थी। फिर कुछ छोटी परियां आई थी जिन्होंने जूतियां बनाई, तो बड़े महंगे दामों में बिकी थी, और उसकी लाइफ चेंज हुई थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने एक कहानी सुनी थी, तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ बनाऊंगी जिससे जिंदगी, किसी की जिंदगी बदल जाए जिसको चलने से। तो मैं कॉबलर होती शायद, शू
0: वाह,
1: डिजाइनर।
0: तो आपकी कल्पना की इस उड़ान के लिए हम एक बढ़िया से गाने के लिए रुक जाते हैं
1: जी
0: और
1: सर,
0: सुनते हैं एक गाना।

0: रिया जी, अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पे आ गए हैं। कुछ बताइए, कौन से कवि या लेखक आपके लिए प्रेरणा रहे हैं, कोई खास?
1: सर, किसी एक कवि का आप इधर नाम कैसे ले सकते हैं? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर हो, गुलजार हो, एमिली डिकिंसन, शेक्सपियर, शिवानी जी, अमृता प्रीतम जी, सबकी लेखनी में वो आत्मा बसती है जो पाठकों को भीतर तक छू लेती है, और इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर अगर मैं कहूं तो मैं किसी दिन उस गहराई और बेबाकी से लिखना चाहूंगी जिस तरह अमृता प्रीतम जी ने लिखा था, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के, बस दिल की सच्चाई के साथ। तो मैं शायद उनके जैसा किसी दिन लिखना चाहूंगी।
0: बहुत सुंदर, ये तो आपने मेरी फेवरेट राइटर उनका नाम ले लिया,
1: जी
0: क्योंकि बहुत खूबसूरत। इनकी वो जो है ना रसीदी टिकट, वो भी मैंने पढ़ी हुई है, और हम लोग किसी जमाने में उससे बड़े इन्फ्लुएंस थे।
1: सर,
0: चलिए
1: मैंने
0: साहब।
1: रसीदी टिकट हो, दस्तावेज हो, खतों का सफरनामा हो, मैंने पिंजर हो, मैंने इनका का बहुत सराहती हूँ मैं इनके काम को।
0: बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: जी
0: चलिए रिया जी, अब मैं आखिरी सवाल तो नहीं कह सकता, लेकिन आखिरी पायदान पे हम आ गए। आपको अपनी
1: जी
0: क्रिएटिव फिलॉसफी अगर एक लाइन में बतानी हो तो वो क्या होगी?
1: क्रिएटिव फिलॉसफी। सर, अगर जिंदगी एक कहानी है, अगर जिंदगी एक कहानी है और कहानी तुम्हारी है, तो कलम भी तुम्हारे ही हाथ में होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी।
0: बहुत खूबसूरत। अगर जिंदगी एक कहानी है तो उस कहानी को लिख के
1: बिल्कुल
0: लिए कलम भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आज की ये बातचीत रिया मनोज के शब्दों की तरह ही गहराई और सादगी से भरी रही। उनकी कविताएं हमें एहसास कराती हैं कि भावनाएं आज भी सबसे बड़ी प्रेरणा है, और सृजन की दुनिया में सच्चाई और संवेदना की जगह कम नहीं हुई है। एक कवयित्री, लेखिका, रिव्यूअर और पॉडकास्टर के रूप में रिया न सिर्फ खुद लिखती हैं, बल्कि दूसरों को भी लिखने, सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित करती हैं। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपने अनुभव और संवेदनाओं को हमारे श्रोताओं के साथ बांटा।
1: सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने का और मेरे को इतनी पेशेंस के साथ सुनने का, इस खूबसूरत बातचीत के लिए और इस शब्दों के सफर में साथ देने के लिए। सच में बेहद आभार।
0: रिया, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी रचनात्मक यात्रा यूं ही उजालों से भरी रहे।
1: शुक्रिया सर आपका, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत गुड विशेस।
0: अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत, नई सोच और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, शब्दों से जुड़े रहिए और महसूस करते रहिए जिंदगी को। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: ये एक ऐसे अभिनेता थे जो एक ही बार में आपका सारा ध्यान अपनी ओर खींच सकते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी फिल्म बिरादरी में ग्लैमर को जोड़ा और देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अशोक कुमार जी की। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, टुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। बीच वाले स्टेशन बोले।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल।

अशोक कुमार जी ने सिल्वर स्क्रीन पर राज किया और अपने करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति से लाखों दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने, पूछो ना कैसे मैंने दिन बिताए।
1: दोस्तों, अशोक कुमार जी का असली नाम था कुमुदलाल गांगुली, जी हाँ, जो बाद में भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में कुंजीलाल गांगुली और गौरी देवी जी के यहां हुआ था। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, चाहे भूमिका कैसी भी हो, नकारात्मक किरदार हो या हीरो का किरदार, अशोक कुमार जी ने सभी के साथ बड़ी सहजता से न्याय किया। चलिए पहले उन्हीं की फिल्म का ये गीत सुनते हैं, फिर मैं कुछ और जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए उनकी ही फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

आप हैं आरजे समीर के साथ दोस्तों, और आज के कलाकार प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की। तो अशोक कुमार जी एक शानदार अभिनेता होने के साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करते थे, है ना मजेदार बात। और वो अक्सर उन बीमारियों का समाधान कर दिया करते थे जिनसे डॉक्टर निपट नहीं पाते थे। आइए इसी बात पे हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी की, जिनका असल नाम कुमुदलाल गांगुली था। आपको पता है दोस्तों, वो एक बेहद अच्छे चित्रकार भी थे।

अशोक कुमार जी की सबसे पहली बड़ी हिट थी अछूत कन्या। इस फिल्म ने गांधी जी की बिना किसी वर्ग या जाति विभाजन की विचारधारा को प्रसारित किया था। तो हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों अशोक कुमार जी भारतीय सिनेमा के पहले एंटी हीरो थे, मतलब वो सबसे पहले अभिनेता थे जो हीरो के रोल्स करते करते एक बार विलन का रोल भी कर बैठे और उसमें भी उनकी एक्टिंग शानदार रही। मैं बताता हूं वो कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का रोल किया। तब तक एक गीत हो जाए।

ज्ञान मुखर्जी जी 1943 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था किस्मत। अशोक कुमार जी ने उसमें एक जेब कतरे का रोल निभाया जो कि बाद में प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों, ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो टेक्निकली अशोक कुमार जी करोड़ क्लब स्थापित करने वाले पहले अभिनेता थे। तो लीजिए एक और गीत उनकी फिल्म का।

0: उसके बाद अशोक कुमार जी बॉम्बे टॉकीज में ही निर्माता बन गए। क्या दोस्तों आपको पता है, देव आनंद साहब को पहला ब्रेक जिद्दी फिल्म में 1948 में इन्होंने ही दिया था।
1: बाजू।

0: जाते हैं प्यारे।
1: दोस्तों, अशोक कुमार जी ने 1949 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था महल, और उस फिल्म में उन्होंने एक प्रतिभा को इंट्रोड्यूस किया जिसने 1950 के दशक में बॉलीवुड में तूफान ला दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधु बालाजी की। तो मधु बालाजी को इंट्रोड्यूस करने में अशोक कुमार जी का ही हाथ था।

दोस्तों अशोक कुमार 1980 के दशक में टेलीविजन स्क्रीन पर भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। क्यों, आपको याद है ना, हम लोगों की वो एंकरिंग जो अशोक कुमार जी काला रंग का चश्मा पहनकर किया करते थे।

1988 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी फिल्मी हस्ती को दिए जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

विश्वजीत चटर्जी, जो सिंपल विश्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बहुत ही स्वाभाविक अभिनय और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे बिस्वजीत चटर्जी। इन्होंने बंगाली फिल्मों और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया। चलिए हो जाए इनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग की सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

विश्वजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत

बिस्वजीत चैटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत। ये

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी बिस्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय, रेडियो SN एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। और आप सुन रहे हैं एक ऐसा प्रोग्राम जहां अल्फाज बोलेंगे और एहसास महसूस होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम सफर शुरू करते हैं अल्फाज से एहसास तक का। कहते हैं कि गजल सिर्फ एक शायरी नहीं बल्कि दिल की वो दबी हुई आह होती है जो संगीत का लिबास पहनकर हमारी रूह तक पहुंचती है। एक तरफ जगजीत सिंह जी की वो मसीहा जैसी आवाज जो पुरानी यादों को ताजा कर देती है, दूसरी तरफ मेहदी हसन साहब जिन्होंने गजल को एक नया मुकाम दिया, और तीसरी तरफ गुलाम अली साहब जिनकी गायकी में एक अलग ही थरथराहट और दर्द है। तो दोस्तों, आज की शाम थोड़ी फुर्सत की है तो क्यों ना हम सब मिलकर उन कागज की कश्तियों को याद करें और उन रास्तों पर चलें जहां जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मोहब्बत में कदीम इम्तहा अभी बाकी है, किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत में कदीम इम्तहा अभी बाकी है, अभी तो कारवाने रफ्तागान बाकी हैं, मगर वो बचपना वो बेफिक्री अब कहाँ है दिल, अब तो सिर्फ यादों का धुआं ही बाकी है। दोस्तों, बचपन की वो यादें किसी सरमाए से कम नहीं होती। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदें बसी हुई हैं। तो आइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की पुरकशिश आवाज में डूब जाते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जी लेते हैं। सुदर्शन फाकिद का ये मशहूर कलाम, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। गजल मुलाहजा फरमाए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते, जिंदगी के सफर में सभी साथी नहीं होते दोस्तों। हर मोड़ पर पुराने दोस्त बाकी नहीं होते। प्यार तो हर कोई करता है इस दुनिया में, मगर मौत तक जो साथ निभाए वो साथी नहीं होते। अभी हम बचपन की गलियों में घूम रहे थे, लेकिन अब रुख करते हैं उस आवाज की तरफ जिसे शहंशाह गजल कहा जाता है, यानी मेहदी हसन साहब। उनकी गायकी में एक ऐसी संजीदगी है जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। उनका कहना है कि जीते जी मोहब्बत करना तो आम है, पर असली इम्तहान तो मौत के बाद भी उस रिश्ते को जिंदा रखना है। तो पेशे खिदमत है उस्ताद मेहदी हसन खां की ये लाजवाब गजल। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। कतील शफाई के कलाम को अपनी रूहानी आवाज में गाकर मेहदी हसन साहब ने अमर कर दिया।

दोस्तों, निगाहों के तसव्वुर में सूरत अभी भी बाकी है। निगाहों के तसव्वुर में वो सूरत अभी भी बाकी है। मोहब्बत की वो हल्की सी शरारत अब भी बाकी है। जमाना बीत गया उनसे बिछड़े हुए ऐ दिल, मगर दिल में मिलने की वो हसरत अब भी बाकी है। मोहब्बत का असली मजा तो उस इंतजार में है दोस्तों, जो रातों की नींदें उड़ा देता है। हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई ये गजल और गुलाम अली साहब की वो थरथराती सी आवाज, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं कहीं ठहर गया हो। सुनिए इश्क की उस मासूमियत को बयान करती ये दास्तां। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अपनी आशिकी का वो जमाना याद है। गुलाम अली साहब की आवाज में सुनिए ये दर्द से भरी दास्तां।

हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक जज्बात को अल्फाज नहीं मिलते, हर एक साहिल को जहाज नहीं मिलते। बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, बेखुदी की दुनिया में मिलते हैं जो सुकून, वो होश की दुनिया में कभी बाज नहीं मिलते। कहा जाता है कि इश्क में थोड़ी दीवानगी जरूरी है। जो लोग हर चीज में नफा नुकसान देखते हैं, वो भला मोहब्बत की इस बेखुदी को क्या समझेंगे। जगजीत सिंह की रेशम जैसी आवाज में पेश है निदा फाजली का ये मशहूर कलाम, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।

तुमने कहा था हर एक मोड़ पर साथ निभाएंगे, मगर अब तो रास्ते भी हमसे सवाल करते हैं। चलो माना कि तुम बेवफा नहीं हो फराज, मगर कभी कभी तुम भी कमाल करते हो। आगे फराज साहब कहते हैं, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। अहमद फराज का ये कलाम मेहदी हसन साहब की आवाज में एक इबादत बन गया हो जैसे। कभी कभी रिश्तों में ना चाहते हुए भी इतनी दूरियां आ जाती हैं कि दिल फिर इतना ही चाहता है कि सिर्फ एक बार ही सही हमें दुखाने के लिए ही आ, पर लौट आए कोई। सुनिए एक टूटे हुए दिल की खामोश पुकार, मेहदी हसन साहब की पुरसुकून आवाज में ये गजल। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

दोस्तों, अब थोड़ा माहौल बदलते हैं। सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज को लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। बुद्ध हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। गुलाम अली साहब की गायकी का एक अलग ही रंग है दोस्तों, थोड़ी मस्ती, थोड़ी शिकायत और थोड़ा सा नशा। अकबर अलाहाबादी साहब के तंज और गुलाम अली की आवाज एक दूसरे को जैसे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, एक अलग सा ही नशा छा जाता है। वो कहते हैं, ना तजुर्बा कारी से वायस की ये बातें हैं, मतलब ना तजुर्बा कारों से वायस उपदेश देने वाले की ये बातें हैं। इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है। या वायस उपदेश देने वाला है और तंज है कि उसने कभी इश्क का नशा चखा ही नहीं, तो वो इसकी गहराई को क्या समझेगा। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद उस मैं से दिल ही में जो खिंचती है। आइए दोस्तों, गुलाम अली साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला।

वेल दोस्तों, घड़ी की सुइयां फिर उसी जगह आने को हैं, जहां से आपसे एक बार फिर विदा लेने का वक्त हो चला है। उम्मीद है अल्फाज से एहसास तक का आज का सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए जज्बात और एक नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक आप अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, गाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत उबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश, कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी। Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: एम तरफ मारे थोड़ो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने भीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कवचनाशी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवकनाशी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं, उनकी सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नजदीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहां पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, चूंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रबी की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं, साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं आपको, सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को, बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बातें।
2: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से।
3: देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सकें। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्टी।
0: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी, अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो श्रिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है, तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा, लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
3: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
2: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
4: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टैंटाफील 90.8 FM।

Yeah.

0: तड़प मारे थोड़ा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
2: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपला रेडियो आपनी बात है।

0: शराब मारे ही थोड़ो।
1: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
2: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो इसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना हुए। तो
1: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
3: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की, बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मेस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
4: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
5: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
0: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपके आरजे मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान मित्रों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी बड़ी ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे और आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, हम अपने किसान साथियों के लिए जो जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो बहुत बेहद उपयोगी सिद्ध हो रही होगी। और हम आशा करते हैं कि यदि आपको वास्तव में लगता है कि हमें खेती की नई प्रजातियां और खेती में किस तरीके का हम मुनाफे का सौदा हम कर सकते हैं, खेती में किस तरीके से हो सकता है, इस पर भी आप हमें पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर केबीके झाबुआ जिले में हमारा केबीके खुला हुआ है वहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं या हमारे कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मई माह चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या कर सकते हैं, मई महीने में किसान भाई क्या करें क्या ना करें, खरीफ फसल के लिए कैसे करें अपने खेत की तैयारी, बागवानी फसलों की देखरेख में किस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी आज आपके हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं इसके बारे में कि गेहूं की कटाई लगभग अब तो पूरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब किसान भाई खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर खरीफ सीजन की फसलों में अच्छी पैदावार आपको चाहिए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। रबी फसलों की कटाई के बाद अगर खेत खाली पड़े हैं तो खेतों में को सुधारने के का यह बहुत अच्छा समय है। ग्रीष्म काल में खेतों की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से या बखर चलाकर कर दें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि हमारे किसान साथी झाबुआ जिले में छोटी छोटी जगह है, पथरीला इलाका है, तो ऐसे में हल से हमारी खेती करते हैं हमारे किसान साथी, तो उनसे अच्छी तरह से हल से उनकी जुताई कर दें, बखर से भी उनकी जुताई कर दें। गर्मी में जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए कीटों के अंडे लार्वा आदि बाहर आ जाते हैं और धूप में अधिक तापमान के कारण ये मर जाते हैं। इसी प्रकार कई मिट्टी जनित रोगों के रोगाणु भी भूमि में दबे रहते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर गर्मी में गहरी जुताई करते हैं तो ये रोगाणु भी मर जाते हैं जिससे फसलें रोग मुक्त पैदा होती हैं। कुछ बहुवर्षीय खरपतवारों से फसलों को अधिक नुकसान होता है, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से ऐसे खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है जो खेत ऊबड़ खाबड़ हैं और उनको कंप्यूटर चलित लेजर समतल से समतल कर लेना चाहिए ताकि अगली फसलों में अंकुरण अच्छा हो और पानी की बचत हो। अब बात आती है कि खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व क्या तैयारी करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी हमारे किसान साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि मई महीने के अंत तक खरीफ फसलों की बुवाई से पहले की तैयारी शुरू कर लें ताकि समय पर बुवाई की जा सके। अगर हमारे किसान साथी धान की नर्सरी जून की शुरुआत में डालना शुरू हो जाता है, इसलिए उनके लिए उन्नत बीज, खाद, खरपतवार नाश कीटनाशी आदि के खरीद कर रख लें और खेत की तैयारी भी पहले से करके रखें। अरहर या कपास की बुवाई हमारे किसान साथी करते भी हैं, उनका समय पर हो सके इसके लिए खेत की जुताई, उन्नत बीज की खरीदारी जैसी तैयारी समय रहते पूरी कर लें ताकि बुवाई में देरी ना हो और जिन फसलों की मध्य जून तक बुवाई करनी हो उसके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि इसी माह डालकर मिट्टी में मिला दें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं अपनी खेती किसानी में आगे बढ़ाने के लिए। अब साथियों एक हम यहाँ पर विराम लेते हैं और एक अच्छा सा गीत को सुन लेते हैं, इसके बाद आपकी हमारी बातचीत कार्यक्रम खेती बाड़ी में होती रहेगी।
5: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़।

पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। आइए सुनते हैं एक और सुंदर गाना अपनी ही संस्कृति का, जो कि हम फेरे लेते समय उस गाने को अधिकतर गाया करते हैं। आइए सुनते हैं गाना।

0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने वीली गीत को सुना, इसका आनंद लिया और कार्यक्रम में और भी कुछ बातें हैं जो हम अपने किसान साथियों को बताने जा रहे हैं कि बागवानी फसलों के लिए क्या तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मई माह का महीना चल रहा है और ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई के साथ साथ बागवानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आय को बढ़ाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। मई महीने में किसान भाई आम यानी मैंगो के बागों का विशेष ख्याल रखें। आम पर मिली बग कीटों के अंडों और नए प्रजननों को नष्ट करने के लिए जुताई कर सकते हैं। पेड़ के मुख्य तने पर लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक पर प्लास्टिक 1 फीट चौड़ा का एक चद्दर तने के चारों ओर लगाएं तथा ग्रीस से भी सभी प्रकार के छिद्रों को बंद कर दें। मौसम को ध्यान में रखते हुए अंगूर और आलू बुखारा आदि के फल वृक्षों में नमी करने के लिए सिंचाई कर दें। जहां तक संभव हो सके इस माह किसी भी कीटनाशी का प्रयोग आम में ना करें, परंतु आम के भुनगे का प्रत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में मोनोक्रोटोफास और डाइमेथोएट के घोल का एक छिड़काव अवश्य कर दें। आम में खर्रा रोग का प्रकोप होने पर डिनोकेप कबस नासी का छिड़काव की आवश्यकता है और भुनगा कीट और खुर्रा रोग की रोकथाम हेतु कीटनाशी व कवक नासी को एक साथ मिलाकर भी छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे किसान साथी सब्जी करना चाहते हैं कि सब्जी फसलों में क्या करना चाहिए इस माह में, सब्जियों में चेपा के आक्रमण की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान में यह कीट जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो इसमें आप नजदीकी हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है या फिर कृषि विभाग है वहां पर वैज्ञानिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस तरीके की हमारे सब्जियों में रोग लग रहा है, उसके बचाव के लाने हमें क्या करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सब्जियों की फसलों पर छिड़काव के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक तुड़ाई ना करें और बीज वाली सब्जियों पर चेपा का आक्रमक का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान साथियों को। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमारे किसानों को हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देनी थी। आज के इस कार्यक्रम में, खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम जानेंगे, चूंकि हमारे किसान साथी जो हमारी रवि की फसल थी वो करके पैदा करके उन्होंने घर पर रख ली है। अगर बीजों की बात करें तो हमें अच्छे किस्म के बीज जो रहते हैं उसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, यानी संकर प्रजाति के जो बीज रहते हैं क्या है, कैसे इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में बकरी पालन पर भी बात करेंगे और साथ में एक सफल महिला किसान की कहानी इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम सुनाने जा रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं, आपको सबसे पहले हम खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं संकर प्रजाति के बीज क्या होते हैं। तो आइए सुनते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।
0: पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: किसान साथियों, आप तो अक्सर अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं, लेकिन संकर किस्म के बीजों से खेती करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी है। आइए इनके बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: देश विकास के साथ साथ कृषि जोत छोटी होती जा रही है। अब ऐसे किसानों की संख्या ज्यादा है जो कम जोत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक चीज है जो किसानों को काफी संबल देती है और वो है संकर किस्में। कृषि अनुसंधान संस्थान रात दिन शोध करके ऐसी किस्में तैयार करता है जो कम स्थान में भी भरपूर फसल दे सके। आज फसलों में ऐसी हजारों किस्में मौजूद हैं जो हर विपरीत हालात में भी किसान को मुनाफा देने में सक्षम है, लेकिन कभी कभी अधूरी जानकारी से नुकसान भी हो जाता है। ऐसे किसान को चाहिए कि वे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर किस्म का चुनाव और बुवाई का काम करें। संकर किस्मों को लगाते समय या चुनाव करते समय किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि भरपूर पैदावार हो और मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, बता रहे हैं मेरठ केवीके के प्रभारी और विशेषज्ञ डॉक्टर मिकार्टी।
4: किसी भी फील्ड में जब वो काम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि वो गेहूं और धान की खेती कर रहा है, लेकिन उसमें परेशानी क्या आ रही है कि हमारा किसान के पास जानकारी अधूरी है। वो वही वैरायटी बो देता है जो कि पहले उसने लगाया है, पुरानी वैरायटी बो दी, अब उसको मालूम है कि, अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि आपने भी सुना होगा कि हाई यील्डिंग वैरायटी होती है और हाइब्रिड होती है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी हो गई और हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जब हम बोते हैं तो हाइब्रिड सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, एक बार बोने के लिए होती है वो, और वो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है वो हाइब्रिड की ही चल रही है कि हमको जो है कम जगहों पे, जैसे आप हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो जमीन है वो श्रिंक होती जा रही है, वो सिकुड़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है वैसे वैसे हम और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारी संख्या जब बढ़ रही है तो हमको उत्पादन उसी कम से कम जमीन में लेनी है, तो जब कम से कम जमीन में लेनी हो तो जो पुरानी हमारी वैरायटी है वो 10 क्विंटल, 8 क्विंटल, 5 क्विंटल उत्पादन देती हैं, और आज के समय में जो हम हाइब्रिड ले रहे हैं तो 14 क्विंटल, 18 क्विंटल, 20 क्विंटल तक हमको उत्पादन मिल रहा है। अभी रिसेंटली गेहूं में कोई वैरायटी बिहार में आई है जो कि 80 क्विंटल तक दे रही है। बहुत ज्यादा मुझको डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि मैं पशुपालन का आदमी हूं, लेकिन मैंने पेपर में उसका पूरा आर्टिकल पढ़ा है कि वो 80 क्विंटल दे रही है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, तो वो इसी बात को फोकस करती है कि हमारे जो जमीन सिकुड़ रही है उसमें हमको कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेना है, और ये सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम होती है, हाइब्रिड जो होती है। किसान क्या करता है, उस सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को ना समझ करके पहले एक ही बीज को बोता है और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मोटे दाने होते हैं, बड़ा उत्पादन में ज्यादा उत्पादन होता है, तो वो क्या सोचता है कि ये वाला बीज अगर हम नेक्स्ट ईयर बोएंगे तो हमको इसी तरह का उत्पादन मिलेगा। लेकिन जेनेटिकली जो उसकी उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस बीज का, वो सिर्फ एक ही टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की जानकारियां जो हैं वो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ही किसानों को दी जाती हैं। तो इस तरह की जानकारियां जो हम लोग देते हैं तो इन चीजों को लेकर के किसान जो है और फायदा उठा सकता है। तो हमारे जो मैंडेट एक्टिविटीज होते हैं इसमें हम ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले।
3: इन बातों से साफ जाहिर होता है कि केवीके के विशेषज्ञ किस तरह से किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं, और साथ ही किसान इन छोटी लेकिन अहम जानकारियों को ध्यान में रखकर न सिर्फ अच्छी पैदावार ले सकते हैं बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनाए रख सकते हैं।
2: तो जाना आपने कि किस तरह से संकर किस्म के बीजों का चुनाव कर अगर आप खेती कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
1: अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे और बकरी पालन पर खासतौर पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, बने रहिए आरजे मरीज के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
0: पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, आओ मिलकर कसम ये खाएं, चलो मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, मैं आपका दोस्त आरजे अविनाश। दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
2: आइए अब बात करते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट में बकरी पालन की। जी हाँ, बकरी पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसे किसान खेती के साथ साथ अपना सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जहाँ एक तरफ किसानों की भी कई तरह की जरूरतें इससे पूरी होती है, वहीं कम लागत में से शुरू करके किसान इसे व्यवसायिक तौर पर अगर आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं कि बकरी पालन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें। साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार उनको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी जानने के बाद साथियों हमारा वक्त हो चुका है अगले सेगमेंट का, यानी सफल महिला किसान की कहानी सुनाने का। लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम, आपला रेडियो आपनी बात है।
3: पर्यावरण में हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
5: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं।

0: तो
1: पीएयू के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही पीएयू ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
2: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाज सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने बकरी पालन की देखरेख किस तरीके से हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमें बकरी पालना चाहिए, कौन कौन से पौष्टिक आहार हमको देना चाहिए और किस तरीके की सावधानी हमें बरतनी चाहिए उनकी रख रखाव के लिए।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: था।
1: दोस्तों हम सुन रहे हैं खेती किसानी कार्यक्रम और इस प्रोग्राम में हमने इस कार्यक्रम के द्वारा हमने काफी जानकारियां एकत्रित की है, वो चाहे हमारे बीजों को लेकर हो, पशुपालन को लेकर हो और अन्य कई प्रकार की चीजों में हमने किस तरीके से खेती को किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है, उसका समय समय पर हमें कौन कौन सी सावधानियों को रखना है, इन सब चीजों को लेकर अभी हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आइए सुनते हैं एक और हमारी संस्कृति का एक और सुंदर सा गाना।

0: या रोगिण।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और इन महत्वपूर्ण सेगमेंट को सुना हमने, जाना कि किस तरीके से इस माह में, चूंकि मई महीने का सीजन चल रहा है, उसमें किस तरीके से हमारे किसान साथी अपने खेतों में जुताई करें और किस तरीके से बागवानी लगाते समय क्या क्या सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में बातचीत को सुना। साथ साथ में सफल महिला किसान की बातचीत को सुना। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है।
4: हूँ से आरजे भावना आपन हंगला भाइयों नु घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: ભાવના આપણા ઝાબુઆના સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટેન્ટિયાવિલ 90.8

0: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेस हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। लीजिए दोस्तों, एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं, एक नए टैलेंट के साथ, एक नए कलाकार के साथ, एक नए गीतकार के साथ। हमारे साथ आज हैं मिंटू दास जी। बाकी की बातचीत हम मिंटू जी से करेंगे। मिंटू जी अपने बारे में भी हमें बताएंगे। मिंटू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुनने वालों के लिए। प्लीज अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं
1: जी। नमस्ते सबको, मेरा नाम मिंटू दास है। मैं असम के गुवाहाटी में रहता हूँ और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे साथ आज एक टीचर है जो नॉर्थ ईस्ट से है, गुवाहाटी से है। ये हमारा सौभाग्य है कि इतने दूर से भी इतने प्रबुद्ध कलाकार हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को मिंटू जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बड़ा ही प्यारा गीत। मिंटू जी, क्या आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जो शायद आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ उत्तर दें, तो क्या ऐसा कोई सवाल है आपके जहन में?
1: हाँ जी, मैं तो फिलहाल यही चाहूंगा कि आप मुझसे यही पूछे कि साथ अभी बैठकर बातें करके इस चैनल में आकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है। आप मुझसे यही पूछे, मैं यही चाहता हूँ।
0: भाई वाह, क्या बात है।
1: मेरा जवाब यह होगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। एक जैसे कि एक सपना पूरा हुआ, जैसे कि पहले मैंने कभी किसी रेडियो के लिए इंटरव्यू नहीं दिया, तो आज इंटरव्यू देते हुए, आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुश हूँ मैं।
0: बहुत सुंदर मिंटू जी, हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आप बहुत खुश हैं। मैं कई बार अपने मित्रों से कहता हूं, हमारी टीम से कहता हूं, दैट वी आर इन अ बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी। क्योंकि अगर चारों तरफ के सारे लोग, सारे इंसान, सारे व्यक्ति सब खुश होंगे, सब खुश होंगे तभी हम खुश हो पाएंगे। तो आज आप खुश हैं हमसे बात करके, आपके गीत सुनकर हम खुश हैं, बड़ी ही प्यारी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: यूं तो मिंटू जी आप खुद शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप छोटे थे तो स्कूल में आपका सबसे प्रिय विषय क्या था?
1: जी मेरा प्रिय विषय था विज्ञान और साहित्य, ये दो बहुत अच्छे लगते थे।
0: किस वजह?
1: सब्जेक्ट मुझे पसंद थे लेकिन ये दो सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा लगाव था मुझे। जैसे कि विज्ञान पढ़ के हम बहुत कुछ जान सकते हैं, मन की जो क्वेरीज होती है चारों तरफ की चीजों को लेकर, जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सामान हो या कुछ भी हो, हवाएं चल रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके सवाल आते हैं। उसको जब हम गहराई से जान पाते हैं कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो पता नहीं इसके लिए एक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये जानकर मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता था कि पानी कैसे बनते हैं, कितने गर्म होने पर पानी मतलब बॉयल होने लगता है, तो फिर वेपर होने के बाद फिर पानी बनना, तो इस तरह से सब कुछ जानकर बहुत, जैसे कि आसमान की बातें, ग्रह नक्षत्रों की बातें, ये सब जानकर बहुत मुझे अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। और साहित्य के लिए इसलिए क्योंकि जी
0: बोलिए बोलिए
1: जी और साहित्य के लिए इसलिए क्योंकि साहित्य मुझे मतलब कोई भी बात हम मतलब साहित्य पढ़ेंगे तो हम मन की बातों को ठीक से एक्सप्रेस कर पाते हैं, साहित्य के माध्यम से ही हम उसे जुड़ पाते हैं, कोई भी भाषा हम ठीक से सही तरीके से सीख सकते हैं, उसके नियम जो है ग्रामर्स पढ़कर हमें पता चलता है कि उस भाषा को हम कैसे बोले, और कोई भी जैसे कि हमें कुछ लिखना हो, चिट्ठी लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, स्टोरी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो सब साहित्य में ही आ जाती है, जो हमारे मन को शांत करते हैं, दिल को ठंडक पहुंचाता है साहित्य, इसलिए मुझे साहित्य पसंद है।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, मिंटू जी ने साफ साफ तौर पे बताया कि उनको साइंस क्यों पसंद है और साहित्य क्यों पसंद है, दोनों के कारण भी उन्होंने बताए, तो हम लोगों के दिमाग में भी, हम लोगों के जहन में भी काफी परिभाषाएं साफ हुई आज। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत खूबसूरत सा गीत मिंटू जी की ही आवाज में सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर। मिंटू जी, मिंटू जी, आपके विचार से अगले 5 सालों में हमारी दुनिया, हमारा विश्व कैसा दिखाई देगा, कुछ अंदाजा लगा के बताइए ना।
1: जी, मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में धरती बहुत सुंदर बन जाएगी और लोग खुश रहेंगे, लोग कामयाब होंगे। जितने भी अभी परेशानियां हैं लोगों के पास, लोगों को जो सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि किसी को कामकाज नहीं मिल रहा है, चारों तरफ की लड़ाई झगड़ा हम देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तरक्की भी कर रहे हैं, समाज तरक्की भी कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत आशावादी हूँ, मुझे उम्मीद है कि लोग तरक्की पर ध्यान देंगे, मिलजुल कर रहेंगे, बस इस तरह से गाना गाएंगे, गाना सुनेंगे, कोई भी अपने जो इच्छा है, हॉबी है, अपने हॉबीज को पूरा करेंगे और तरक्की पर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 5 साल बहुत खुश होंगे, हमारी जो समाज व्यवस्था है बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना एक शिक्षक के विचार कि वो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, सकारात्मक सोचते हैं और अपने विश्व को बहुत सुंदर देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मिंटू जी की ही आवाज में एक गीत सुनते हैं।

0: मिंटू जी, फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने बारे में एक किताब लिखें, ऑटोबायोग्राफी, तो उसका शीर्षक क्या रखेंगे आप?
1: हाँ जी, अगर मैं कोई किताब लिखता अपने बारे में, तो मैं उसका शीर्षक रखता कि मैं एक शिक्षक क्यों बना, एक टीचर क्यों बना, ये शीर्षक रखता मैं। क्योंकि मुझे मतलब शिक्षक बनने के पीछे मतलब एक बहुत मतलब बचपन से ही एक सोच ऐसा रहा कि मैं किसी को कुछ, जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं किसी को सिखाऊं, किसी और को बताऊं, देखो ऐसा ऐसा बात है। तो ये मेरी मतलब बचपन से ही एक आदत रही है। अब मैं सोचा नहीं कि मैं टीचर बनूंगा। कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते थे कि कुछ भी सीखो, बस सुनो सुनो, उसको समझा कर ही मुझे किसी को, अगर मतलब मैं जो कुछ जानता था चाहता था कि मैं उसे दूसरों को बता दूं, दूसरों को भी, दूसरे भी बाकी लोग भी सीखे, उसे जाने, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कुछ सीख कर किसी और फिर उसे सिखाना। तो शायद इसलिए एक झुकाव आ गया। और मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, अभी रिटायर्ड हैं, तो उनको देखकर भी एक मुझे प्रेरणा ली। और जब फिर मुझे भी मतलब लोगों के बीच रहकर, बच्चों के बीच रहकर अच्छा लगता था, एक अच्छा महसूस होता था। कभी मैंने सोचा कि मैं एक शिक्षक बनूं, बाकी काम भी मतलब मैंने ट्राई किया, लेकिन एक बार टीचिंग करने के बाद मुझे जो एक उसके प्रति जो एक लगाव अनुभव हुआ, फिर उसके बाद मैंने बीच में बाकी काम भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने उसे छोड़ के फिर टीचिंग में आ गया। मतलब मुझे जो सुकून मिलता है टीचिंग में, बच्चों के साथ रह करके उनसे जो प्यार मिलता है, जो इज्जत मिलता है, तो वो मजा मुझे किसी और में नहीं लगा, मुझे नहीं लग कहीं और मिलता होगा इतना मतलब इतनी खुशी। तो इसीलिए मैं टीचर बन गया और किताब का नाम भी शायद इसलिए मैं वही रखता।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ साफ मिंटू जी को पता है कि वो शिक्षक बनना चाहते थे और वो शिक्षक बने, और इसी बारे में वो अपनी इस किताब को भी लिखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया, तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत सा नगमा भी सुनते हैं।

0: जी मुझे ये बताइए, आपकी जिंदगी में
1: सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
2: जी मेरे जीवन में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि जहाँ तक मुझे अभी अभी इस वक्त लग रहा है कि बचपन में जब मैंने स्कूल फंक्शन में पहली बार गाना गाया था तो उस वक्त सभी ने मुझे बहुत पसंद किया मेरे गाने को, मुझे मेरी बहुत तारीफ, मेरे सभी टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, उन सभी ने बहुत तारीफ किया और मुझे, मैंने उम्मीद नहीं किया कि मैं सकूंगा या फिर मेरे गाने अच्छे होंगे। तो जब सभी ने तारीफ किया तो मैं जैसे चौंक गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि लोगों को पसंद आएगा। जब सब ने बहुत कहा कि हाँ तुम सीखो, आगे तुम आगे जा सकते हो, बहुत अगर तुम रेगुलर गाने गाओगे सीखोगे तो आगे बहुत अच्छा कर सकोगे, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। तो ये वही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस
1: बहुत,
2: मैं हैरान था। हाँ जी
1: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मैं समझ सकता हूँ कि बड़ा चमत्कारी तौर पर खुशी मिलती है कि हमें उम्मीद नहीं होती है लेकिन कई बार इस तरह की उपलब्धि बहुत खुश करके जाती है
2: जी।
1: बड़ी प्यारी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मिंटू जी की ही आवाज में।

0: मिंटू जी, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है इसको पूछने में, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हमें सुनने को मिलते हैं।
1: जी
0: फर्ज कीजिए कि अगर इंटरनेट रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए बंद कर दिया जाए, तो आपकी
1: जी
0: जिंदगी के किस किस पहलू में फर्क आएगा, और क्या आपकी जिंदगी के?
1: जी देखिए, अगर ऐसा हो गया कि इंटरनेट बंद हो जाए रात को 8 बजे के बीच, तो जैसे कि सबको जो परेशानी होंगी, आम लोगों को, वैसा ही परेशानी मुझे भी होंगी। जैसे कि हम इंटरनेट पर काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ स्टडीज करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, और लोगों से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बातें करना या व्हाट्सएप कॉल करना या फिर मैसेज करना, जरूरी बातें करनी होती है। जैसे कि रात को ही हम फ्री हो पाते हैं, दिन भर तो बिजी रहते हैं, तो रात को अगर बंद हो गया तो फिर जैसे कि ऑनलाइन कामकाज जो करते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह हम करते हैं, तो वो सब जैसे कि बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। तो इस सब से हमारे जो कामकाज पर काफी बाधा उत्पन्न होंगी। जैसे कि हम गाने सुनते हैं या फिर अभी जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस तरह की हम काम नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे संचार में हो, संचार व्यवस्था में हो, लोगों से कनेक्शन बातें करना हो, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो परेशानी होंगी इससे, और मुझे लगता है कि सभी को से परेशानी होंगी कुछ ना कुछ,
0: जी
1: ऐसा मुझे लगता है। जी
0: जी अगर वैसे आपने बिल्कुल ठीक है, मैं आपके विचारों की पूरी रेस्पेक्ट करता हूं,
1: हाँ
0: फिर भी बस यूं ही बातचीत करने के तौर पे पूछ रहा हूं कि अगर आपको किसी से बात करनी हो तो रात के 8 बजे फोन तो ऑन रहेगा, सिर्फ इंटरनेट ऑफ होगा, तो हम उसको फोन कॉल नहीं कर सकते?
1: हाँ हाँ जब फोन कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर वीडियो कॉल करना हो, कोई रिलेटिव्स है जो कि आमने सामने वीडियो कॉल करना चाहे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत दिनों से नहीं देखा, तो हम वीडियो कॉल करके भी हम आमने सामने बात कर सकते हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे फोन कॉल तो कर सकेंगे, लेकिन जैसे कि वीडियो कॉल हम नहीं कर पाएंगे अगर नेट नहीं हुआ तो। जैसे कि कोई रिलेटिव हो, कोई गांव में हो, बहुत बहुत दिनों से देखा नहीं, तो कोई देखना चाहता होगा कि चलो व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे।
0: चलिए
1: और जैसे
0: ठीक है,
1: कि हाँ
0: चलिए ठीक
1: हाँ
0: है, असुविधा, ओके, आपका मानना है कि असुविधाएं होंगी, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया। मिंटू जी मुझे ये बताइए कि अगर मैं किसी को आपके बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: जी अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन दे किसी को तो मैं चाहूंगा कि आप बोल आप है कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ स्कूल में और साथ साथ मैं गाना भी गाता हूँ और गाने के साथ साथ मुझे किताबें पढ़ना और पेंटिंग करना ये सब भी पसंद है, लेकिन मेनली एक टीचर और एक सिंगर के रूप में ही आप मेरी परिचय कराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
0: बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, एक टीचर और एक सिंगर जो कि मिंटू दास जी हैं, उन्हीं का गाया हुआ ये गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब। मिंटू भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए और जो नए सिंगर्स हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी नितिन जी, मैं जो नए सिंगर्स हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहें, खुद पर विश्वास रखें और गाते रहें, हर तरह के गाने गाने की कोशिश करें, अपने तरीके से गाने के लिए कोशिश करें। मैं ये खासकर कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि किसी बड़े सिंगर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एज इट इज गाने के लिए उनके जैसा कोशिश करते हैं जो कि हम कर नहीं पाते, क्योंकि किशोरदा तो एक किशोरदा ही है। हम कितना भी कोशिश करें हम डुप्लीकेट ही कहलाएंगे अगर उनके जैसा एज इट इज गाने के लिए जाएंगे। रफी साहब के जैसे एज इट इज गाने के लिए कोशिश करेंगे तो हम डुप्लीकेट ही कहलाएंगे। तो हम उन सभी से सीखें, सभी से आइडियाज लें और अपने तरीके से गाने के लिए कोशिश करें और सही गाने के लिए कोशिश करें। सुर पर सुर ताल सब ठीक रखकर गाने के लिए कोशिश करें और खुद पर यकीन रखें और आगे बढ़ते रहे, गाना दिल खोलकर गाते रहे। और सुनने वालों के लिए मैं यही चाहूँगा सभी हमारे इस प्रोग्राम को, ये चैनल को सुनते रहे, इस चैनल को बहुत सारा प्यार दे और रेगुलर देखे हमारे चैनल को, प्रोग्राम को देखते रहे। यही चाहूँगा मैं सबसे, और सब खुश रहे, शांति से रहे, यही उम्मीद है मुझे सभी से।
0: थैंक यू सो मच मिंटू भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज आपने मिंटू दास जी के गीत सुने, हमने मिंटू दास जी से बातचीत की और बहुत कुछ सीखा। मिंटू दास जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू नितिन जी, थैंक यू समीर जी, थैंक यू सो मच। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।

0: खुश रहे। दिन तेरे सनम मर
1: मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही पवित्र, बड़ा ही प्यारा, क्यूट, मासूम सा एपिसोड लेकर मैं हाजिर हुआ आपके साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो गायिका है, उनसे बात करके मुझे तो हमेशा बहुत मजा आता है। आज आप उनकी आवाज सुनेंगे तो आपको भी बड़ा मजा आने वाला है। हमारी प्रतिभा है मीना अय्यर मैम, और मैं मीना अय्यर मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूं, भाई मैं जानता हूं मीना मैम को, लेकिन आप लोग जानिए ना, उनकी आवाज में जानिए, उनसे बात कीजिए। जब वो आपसे बात करेंगी तो आपको पता चलेगा कौन है वो। तो मीना मैम, हमारे सुनने वालों के लिए बोलिए ना, आप कौन है, कहाँ है, क्या करती है।
1: जी, सारे श्रोताओं को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुंबई में रहती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ बहुत सारे कलाकारों को, वेदांत सिखाती हूँ, और जैसे हर कोई हाउसवाइफ काम करती है वैसे काम भी करती
0: हूँ। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ये मतलब ठीक है, आपने बड़े ही अम्बली और बड़े ही प्यार से कह दिया कि हाउसवाइफ।
1: हाँ, यथार्थ है भाई।
0: हाँ, तो लेकिन वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, सारी सारी दुनिया उसी से चल रही है। हम जाके कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के खूब सारे कागज के काले पीले कर देते हैं और हमको लगता है दुनिया ऐसे चल रही है। नो, रात में जाके खाना ना मिले ना तो सब खत्म। फिर सारा संगीत निकल जाता है।
1: कॉर्पोरेट का काम भी अपने वक्त में किया ना, 20 साल किया।
0: या ये से आपने बताया था मुझे। तो दोस्तों, ये हैं मीना मैम, बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही खांसती हुई और सीरियस पढ़ाई करती हुई वेदांता, इस तरीके की बातें और मेडिटेशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच मीना मैम डज। मजेदार वाली बात है कि बहुत ही प्यारी गायकी भी है मीना मैम की। तो चलिए ना, फिर आज हम मीना मैम की गायकी का भी लुत्फ उठाते हैं, सुनते हैं उनका ये प्यारा सा गीत जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किया।

0: बहुत खूबसूरत। मीना मैम, मैं मानता हूं आज के कलाकार फैमिली में आप नई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते भी हैं, बट फिर भी बहुत से ज्यादा लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं। तो आपकी जो गाने गाने की जो प्रतिभा है सिंगिंग, वो कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई?
1: कहा जाए तो जब से होश संभाला तब से मैं गा ही रही।
0: वाओ।
1: लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ऐसे एक माहौल में मैं पहुंच जाऊं जहां ये और पनप सके।
0: ओके।
1: तो मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद अखबार में मैंने एक इश्तेहार देखा कि नीडेड एन असिस्टेंट फॉर द A&R डिपार्टमेंट एट HMV।
0: His master's voice.
1: हाँ, मैंने कहा, हाँ, मैंने बोला ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो I applied, मैंने कहा ठीक है जो भी आएंगे let me try at least. And मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे मौसा जी वहाँ HR

0: के हेड थे, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, A&R डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट ने लिया था मेरा इंटरव्यू। और 300 जनों में सिर्फ 2 सेलेक्ट होने थे, तो भगवान की मर्जी थी कि मैं वहां पहुंचूं, तो मैं भी सेलेक्ट हो गई उसमें।
1: All right.
0: तो 1981 आई ज्वाइंड HMV या एज दी रिकॉर्डिंग असिस्टेंट। माने रिकॉर्ड करने वाली बात कोई नहीं थी, आर्टिस्टों की देखभाल करनी होती थी, और जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो साइड ए में क्या आएगा, साइड बी में क्या आएगा, वो मैं तय करती थी।
1: अच्छा, कैसेट्स के ऊपर? कैसेट्स के ऊपर या वो रिकॉर्ड्स के ऊपर?
0: एलपी रिकॉर्ड और कैसेट दोनों। बड़ा मजेदार काम था। तो उसमें सब म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, लिरिसिस, फिल्म प्रोड्यूसर्स, सबसे मुलाकात होती रहती थी।
1: क्या बात है। तो आपकी जो गायकी की शुरुआत हुई वो वहीं से हुई?
0: नहीं, वहां तो मैं सबको सुन रही थी ना।
1: फिर
0: मेरा गाना तो बचपन से घर में ही चल रहा था, स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, किसी फंक्शन में गाया, यू नो।
1: ऑलराइट, ब्यूटीफुल।
0: हाँ।
1: तो दोस्तों, आपने जाना बचपन से गाते गाते, और आई मस्ट से मीना मैम जो है बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रही की, और आई सिंसियरली फील कि हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोगों को, आई थिंक मोर देन 80% जो हमारे लोग हैं, हमारे जो आज के कलाकार की फैमिली है जो सुन रहे हैं, उनको HMV पता होगा, हिज मास्टर्स वॉइस, हाउ क्यूट। उस जमाने में वो LPs बनते थे, रिकॉर्ड्स, काले रंग के डिस्क जैसे। हो सकता है आज की जनरेशन उनको फोटोज में देखती हो, बट दोज वर ब्यूटिफुल डेज। ग्रामोफोन होते थे घरों में, और उसके ऊपर वो LPs बजते थे। So, those were the golden eras. Okay. तो वहां पर मीना मैम थी, pretty fortunate, I must say. और इस तरीके से उनके गाने की शुरुआत हुई। तो आइए ना, फिर शुरुआत तो हो गई, अब एक प्यारा सा गीत भी सुने मीना मैम की ही आवाज में।

0: संस्कृत की जो डिक्शन थी उससे, और वो जब गाती थी तो भक्ति बह उठती थी उनके मुंह से। आई रियली लव हर। या
1: ब्यूटीफुल। दोस्तों आपने गौर किया, मीना जी ने एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है जो बहुत बहुत सारे लोगों की राडार में नहीं है, मतलब आपके कॉन्शियंस में नहीं है, दैट इज डिक्शन। संस्कृत का डिक्शन उन्होंने बोला। एंड ये डिक्शन जो वर्ड है ना, ये मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट है, क्योंकि मेरे जो वॉइस ओवर के जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे को खूब पीट पीट के ये सिखाया है। दे ऑलवेज केप्ट ऑन सेइंग दैट ब्लडी हेल यू कीप वर्किंग ऑन योर डिक्शन। प्रोनंसिएशन एंड डिक्शन दो चीजें हैं जो मतलब खास करके मेरे और आपके फील्ड से जुड़े हुए लोगों के पास तो होनी ही चाहिए। गौर कीजिए ना, किसी का भी आप गाना सुनिए, चाहे वो लता हो, चाहे वो आशा जी हो, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, उनकी स्पीच कितनी क्लियर होती है। माय गॉड, एक एक वर्ड, एक एक लेटर, एक एक चीज कानों को सुनाई देती है, कहीं पर भी गोफिंग अप नहीं होता। हाउ ब्यूटीफुल। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हुए एक और प्यारे से गीत का आनंद पहले उठाएं, देन विल कम बैक टू टॉक टू मीना मैम।

0: बहुत खूब। अब हम सुन भी रहे हैं आपको, अब भी आपकी आवाज की लरज, आपकी आवाज का टेक्सचर हमको सुनाई दे रहा है, फिर भी आप क्या करती हैं अपनी आवाज को मेंटेन करने के लिए? कैसे आप, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, वॉइस कॉर्ड्स, ट्रैकिया, लैरिंजियल, लैरिंग्स, इन सब का कैसे ख्याल रखते हो आप?
1: पहली बात तो सतत गाते रहना चाहिए।
0: वाओ, ओके,
1: कुछ ना कुछ।
0: ओके,
1: दिन में एक घंटा बोलिए, आधा घंटा बोलिए, गाने से रिश्ता हमेशा जोड़े रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो वो। दूसरा, बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, जब भी कुछ ठंडी चीज खा लेती हूँ तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो नाउ फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स मैं कुछ भी ठंडा लेती नहीं, कुछ भी नहीं, ना पानी, ना आइसक्रीम, ना दही, ना कुल्फी, ना कुछ भी, कुछ भी नहीं। और तीसरी चीज मैं जो करती हूँ कि हमेशा गर्म, मतलब गुनगुना पानी ही पीना, इवन रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं। और उस पानी में बड़ा सा पतीला लेके सुबह सुबह मैं गर्म करके रख देती हूँ उसको, उसमें थोड़ा जीरा और अजवाइन डाल के, तो दैट अजवाइन कीप्स माई थ्रोट क्लियर एट ऑल टाइम्स।
0: ऑलराइट, सो दोस्तों, मीना जी की अपनी पर्सनल टिप्स हैं, ये पर्सनल रेसिपी है अपनी आवाज को बिल्कुल फिट रखने के लिए। बिकॉज मीना मैम, जिस तरीके से हम गाने सुन रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, वो तो एक बात हुई, उसके अलावा मीना मैम भजन्स भी करती हैं, देन स्टेज परफॉर्मेंसेस भी हैं, तो वहां पर अपने आवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एंड मोर ओवर, मुझे लगता है 80% से ज्यादा लोग हमारे जो आज के कलाकार फैमिली के हैं, वो सब ठंडा तो छोड़ ही चुके होंगे, मुझे ऐसा फील होता है। और जिन्होंने ठंडा ले रखा है, अभी भी आइसक्रीम खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, भाई बड़े हिम्मत वाला काम है आपका कि ठंडा खा के भी आप गा पाते हैं। बट बी केयरफुल, आप छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, जैसा मेरा मैम ने कहा कि गाते रहिए इज द फर्स्ट थिंग, क्या बात है, तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट टुडे। ओके, चलिए दोस्तों, एक प्यारे से गीत का आनंद पहले उठाएं। मीना मैम ने हमारे लिए उसको प्यार से तैयार किया।

0: Meera ma'am, of course, you had been singing from your childhood.
1: Yes.
0: और फिर इसके बाद HMV, wow. तो बहुत सारे एग्जीबिशंस या परफॉर्मेंसेज, स्टेज परफॉर्मेंसेज, नॉन स्टेज परफॉर्मेंस देखे नहीं, दिए भी होंगे ना आपने तो. तो अपना कोई बहुत, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड, कोई भी परफॉर्मेंस होता है ना वो अपने आप में एक रिमेम्बरेंस होती ही है. बट स्टिल कोई सबसे अच्छी सी प्यारी सी याद हमें बताइए जो आपकी परफॉर्मेंस की रही हो कि हाँ दैट वाज वन परफॉर्मेंस विच आई लाइक द मोस्ट. ऐसा
1: दो एक्सपीरियंसेस हैं. एक तो फर्स्ट टाइम मैं उत्तरकाशी गई थी फॉर अ स्पिरिचुअल कैंप, वहां चिन्मय मिशन का आश्रम है. तो फर्स्ट डे एक दिन शाम को हम पहुंचे, अगले दिन दोपहर में we all were taken for a dip in the Ganges. उसके किनारे ही हमारा आश्रम है. So we went and came and then evening the camp was to start. अब जब कैंप शुरू होता है तो कैंप आचार्य ने कहा कि पहले मीना एक भजन सुनाएगी, उसके बाद हम शुरू करते हैं कैंप, जो भी टेक्स्ट ले रहे थे. तो I was so amazed at my singing. अभी भी मैं याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. देर वॉज अ कम्प्लीट, क्या बोलते हैं, मेक ओवर बोलते हैं ना वॉइस का. वो गंगा जी में डिप लेने से हुआ या उनके आशीर्वाद से हुआ या हमारे गुरुदेव बड़े खुश हुए कि मैं वहां पहुंच गई, उसका ग्रेस था. बट आई हैव स्टार्टेड सिंगिंग सो मच बेटर After my first dip in the Ganges at Uttarkashi. There she is called Bhagirathi. I can never forget that experience.
0: I get it.
1: Yeah. और दूसरा हुआ जब मेरा कीमोथेरेपी चल रहा था in 2021. तो अचानक से एक मैडम का फोन आया कि हमको आषाढ़ी एकादशी, वो महाराष्ट्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है विठला डेटी के लिए.
0: ओके.
1: तो उन्होंने कहा आषाढ़ी एकादशी के दिन हमको आपके मराठी अभंग का प्रोग्राम चाहिए, आप करेंगी क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया. फिर घर वाले बोलते हैं कि भाई यू विल बी गोइंग थ्रू दिस, यू नो, रिएक्शंस ऑफ द कीमोथेरेपी, विल यू बी एबल टू सिट डाउन फॉर 80-90 मिनट्स एंड परफॉर्म? मैंने कहा वो विठला ही कर देगा, नो प्रॉब्लम. एंड आई एक्चुअली सैट एंड सैंग फॉर 90 मिनट्स. एंड उस दिन जितने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, यू नो, मराठी सिंगर, आई फॉरगेट द नेम, शी सेड योर डिक्शन इज इन एवरी लैंग्वेज इज सो गुड, यू सैंग इन मराठी विथ सो मच ईज, बिल्कुल नहीं लगा कि आप दक्षिण भारत से हो. आई थिंक दैट वॉज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट ड्यूरिंग माई सिकनेस बेसिकली, एंड इट जस्ट लिट मी अप टोटली.
0: ऑलराइट, अमेजिंगली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई मस्ट से. इस बात से मुझे याद आ रहा है, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ में किसी टेम्पल पे गया था एंड वी हैड बीन ड्राइविंग और ही वॉज काइंड ऑफ रेकलेसली ड्राइविंग. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अरे राजू भैया ये क्या कर रहे हो, ध्यान से चला लो यार गाड़ी. तो उन्होंने कहा कि मैं तो चला ही नहीं रहा हूं. मैं तो चला ही नहीं रहा हूं, वो तो मतलब उनको गॉड को मतलब ही कॉल्स सेठ जी कि वो सेठ जी चला रहे हैं, मैं तो चला ही नहीं रहा हूं. तो आपने अभी कहा ना कि विठला गाएंगे,
1: yes, I mean,
0: वो
1: yes.
0: कराएंगे, मुझे नहीं पता. द सेम वे हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, यू हैंड ओवर योर सेल्फ टू द गॉड, यू प्रे and then just feel the difference and just feel the miracle happening. तो वही हुआ, प्यारा सा गीत. आइए एक और प्यारा सा गीत का लुत्फ उठाएं पहले मीना मैम की आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं.

0: ब्यूटिफुल। दो ऑफ कोर्स अभी तक आपकी बातचीत से हमें हल्का हल्का सा अंदाजा तो लग चला है, लेकिन फिर भी आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो सिंगिंग है, आपके जो टैलेंट है, आपका जो म्यूजिक है, उसको क्या चीज मोटिवेट करती है? क्या चीज है ऐसी जो आपको पुकारती होगी कि आइए ना मीना जी गाते हैं? ऐसा क्या है?
1: सबसे पहले तो नेचर मुझे बुलाता है।
0: ओके।
1: जब कभी भी किसी सुंदर जगह पे पहुंचूं, कोई पहाड़, समुंदर, कोई नदी, कहीं भी ऐसी नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस में पहुंचूं, तो अपने आप में गाने लगती हूँ। मुझे याद है हम लोग नॉर्वे गए थे ऑन अ हॉलीडे, और उस दिन एकादशी थी, और मेरी आदत है कि विष्णु सहस्रनाम उस दिन बोलना ही बोलना है। तो मैं वहां, देर वॉज दिस फ्योर्ड बोलते हैं उसको उधर, देर वेर ओनली सम 8 हाउसेस देर एंड वी वेर इन वन ऑफ देम, और वहां एक स्ट्रीम बह रही थी, मैं वहीं बैठ गई और पूरा सहस्रनाम पढ़ा। मुझे कुछ अता पता नहीं था कि अगल बगल में क्या हो रहा है, वॉज कंप्लीटली लॉस्ट। तो प्रकृति को देखते ही ना मैं तुरंत संगीत मेरे में आ जाता है, और उनमें भी एक तरह का संगीत है, किसी बर्ड्स के चहकने में, एनिमल्स के आवाजों में, बच्चों की खिलकारियों में, उसमें भी संगीत मुझे सुनाई देता है। आई गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल दिस।
0: वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल दोस्तों। बस यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगा। आई नो आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं पर पढ़ा ही था इस चीज को कि म्यूजिक का एक वेवलेंथ होती है, एक तो वो शायद 480 होती है या कुछ ऐसा है, आई एम नॉट श्योर हेयर, और अक्रॉस द वर्ल्ड सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसी के ऊपर ट्यून किए गए हैं, चाहे फिर वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो, विंड इंस्ट्रूमेंट्स हो, गायकी हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो सुर हैं, ताल, सारे गामा वगैरह वगैरह, वो उसी वेवलेंथ पर सेट किए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। सारे म्यूजिशियंस ने मिलकर तय किया है, एंड सरप्राइजिंगली दैट वेवलेंथ इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम नेचर। झरने का पानी जो गिरता है उसकी जो आवाज आती है वो वही वेवलेंथ है, चिड़िया जो बोलती हैं वही वेवलेंथ है, जो मीना मैम ने बताया ना। तो दोस्तों दिस इज साइंटिफिक, यू कैन सर्टेनली गूगल इट, गूगल की इतनी तो मदद लीजिए, देखिए क्या है वहां पर। बहुत खूब, चलिए एक प्यारे से गीत का आनंद उठाएं यहां पर, डूब जाएं इन लहरियों में, आइए ना सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। अब हम लोग आज की दुनिया में रहे हैं, आप भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, और जो इजीली अवेलेबल टूल आज की डेट में हमारे पास है उसको भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, इवन राइट नाउ एट दिस मोमेंट, दैट इज सोशल मीडिया।
1: यस।
0: सो कलाकारों के लिए, गायकों के लिए, चलो मैं बात नहीं कर रहा रील बनाने की, वेयर यू शो योर फेस एंड देन यू एक्ट, मैं बात कर रहा हूँ गीतकारों की, सिंगिंग वालों की, जो सिंगर्स हैं, उनके लिए सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है मैम, वो बताइए।
1: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई किसी कॉन्सर्ट में पहुंच नहीं सकता और हर कोई किसी रिकॉर्डिंग को लाइव सुन नहीं सकता
0: जी।
1: तो ऐसे जब फीचर होते हैं तो दुनिया भर में आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो और सब लोग आपके नाम के साथ एक चेहरा भी देख सकते हैं। नहीं तो व्हेन वी वर स्मॉल, मोहम्मद रफी या मुकेश या किशोर कुमार, दे वर जस्ट नेम्स फॉर अस, हमको पता ही नहीं था कि इनकी शक्लो सूरत क्या है, कैसी है, बट दिस हेल्प्स अ लॉट।
0: ऑफ कोर्स।
1: हाँ,
0: हाउ ब्यूटीफुल इज दैट,
1: माने यश और कीर्ति में बड़ा काम करता है।
0: हाँ, मोरओवर अपने को अच्छा लगाने में भी काम करता
1: है।
0: हाँ,
1: कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
0: कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, वरना तो आप ठीक है अकेले अकेले गाते रहिए और
1: जी,
0: क्योंकि सीरियसली मैं यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे आज के कलाकार के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे परिवार वाले हैं, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ देम एंड दे लव मी एंड आई लव देम, तो इसलिए मैं बिंदास बोल सकता हूँ। बहुत बहुत सारे इंटरव्यूज लिए मैम, इतने सारे लोगों से, आप लोगों से बातचीत की है, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठे हुए, बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों से भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो भी बहुत बुरी तरीके से घबरा रहे थे, दे वर अफ्रेड, दे वर स्केयर्ड इन टॉकिंग टू मी, व्हाई,
1: क्यों,
0: वही तो मैंने जानना चाहता था कि भाई आफ्टर ऑल व्हाई, कहते यार पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा रेडियो पर बात कभी की नहीं। मैंने कहा कम ऑन, मैं आपका दोस्त हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपके परिवार वाला हूं और आप मेरे, बट द अंडरलाइंड स्टेटमेंट इज, मैसेज इज कि अपने आप को ना दुनिया के सामने दिखाना, बताना, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रख देना आसान काम नहीं होता दोस्तों।
1: बिल्कुल,
0: आप आराम से घर में गा लीजिए, बाथरूम में छुप के गा लीजिए, दैट इज ओके, लेकिन एक बार सामने आते हैं ना तो अलग ही माहौल होता है।
1: करेक्ट,
0: आई अंडरस्टैंड, एंड सोशल मीडिया ने वहां पर हम सभी की बहुत मदद की है। चलिए तो बी ब्रेव दोस्तों, और तब तक एक गीत का भी आनंद उठाइए मीना मैम की ही आवाज में।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैम, आपकी गायकी में, आपकी पैशन में, आपके हॉबी में, कह लीजिए हॉबी तो नहीं कहूंगा, पैशन कहूंगा, आपका जो सिंगिंग है उसमें आपके फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया? हाउ डिड दे सपोर्ट यू?
2: मेरी माँ जो थी, अभी भी हैं, सॉरी, उन्होंने ऐसी रिकॉग्नाइज्ड माय एबिलिटी टू सिंग, क्योंकि बचपन में मैं चर्च में भी कॉयर गा के आ गई हूँ, यानी जहाँ किसी ने बुलाया आई यूज्ड टू गो एंड सिंग।
1: अरे वाह, दैट्स नाइस।
2: तो शी एनरोल्ड मी इनटू लर्निंग यू नो सम क्लासिकल म्यूजिक, बट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स आई हैड टू स्टॉप बिकॉज स्टडीज वेयर मोर इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर ये सब करते रहना, अभी के लिए इतना बस है। और आज की तारीख में मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं हर एस्पेक्ट में, एंड मेरे लिए हर तरह की सुविधा भी बना देते हैं। अभी घर में अगर प्रोग्राम है तो ही विल सेट अप एवरीथिंग, या किसी एक्सटर्नल हेल्प से माइक्स लगाना और सिस्टम लगाना और जो भी है, उनका खाना पीना सारी व्यवस्था सब कर देंगे।
1: How cute.
2: Very very supportive he is. Because he understands that my healing happens with my music. And everybody else also feels good with music happening every time in the house.
1: Good.
2: Or anywhere else, yeah.
1: तो दोस्तों, ये एक मैसेज है, थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स n number of people out of n number of ailments. तो अपने आप को म्यूजिक के हवाले कर दीजिए ना, और फिर देखिए चमत्कार। आइए अगला गाना हम पेश करते हैं मीना मैम के ही हस्बैंड को डेडिकेट करते हुए, जो कि इतना सपोर्ट करते हैं उनको, इतने क्यूट क्यूट हरकतें करते हैं उनके लिए, सारे अरेंजमेंट्स, माइक सेटअप, खाना पीना वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच सर। लीजिए मीना मैम का ये गीत आपको डेडिकेटेड है।

0: बहुत बढ़िया मैम, ऐसा कौन सा आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के सिंगर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे, हाउ शुड दे एक्चुअली परस्यू देयर पैशन ऑफ सिंगिंग, व्हाट शुड दे डू, एंड नंबर ऑफ टाइम्स उनकी हिम्मत टूट जाती होगी ना मैम?
1: इसके अनेकों कारण है। अगर उनका ध्येय ये है कि मैं गाना गा के पैसे कमाऊं, बहुत बड़ा इंसान हो जाऊं,

0: कुछ हद तक ही वो हो सकता है. अगर माई पर्सनल वे ऑफ ट्रीटिंग म्यूजिक इज कि मैं उस ऊपर वाले के लिए गाती हूँ, इवन इफ आई सिंग अ फिल्म सॉन्ग इट इज फॉर हिम. व्हेन आई सिंग किसी विरह का गाना है तो भी वो उसके लिए है. तो व्हेन यू इन्वॉल्व द सुप्रीम, सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो यू.
1: ओके.
0: और अगर पैसे के पीछे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टैग्नेंट हो जाएगा. और जितना क्या बोलते हैं, बुरी आदतों से आप दूर रहोगे तो आपकी गायकी अच्छी रहेगी, जीवन भर रहेगी. और जैसे मैंने पहले भी कहा, रोज गाते रहना चाहिए. इट इज क्या इबादत का रूप है ये संगीत. उसको मतलब ऐसे वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए.
1: ब्यूटीफुल. सो दोस्तों ठीक है, टेक इट योर वे, आपको जैसे समझ में आती हो. लेकिन जो मुझे सुनाई दिया जो मैसेज, वो ये है कि आप अपने पैशन की पूजा कीजिए, उसको कैलकुलेट मत करिए कि इफ इट ऑल आई सिंग दिस मच विल कम. नो, जस्ट अपनी पूजा करते चलिए, अपने पैशन को परस्यू करते चलिए. क्या आएगा वो बाद में देखिएगा, क्योंकि अगर जैसे ही आपने उसके ऊपर फोकस किया, यू आर फिनिश्ड, खत्म. अम्बलनेस, आपकी किसी भी कलाकार की जो अम्बलनेस होती है,
0: इसके लिए हमको हमेशा एक उदाहरण मिलता है हमारे गुरुजी से कि जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगे हो ना,
1: वो झुका हुआ,
0: उसकी डाली हमेशा झुकी हुई.
1: राइट. हाँ. क्या बात कही है, बहुत खूबसूरत. बहुत खूबसूरत कि जो पेड़ में सबसे ज्यादा फल होता है वो झुका हुआ होता है.
0: करेक्ट.
1: तो दोस्तों प्लीज, कहीं पर भी अगर घमंड आपके आसपास भी हो ना, तो निकाल दीजिएगा उसको. प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम द वन हु इज रनिंग दिस शो. नो नो, हम सिर्फ एक माध्यम है. वी आर कोरियर्स, वी आर पोस्टमैन्स, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं है. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुन ले पहले मेरे माम का.

0: मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपके साथ पहले भी दिव्य दर्शन के प्रोग्राम मैंने बनाया उसमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड ये प्रोग्राम बनाना तो ये तो खैर मेरा आई मीन आई लव दिस बेबी, इसको मतलब मैंने पैदा किया तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, फिर इसके बाद इस बच्चे को पैदा करके मैंने आपकी गोद में दे दिया है, अब आप लोग इसको पालो ओके। तो बस चलते चलते हमारे सभी आज के कलाकार फैमिली मेंबर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: जब भी आप खुश होते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अगर गाना गा सकते हो तो गाना गाओगे, गाना नहीं गा सकते हो तो सीटी बजाओगे, है ना। तो खुश रहने के लिए सबसे आसान तरीका है संगीत से जुड़े रहो। गाना नहीं भी आता हो तो कुछ भी करके ना, यू हैव टू बी कनेक्टेड विथ म्यूजिक। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इफ यू कैन टॉक आई कैन मेक यू सिंग, ये उनका मोटो
0: है। तो मैम मेरी बात सुनो, उनको बोलना ना आई कैन टॉक उनको रिक्वेस्ट करो कि मेक मी सिंग, मैं गाना चाहता हूँ।
1: हाँ वो करते भी हैं।
0: वाओ ओके
1: या ही डज
0: Beautiful, beautiful.
1: I should tell his name also. Why not?
0: Please, yeah.
1: मेरे में इतनी मतलब उन्नति हुई गाने में because of him only. श्री उमेश बिपिन खरे.
0: Okay.
1: वो यहाँ श्रुति संधान के नाम से एकेडमी चलाते हैं. मैं 20 साल से उनके पास सीख रही हूँ.
0: Wow. Okay.
1: And I have traveled a lot, improved a lot.
0: Beautiful. देखो दोस्तों.
1: Many thanks to him. Yeah.
0: Yeah. किसी ना किसी आइडल को, चलिए ठीक है आप, मैं कहता हूं उनसे मिले या ना मिले, एक बार आप एकलव्य

0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।
1: ये

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन